0: Welcome to RM2
1: Radio Musti.
2: North, South,
3: 103.5,
2: East, West,
3: 96.4,
2: Center,
3: 99.4.
0: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
4: A very good morning, आप सभी को सुप्रभात। आज शनिवार 5 सितंबर 2026 की सुबह है और अभी आप घड़ी मिलाते चलिए, ठीक 5 बज रही है।
5: Chillax with Radio Musti,
0: your number one Bollywood radio station.

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी।

0: Chillax with Radio Musty.
1: Your number one Bollywood radio station.
0: Chillax with Radio Musty.
2: वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुप्रभात। सैटरडे की सुबह है, वीकेंड का पहला दिन और आप सुन रहे हैं रिलैक्स सिर्फ रेडियो मस्ती पर। मैं हूं आपकी अपनी ही रिया और आज की सुबह हम शुरू कर रहे हैं उन गीतों के साथ है जो सिर्फ गाने नहीं, यादें ही एहसास है और दिल के बहुत ही करीब है। अभी हमने शुरू किया, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा नहीं। क्या खूबसूरत अल्फाज है। कभी कभी जिंदगी में सब कुछ परफेक्ट नहीं होता, लेकिन फिर भी दिल कहता है जो मिला वो भी खूबसूरत था, जो है उसकी भी कदर करो। शायद सैटरडे इसीलिए खास होता है, पूरे हफ्ते की भागदौड़ के बाद थोड़ा सा समय खुद के नाम करने का। तो अगर आपकी आंखें अभी खुली हैं, एक गहरी सांस लीजिए, ठीक है, डीप ब्रेथ। चाय हो या कॉफ़ी, आप इसका पहला सिप लीजिए और दिल से कहिए आज का दिन अच्छा होगा। क्या है कि जब हम चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं तो वही होता है ज़िंदगी में। तो आप अगर अच्छी अच्छी चीज़ें बोलेंगे तो आपके साथ अच्छा अच्छा ही होगा। तो चलिए, वीकेंड है, नो मंडे प्रेशर, नो अननेसेसरी टेंशन, बस अच्छे गाने, अच्छी बातें और ब्यूटीफुल वाइब्स। चलिए सदाबहार गानों के सफर को आगे बढ़ाते हैं रिलैक्स पर। आपकी डेडिकेशन, आपके मैसेजेस आप हम तक जरूर पहुंचा

0: सकते हैं, नंबर है 5499-1294।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: पर सैटरडे गाय का अलग ही चार्म होता है, अलार्म बजता है लेकिन दिल कहता है कि आज थोड़ा और सो जाते हैं और फिर से ये अलार्म आप स्नूज करते हैं 15 मिनट के लिए, 30 मिनट के लिए। और फिर अगर आप अर्ली राइजर है तो सुबह के इस समय का सुकून नहीं कुछ और है। तो सबकी अपनी अपनी प्रेफरेंसेस होती है, कई लोगों को जल्दी उठने की आदत हो चुकी है और जल्दी उठ जाते हैं, ऑटोमेटिकली आप उठ जाते हैं अलार्म के बिना ही। वल अभी तो मॉर्निंग है, सवेरे को कोई रश नहीं होता है। एंड अगर आप काम के लिए जा रहे हैं, जी हाँ बहुत सारे लोग हैं जो काम पर जाते हैं सैटरडे संडे के दिन भी, तो उनको हम बुकवाज कहते हैं। आप चलिए इस सफ़र को एंजॉय करते रहिए, सफ़र बहुत ही शांत होने वाला है क्योंकि नो ट्रैफिक दिस आवर और बहुत ही खूबसूरत गाने एंड यू रिलैक्स रिया के साथ। वेल यहाँ पर आपके मैसेजेस डेडिकेशंस भी बहुत सारे हैं तो हम उनकी ओर थोड़ी देर में बढ़ेंगे। तो आप जो कुछ भी कर रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, अभी आप नाश्ते की तैयारी में लगे हुए हैं, नाश्ता ले रहे हैं, कॉफ़ी चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अभी तक सो रहे हैं, पलंग पर है, इट्स टोटली फाइन और हमारे साथ कनेक्टेड है। सो इट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल सैटरडे मॉर्निंग हमारे साथ। यहाँ पर मैसेजेस की ओर बढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयशन जी, प्रणाम आपको। आप काम के लिए जा रहे हैं तो आपके कलीग्स के नाम टिम्बा, उमरम, दानू, जीबन, अंगुथिया, शर्वन, मेवन एंड रेडियो मस्ती टीम एज वेल, थैंक यू सो मच आपके इस प्यारे मैसेज के लिए। हम जरूर डेडिकेट करेंगे नेक्स्ट ट्रैक का उनके नाम। एक प्यारा सा गाना हम डेडिकेट करेंगे धनेश्वर जी के नाम। आप है बॉम्बू से और आपकी पत्नी सुनीता भी आपके साथ कनेक्टेड है, द होल डेविडोस परिवार एंड देव है, रेखा है, तो सभी के नाम हम जरूर एक खूबसूरत सा गाना कि सैटरडे मॉर्निंग और भी खूबसूरत बनाने के लिए चलाएंगे जरूर। परिवार कुबलाल परिवार हमारे साथ कनेक्टेड है, रिविया जो वापस ही है और यहाँ पर गुड विशेज भेज रहे हैं सभी को, विशिंग यू अ लवली good Saturday morning as well. Darren Sweetar, Ravish Prisha, Lovesh and Abhadu Parivar Roshnwasi hai saath nibha rahe hai. Good morning aapko bhi and wishing you all a lovely Saturday morning. Chaliye next track sabhi ke naam.
1: Chillax with Radio Masti.
2: Your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: हम अक्सर बड़ी खुशियों का इंतजार करते रहते हैं, अक्सर ये ही हम करते हैं। वैकेशन मिलेगा तो खुश होंगे, सैलरी आएगी तो खुश होंगे, कुछ स्पेशल होगा तो खुश होंगे, लेकिन असली जिंदगी तो इन छोटी छोटी खुशियों में छिपी होती है। सुबह की गर्म चाय, फेवरेट गाना रेडियो पर, घर में सबका साथ, बारिश के बाद की ठंडी हवा, किसी अपने का एक सिंपल सा मैसेज, बस इतना ही तो चाहिए होता है दिल को। तो आज सारे है खुशी को पुष्पोन आप ना कीजिए, जो अच्छा है उसको आप महसूस कीजिए, और जो परेशान कर रहा है उसे थोड़ी देर के लिए आप साइड में रखिए। यही कि टेंशन, परेशानी, बहुत कुछ स्ट्रगल्स, ये सब जिंदगी में आता जाता है, लेकिन आप इसे साइड में रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए। आज का दिन परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बस दिल हल्का और मुस्कुराहट सच्ची होनी चाहिए। रिलैक्स पर सदा बाहर गाने चल रहे हैं और यही हम चलाते रहेंगे, और बीच बीच में आपकी हमारी बातें होती रहेगी। नच वगैरह आपके डेडिकेशन आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं। नंबर है 5499-1294.
0: With Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए।

0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
1: चलिए जी आपकी राशि फल की ओर हम बढ़ते हैं, शुरू हम करते हैं
2: एरीज मेष राशि।
1: आज का दिन नए उत्साह के साथ शुरू होगा, पुराना कोई काम पूरा करने का मौका आपको जरूर मिलेगा। रिश्तों में प्यार और समझ बनी रहेगी, फिजूल की चिंता से दूर ही रहिए। लकी नंबर है आज आपका 9।
2: टॉरस वृषभ राशि।
1: आज सुकून और स्थिरता का दिन है, पैसों से जुड़ा कोई अच्छा फैसला ले सकते हैं। घर परिवार के साथ समय बिताना दिल को खुशी देगा और सेहत का भी आप ख्याल रखें। लकी नंबर है आज आपका 6।
2: जेमिनी मिथुन राशि।
1: आज आपकी बातों का असर लोगों पर अच्छा पड़ेगा, दोस्तों से कोई खुशखबरी मिल सकती है। वीकेंड का भरपूर मजा लीजिए, जल्दबाजी में फैसला ना करें। लकी नंबर है आज आपका 5।
2: कैंसर कर्क राशि।
1: आज दिल थोड़ा ज्यादा भावुक हो सकता है, अपनों के साथ बिताया हुआ समय बहुत ही खास रहेगा, कोई पुरानी याद चेहरे पर मुस्कान लाएगी। आज खुद को थोड़ा आराम आप दीजिए। लकी नंबर है आज आपका 2।
2: लियो सिंह राशि।
1: आज का दिन आपके लिए जोश और आत्मविश्वास लेकर आएगा, किसी काम में आपकी तारीफ हो सकती है। वीकेंड पर आप अपनी पसंद का कुछ जरूर कीजिए, गुस्से से बचना बेहतर रहेगा। लकी नंबर है आज आपका 1।
2: वर्गो कन्या राशि।
1: आज चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, जो हो रहा है उससे थोड़ा आसानी से लेने की कोशिश करें। परिवार से प्यार और सहयोग का आपको मिलेगा, एक छोटी सी आउटिंग मूड बदल सकती है। लकी नंबर है आज आपका 4।
2: लिब्रा तुला राशि।
1: आज का दिन प्यार और मेल जोल से भरा रहेगा, किसी खास शख्स से अच्छी बातचीत हो सकती है। काम से थोड़ा ब्रेक लेकर अपने लिए समय निकालिए, खुश रहने की वजह खुद बनिए। लकी नंबर है आज आपका 7।
2: स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि।
1: आज आप किसी फैसले को लेकर स्पष्ट महसूस करेंगे, पुरानी उलझन दूर हो सकती है। अपनों का साथ आपको हौसला देगा, दिल की बात दिल में रखने की बजाय सही समय पर कहिए। लकी नंबर है आज आपका 8।
2: सजिटेरियस धनु राशि।
1: वीकेंड आपके लिए नई ऊर्जा लेकर आया है, घूमने फिरने या किसी नए प्लान का मौका मिल सकता है आपको। दोस्तों के साथ समय मजेदार रहेगा और बस खर्चों पर थोड़ा अपन नियंत्रण कंट्रोल रखिए। लकी नंबर है आज आपका 3।
2: कैप्रिकॉर्न मकर राशि।
1: आज मेहनत का अच्छा नतीजा मिलने की उम्मीद है, घर में कोई अच्छी बात हो सकती है। अपने लक्ष्य को लेकर भरोसा बनाए रखें, आज आराम और खुशी दोनों जरूरी है। लकी नंबर है आज आपका 10।
2: एक्वेरियस कुंभ राशि।
1: आज आपका मन कुछ नया करने को करेगा, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात या बात हो सकती है। आपकी रचनात्मक सोच काफी मजबूत रहेगी, वीकेंड को बिना किसी बोझ के आप एंजॉय कीजिए। लकी नंबर है आज आपका 3।
2: Pisces, मीन राशि।
1: आज का दिन दिल के लिए बहुत ही खूबसूरत हो सकता है, अपनों से मिला प्यार आपका मूड बेहतर करेगा, पुरानी कोई अच्छी याद ताजा होगी। थोड़ा आराम कीजिए और खुद को खुश रखिए। लकी नंबर है आज आपका 12। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की राशि आपके नाम। आई होप कि आपका दिन बहुत ही अच्छा कटे। चलिए रिया की ओर से आपको शुभ दिन और शुभ शनिवार।
0: Your daily horoscope. RM2 Radio Musti.
3: You're listening to RM2 Radio Musti.

0: समय हो चुका है संक्षिप्त समाचारों का, तो आइए इसे हम पूजा के साथ है सुनते हैं। नमस्कार आपको पूजा।
1: नमस्कार रिया, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत कर रहा है। मंत्रिपरिषद ने दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। इसमें विशेषज्ञता का आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। और मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय के संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र यानी नेशनल फोकल पॉइंट बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। एक सफाई अभियान के दौरान लगभग 30 किलो ईंधन तेल के गुच्छे और परतें एकत्र की गई जो रेत के साथ मिलाई गई थी। कल दोपहर को नेशनल कोस्ट गार्ड के जवानों ने भी लगभग 366 किलो ईंधन तेल के जमाव को एकत्र किया। इन मलबों को लाशोमिया स्थित खतरनाक कचरा उपचार केंद्र ले जाया गया। इस निर्वाचन क्षेत्र के सांसद और खेल मामलों के जूनियर मंत्री टोनिया पोलो को कुछ दिन पहले मछुआरों ने इस मामले की जानकारी दी थी। सितंबर 2024 में हुई जॉन माइक मार्टिनगेल की मौत की न्यायिक जांच कल रोजहिल की अदालत में फिर से शुरू हुई। असिस्टेंट प्रिजन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद आसिफ रामतुला से पूछताछ जारी रही। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के प्रतिनिधि का मानना है कि वो सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कुछ कैदियों को गवाही के लिए बुलाने की योजना बनाई है। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कथित रूप से गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए और समय मांगा है। अब तक 5 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। 3 अन्य लोगों की पहचान की गई है, उनसे पूछताछ की जानी है। एफसीसी के एक जांच अधिकारी ने कल मोका की अदालत में ये जानकारी दी है। और विदेश की खबरों में, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव के केंद्र में हुए हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया और वहां टकरा गया। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, देश के पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी। दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा, मौसम सुहाना रहेगा। रात को बादल कुछ घिर आएंगे और ऊंचाइयों पर वर्षा होने का अनुमान है। हवा हल्की रहेगी और पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता को सुबह के समय समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है। तापमान, सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 22 से 24, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:15 बजे, सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा। तो मौसम के इस खबर के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम मिलेंगे 6:30 बजे।
2: Your weather forecast on RM2.
3: Radio Musti.
2: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: और समय है 6:10 और रिलैक्स कंटिन्यूज सिर्फ रेडियो मस्ती पर। पहले घंटे में हमने महसूस किया सदा बहार गानों का सुकून और अब समय है थोड़ा मूड को फ्रेश करने का। अब हम चलाएंगे मिक्स गाने, यानी कि थोड़ा सा ही हम परिवर्तन लेकर आए हैं, थोड़ा सा ही बदलाव, थोड़ा रोमांस, थोड़ा जोश और बीच बीच में वो खूबसूरत मेलोडीज जो सैटरडे मॉर्निंग को और भी स्पेशल बना दी। और आज वीकेंड है तो मंडे की टेंशन को अभी से सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। जो भी प्लान्स हैं धीरे धीरे आप बनाइए, और अगर कोई प्लान नहीं है तो कोई बात नहीं, कभी कभी बिना प्लान का वीकेंड सबसे अच्छा होता है। बस म्यूजिक को आप एंजॉय कीजिए, चाय की चुस्की लीजिए और अपने दिन की शुरुआत एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ कीजिए। क्या है कि इससे आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करेंगे, सकारात्मकता आपके घर के अंदर खस जाएगा। आप जहाँ भी है, घर पर, किचन में, रोड पर, या अभी आप काम कर रहे हैं, सवेरे सवेरे जॉगिंग के लिए निकल चुके हैं, रिलैक्स का म्यूजिक आपका सैटरडे मॉर्निंग कंपेनियन है। तो वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और चलिए मिक्स गानों के साथ शुरू करते हैं ये ब्यूटिफुल म्यूजिकल सफर। आपके डेडिकेशन मैसेजेस 5499124 बहुत सारा प्यार रिया की तरफ से।
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: वेल, कभी कभी कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक ऐसे होते हैं तो जो दिल को गार्डन गार्डन करके ही छोड़ते हैं, जैसे कि ये गाना जो हमने अभी चलाया था और इसका जो BGM था बहुत ही खूबसूरत था. वेल, आई होप यू एंजॉय दिस वन. और आज तो सैटरडे का दिन है, सैटरडे कुछ स्पेशल करना ही चाहिए. वेल, सैटरडे का मतलब ही होता है मूड थोड़ा हल्का, चेहरा थोड़ा खिला खिला और दिल थोड़ा ज़्यादा खुश. वेल, पूरे हफ्ते हम डेडलाइंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और रूटीन में उलझे रहते हैं, लेकिन वीकेंड हमें याद दिलाता है कि ज़िंदगी सिर्फ काम का नाम नहीं है. कभी अपनी फेवरेट ब्रेकफास्ट के लिए समय निकालिए, कभी फैमिली के साथ बैठकर बातें कीजिए, कभी किसी दोस्त को बिना किसी वजह के फ़ोन आप कर सकते हैं. और अगर आपका प्लान कुछ भी नहीं है, कोई प्लान्स आपने नहीं बनाए, कोई बात नहीं, आप म्यूज़िक सुन सकते हैं क्योंकि म्यूज़िक इज़ अ थेरेपी. और अगर आप अच्छी अच्छी गाने सुनते हैं तो दिल खुश रहता है और इससे आपका पूरा दिन अच्छा ही रहता है. तो ये भी एक परफेक्ट सैटरडे ही होता है. और एक बात, वीकेंड का मज़ा तब और बढ़ जाता है जब हम दूसरों से कंपेयर करना बंद कर देती है. ये तो सच बात है, अगर हम कंपैरिजन करते रहेंगे तो हम कहाँ खुश रह पाएंगे. सो कंपेयर करना आप छोड़ दीजिए एंड आप खुद पर भरोसा रखिए, आप कुछ भी कर सकते हैं. फिलहाल खुश रहना ही सबसे परम लक्ष्य है, तो हम खुश आपको रखेंगे इन गानों के जरिए. बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक्स है यहाँ पर, आपके मैसेजेस डेडिकेशन सब भी है. चलिए एक दो हम देख ही लेते हैं. हमारे साथ ललिता जीतन जी है, जॉगिंग कर रही है. गुड मॉर्निंग आपको, विशिंग यू अ लवली डे एज वेल. एंड हमारे साथ है श्याम दाबिचन जी, जुड़े हुए हैं, प्रोग्राम एंजॉय कर रही है गर्मा गर्म लाइटी चाय के साथ. एंजॉय दिस वन. द नेक्स्ट ट्रैक आपके नाम पूरे दाबिचन परिवार के नाम जो पे हवे रहती है. एंड ऑल्सो पति पुष्कर के नाम आप बों को आज कहती है. वैसे ही मैसेज आया है पत्नी दिशा की ओर से और आप डेडिकेट करती हैं नेक्स्ट ट्रैक टू ऑल क्योडा गोदी और सभी सुनने वालों के नाम कृतिज रकिविया जो वहाँ पास ही है. एंड यस पुष्कर, आपके नाम स्पेशल मैसेज है यहाँ पर. प्यार सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं, मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास हो तुम. थैंक यू फॉर बीइंग माय पार्टनर, माय बेस्ट फ्रेंड एंड द लव ऑफ माय लाइफ. दैट्स सो ब्यूटीफुल. चलिए नेक्स्ट ट्रैक, इट्स अ ब्यूटीफुल वन, हमारे सभी लिसनर्स के नाम में जाता है.
0: Chillax with Radio Musty.
2: Your number one Bollywood radio station.

चलिए इसी गाने के साथ हम विश करते हैं वेरी हैप्पी बर्थडे टू वसन चक्रवर्तन जो आज 65 इयर्स ओल्ड के हो गए हैं. सो बहुत सारी बधाइयां एंड शुभकामनाएं आपको पूरे परिवार की ओर से राजेंद्र अरवलन वरुणन पुवाली एंड आपके सभी परिवार वालों की ओर से आपको हैप्पी हैप्पी बर्थडे.

के 6:30 बजे हैं। सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद ने दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी है। मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। एक सफाई अभियान के दौरान लगभग 30 किलो ईंधन तेल के गुच्छे और परतें एकत्र की गई जो रेत के साथ मिलाई गई थी। कल नेशनल कोस्ट गार्ड के जवानों ने भी लगभग 366 किलो ईंधन तेल के जमाव को एकत्र किया। ये तेल समुद्री शैवाल और छोटे बड़े कंकड़ों के साथ मिला हुआ था। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कथित रूप से गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए और समय मांगा है। अब तक 5 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। 3 अन्य लोगों की पहचान की गई है। एफसीसी के एक जांच अधिकारी ने कल मुका की अदालत में ये जानकारी दी। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस UTM द्वारा कल और आज पुएर्टो साबल स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन किया जा रहा है। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव के केंद्र में हुए हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया और उससे टकरा गया। मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत कर रहा है। मंत्रिपरिषद ने दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। इसमें विशेषज्ञता का आदान प्रदान, क्षमता निर्माण और तकनीकी सहयोग सहित कई महत्वपूर्ण पहल शामिल हैं। इस सहयोग के अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, बीमारियों की रोकथाम, डिजिटल स्वास्थ्य, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चिकित्सा प्रौद्योगिकी और रोबोटिक सर्जरी जैसे क्षेत्र शामिल हैं। और मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा विज्ञान एवं अनुसंधान मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र यानी नेशनल फोकल पॉइंट बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। मंत्रालय की प्रमुख जिम्मेदारियों में विज्ञान, अनुसंधान और जलवायु प्रौद्योगिकियों से संबंधित पहलों का समन्वय करना शामिल होगा। इन पहलों को जलवायु परिवर्तन से निपटने और उनके प्रभावों के अनुकूलन के क्षेत्र में मॉरिशस की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप होना होगा। परियोजनाओं के लिए प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु विभिन्न मंत्रालयों, निजी क्षेत्र, शिक्षा विधियों और नागरिक समाज के साथ परामर्श भी आयोजित किए जाएंगे। एक सफाई अभियान के दौरान लगभग 30 किलो ईंधन तेल के गुच्छे और परतें एकत्र की गई है जो रेत के साथ मिलाई गई थी। कल दोपहर नेशनल कोस्ट गार्ड के जवानों ने भी लगभग 366 किलो ईंधन तेल के जमाव को एकत्र किया। ये तेल समुद्री शैवाल के साथ मिला हुआ था। ये जमाव लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक बिखरे हुए थे और बुआदिजा मुगैत के पास पाए गए। इन मलबों को लाशमिया स्थित खतरनाक कचरा उपचार केंद्र ले जाया गया। पुएदिसनी के समुद्र तट पर भी ईंधन तेल के गुच्छे और परतें देखी गई थी। इस क्षेत्र में इस तरह की घटना पहले भी हो चुकी है। इस निर्वाचन

0: ने क्षेत्र के सांसद और खेल मामलों के जूनियर मंत्री टोनी अपोलो को कुछ दिन पहले मछुआरों ने इस मामले की जानकारी दी थी। लुविना सूफी आस्था गोविंद चितामन
1: ये घटना हर साल होती है। जब जहाज यहाँ से गुजरते हैं तो जहाज के निचले हिस्से की सफाई की जाती है। कुछ अवशेष तेल और पेट्रोल के रह जाते हैं जो लहरों और पानी के बहाव से तटों तक पहुंच जाते हैं। SMF और पर्यावरण मंत्रालय ने स्थिति पर सवाल उठाए हैं। सफाई हो गई है, कुछ अध्ययन बाकी है, खतरे की कोई बात नहीं है।
0: सितंबर 2024 में हुई जॉन माइकल मार्टिंगेल की मौत की न्यायिक जांच कल रोजहिल की अदालत में फिर से शुरू हुई। असिस्टेंट प्रिजन सुपरिटेंडेंट मोहम्मद असीफ रामतुल्ला से पूछताछ जारी रही। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन के प्रतिनिधि का मानना है कि वो सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कुछ कैदियों को गवाही के लिए बुलाने की योजना बनाई है। इसके अलावा जॉन माइक मार्टिंगेल के मोबाइल फोन को लेकर भी कई सवाल अभी अनसुलझे हैं। ये फोन जेल के सुरक्षा कर्मियों ने जब्त किया था। इस मामले पर अधिक जानकारी लुविना सूफी की इस रिपोर्ट में जानते हैं आस्था चितामन के विवरण के साथ।
1: सुनवाई में मैजिस्ट्रेट डोनी विलियन और DPP के प्रतिनिधियों की ओर से 14 जुलाई को बोबासा कैदखाने में किए गए निरीक्षण पर चर्चा हुई। जॉन मिक मार्टिंगेल की मौत से एक दिन पहले उनके सेल की तलाशी लेने का आदेश ASP असीफ रामतुल्ला ने दिया था। उन्हें गवाही के लिए बुलाया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से वकील रिकी बुकन ने उनसे पूछा कि क्या वे अदालत में पहले दिए गए अपने बयान में कोई बदलाव करना चाहती हैं। ASP रामतुल्ला ने कहा कि उनके पास बदलने के लिए कुछ नहीं है। वकील रिकी बुकन ने इस तलाशी के दौरान नियमों का पालन नहीं किए जाने की ओर भी अदालत का ध्यान खींचा। मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी। याद दिला दें कि जॉन मिक मार्टिंगेल नशीले पदार्थों की तस्करी के मामले में हिरासत में थे। उन पर दो यूक्रेनियन महिलाओं के जरिए 44 मिलियन रुपए की कोकेन मॉरिशस लाने की कोशिश करने का संदेह था। दोनों महिलाओं को अक्टूबर 2022 में गिरफ्तार किया गया था। उनके परिवार का मानना है कि हिरासत के दौरान उनके साथ मारपीट हुई थी, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी मौत का कारण आत्महत्या बताया गया।
0: फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कथित रूप से गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए और समय मांगा है। अब तक 5 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। 3 अन्य लोगों की पहचान की गई है और उनसे भी पूछताछ की जानी है। FCC के एक जांच अधिकारी ने कल मुका की अदालत में ये जानकारी दी। उस समय कारोबारी स्टीवन मुतुकापेन की जमानत पर रिहाई की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। FCC ने उनकी सशर्त रिहाई का विरोध किया है। इस रुख को देखते हुए उनके वकील नेल पिले ने जमानत याचिका पर आगे जोर नहीं दिया। मामले की अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी। याद रहे कि स्टीवन मुतुकापेन को उस समय गिरफ्तार किया गया था जब 2025 में जब्त किए गए उनके मोबाइल फोन में FCC के अत्यंत गोपनीय दस्तावेज पाए गए थे। संदिग्ध का वाहन FCC के महानिदेशक संजय दाऊदारी के घर के आसपास देखा गया था। उस समय संजय दाऊदारी को धमकी भरे पत्र भी मिले थे। पिचिवेजे सैंपिया का रहने वाला कारोबारी स्टीवन मुतुकापेन 2014 में अपने इलाके में हुई एक जानलेवा गोलीबारी की घटना में बार बार बच गए थे। उन्हें पहले भी कई अन्य मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग और मादक पदार्थों के आयात की साजिश के आरोप शामिल हैं। इस मामले में आत्सू में पहले तैनात रहे इंस्पेक्टर विकी लखमन को भी गिरफ्तार किया गया है। कानून लागू करने वाली विभिन्न संस्थाओं से जुड़े लगभग 40 प्रतिभागियों को कल साइबर सुरक्षा मतलब साइबर सिक्योरिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आयोजित 5 दिवसीय प्रशिक्षण के सफल समापन के बाद प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। ये समारोह पोर्ट लुइस स्थित लैंड बैराक्स में आयोजित हुआ, जिसमें पुलिस आयुक्त राम प्रसाद सुरजबाली भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में पुलिस आयुक्त ने कहा कि साइबर अपराध और नई प्रौद्योगिकी विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कानून प्रवर्तन

0: एजेंसियों के सामने लगातार अधिक जटिल चुनौतियां पेश कर रही है। उन्होंने लगातार कौशल बढ़ाने के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग, सूचना साझा करने और समन्वय को मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उनके अनुसार इन नए खतरों का सामना कोई भी एजेंसी अकेले नहीं कर सकती है। रामप्रसाद सुरजवाली ने अंत में प्रतिभागियों को प्रशिक्षण के दौरान हासिल किए गए ज्ञान का सही उपयोग करने और अपने अपने संगठनों के भीतर अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस UTM द्वारा कल और आज पोयटू साबला स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य भावी छात्रों को UTM द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न कोर्सों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारियां देना है। इस बारे में अधिक जानकारी UTM की असिस्टेंट रजिस्ट्रार वंदना गंगा भी सुन दे रही है। उनसे बात की निर्मा नारायणा रेड्डी ने, विवरण आस्था गोबिन चितामन।
1: Donc, tous vos enfants qui pas gagnent site ni à l'université technologie en avril ou je n'attends de sens dans les autres universités en octobre ou en septembre ou en août qui je pas gagne siège, c'est l'occasion donnée pour rendre une public university pour faire cette application qui fait public university parce que je ne pas paye ce qui appelle une tuition fee, les subsidies par l'État. Ceci dit, vous ne payez que des administrative fees et un petit student union fee. Il y a un cours full-time, il y a un cours part-time, il y a un cours master's, il y a un cours PhD. Et par suite, vous êtes capable de faire cette application.
0: पेंशन सुधार का मुद्दा अब भी ट्रेड यूनियन वर्ग को सक्रिय किए हुए हैं। सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध प्लेटफॉर्म कुमार सैजिकाल ने अगले 7 अक्टूबर को पोर्ट लुइस की सड़कों पर एक शांतिपूर्ण मार्च आयोजित करने की घोषणा की है। ये मार्च मारीगन डुलापे से शुरू होगा। उनकी मुख्य मांग है कि 60 वर्ष की आयु से बिना किसी शर्त के सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन को फिर से लागू किया जाए। इस संबंध में ट्रेड यूनियन नेताओं जैन अहागू और हनीफ पिरन को सुनते हैं।
2: Nous combat ces pensions vieillesse à tout ban senior sans discrimination. Ça veut dire si nous payons actuellement 15 555, tout du monde vise à gagner 15 555.
3: La façon qui est opérée pour donner sa bande pension là, il donne 3 options. Reduce pension, c'est pas pension 65 ans, ou choisir qu'on peut prendre. Non, c'est pas ça qui nous peut. Ça qui nous peut dire, c'est que rétablir le droit des bandes pensionnaires à l'âge des 60 ans.
0: मॉरिशस में 3 साल बाद आज SBICCPI में शान का शानदार कंसर्ट। इस नए कार्यक्रम के लिए गायक ने 2023 में हुए अपने पिछले शो से अलग एक शानदार प्रस्तुति का वादा किया है। इस बार मंच पर और भव्य प्रोडक्शन के साथ कई नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। शान अपने हालिया संगीत प्रोजेक्ट के साथ भी मॉरिशस पहुँचे और आपको बता दें आज शाम के कंसर्ट में उनके बेटे माही भी पहली बार मंच पर प्रस्तुति देंगे और मशहूर गायक केके को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विधिमा सिबुरन की ये खास रिपोर्ट।
4: शांतनु मुखर्जी, जिन्हें लोकप्रिय रूप से शान के नाम से जाना जाता है, एक भारतीय प्रेबाक गायक, संगीतकार, अभिनेता और टेलीविजन होस्ट हैं। उन्होंने विभिन्न भारतीय भाषाओं में फिल्मों और एल्बम्स के लिए अनेक गीत रिकॉर्ड किए हैं। शान का संबंध संगीत परिवार से है। उन्होंने कम उम्र में ही संगीत की दुनिया में कदम रखा और 1990 के दशक में बहन सागरिका के साथ पॉप एल्बम नौजवान से पहचान बनाई। उनके लोकप्रिय गीतों में शामिल हैं मुसु मुसु हासी, चांद सिफारिश
5: जो करता हमारी, देता वो तुमको बता,
4: बहती हवा सा था वो आदि,
5: हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता।
4: शान का करियर 3 दशकों से अधिक का है। तन्हा दिल,

0: चांद सिफारिश और जब से तेरे नैना,
1: जब से तेरे नैना मेरे नैना से लागे रे,
0: उनके करियर के प्रमुख पड़ाव रहे हैं।
2: गाना लोग पसंद करते हैं और गाना पॉपुलर होता है, उस गाने के लिए लोग यू नो फरमाशे करते हैं, तब लगता है कि हाँ यार ये मेरा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो फदारत से चांद सिफारिश ऐसा एक गाना है कि किसी भी कॉन्सर्ट में इस गाने की फरमाइश तो आती ही आती है। मैं बहुत खुश हूँ कि आज के दौर में भी मेरे गाने आ रहे हैं, फिल्मी गाने भी, फिल्म के गाने, जैसे अभी बंटवारा में जो राम भजन था वो, उससे पहले इक्का एक फिल्म आई उसमें एक बहुत ही प्यारा फादर डॉटर का एक गाना आया, पापा की जान, उसके पहले वेलकम टू द जंगल वो गाना फिर से आया, और ऑफकोर्स अभी हैवान फिल्म आ रही है उसमें दो गाने हैं। सो हर दौर में आपको उस दौर की जो ट्रेंड तो नहीं कहूँगा लेकिन सेंसिबिलिटीज जो है ना उसे मद्देनजर रखते हुए, वरना आपको आपकी आवाज़ सुन के लोगों को लगेगा कि यार ये तो वही वैसे ही गा रहा है जो 30 साल पहले गाता था। सो हर दौर के साथ कदम रख के चलना है और हर दौर में कुछ नयापन आता है, उसे आपको पॉजिटिवली एम्ब्रेस करना है।
0: अगर आप मॉरिशन जनता के लिए एक गाना डेडिकेट करना चाहेंगे तो वो कौन सा गाना होगा?
2: पूरा शो डेडिकेट करना चाहता हूँ जो कल होगा, और फॉर नाउ ऑफ कोर्स वो मेरा दिल तो ले ही चुके हैं, तो मेरा दिल ले ले, मेरा दिल ले ले, मेरा दिल ले ले मॉरिशस ले ले रे।
0: शान को चांद सिफारिश के लिए 2007 में और जब से तेरे नैना के लिए 2008 में दो फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले हैं। उन्हें 3 IIFA यानी इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकादमी अवार्ड्स भी प्राप्त हुए हैं। शान लाइव इन मॉरिशस प्यार और दोस्ती को एक विनम्र श्रद्धांजलि है। उनका कंसर्ट SBICC में शनिवार 5 सितंबर को रात 8 बजे से शुरू होगा, जो उनके प्रशंसकों के लिए उनके लंबे और शानदार संगीत सफर को करीब से महसूस करने का एक खास अवसर होगा।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव के केंद्र में हुए हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया और उससे टकरा गया। ये हवाई वाहन शुक्रवार को एसबीयू के मुख्यालय से टकराया। इसका निशाना उस कमरे को बनाया गया था जिसका इस्तेमाल सुरक्षा प्रमुख ओलेक्सांद्र पोकलाद करते हैं। ये स्पष्ट नहीं है कि हमले के समय यह पोकलाद इमारत में मौजूद था या नहीं। हालांकि ज़ेलेंस्की ने बताया कि उन्होंने बाद में पोकलाद से बात की और उन्हें उचित और ठोस जवाब देने का आदेश दिया। और इसे संकेत होता है कि रूस के नए ड्रोन अधिक सटीक होते जा रहे हैं। साथ ही ये भी संकेत मिलता है कि सप्ताहांत संभावित अमरीकी मध्यस्थता वाली वार्ता से पहले मॉस्को अपने हमलों को और तेज कर सकता है। और अब मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान आज देश के पूर्व तथा सेंट्रल प्लाटू पर सुबह के समय बादल घेरे रहेंगे, हल्की वर्षा होगी। दिन के दौरान मौसम में सुधार आएगा, मौसम अच्छा रहेगा। रात को बादल कुछ घिर आएंगे, ऊंचाइयों पर बारिश होने का अनुमान है। हवा हल्की रहेगी, पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र में दक्षिणी पश्चिमी समुद्र में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। जनता से सुबह के समय समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16 अधिकतम 22 से 24 शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20 अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय आज सुबह 6:15 बजे हुआ, सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा।

0: मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत कर रहा है। मंत्रिपरिषद ने दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर नेटवर्क के लिए नेशनल फोकल पॉइंट बनाए जाने को मंजूरी दे दी है। एक सफाई अभियान के दौरान लगभग 30 किलो ईंधन तेल के गुच्छे और परतें एकत्र की गई जो रेत के साथ मिलाई गई थी। कल नेशनल कोस्ट गार्ड के जवानों ने भी लगभग 366 किलो ईंधन तेल के जमाव को एकत्र किया। ये जमाव लगभग 1 किलोमीटर की दूरी तक बिखरे हुए थे और वादी जामुगत के पास पाए गए। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन ने कथित रूप से गोपनीय जानकारी लीक होने के मामले में अपनी जांच आगे बढ़ाने के लिए और समय मांगा है। अब तक 5 गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है। एफसीसी के एक जांच अधिकारी ने कल मौका की अदालत में ये जानकारी दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस UTM द्वारा कल और आज पोर्टो साबला स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन किया जा रहा है। विदेश में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव के केंद्र में हुए हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया और उससे टकरा गया। 6:51 हुए हैं। हम तकनीकी सहायक कादिर को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग और फ्रेंच रेडियो विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। मागून स्ट्रीट प्लेनवेट में 82 साल की 82 years old, Mrs. Zuleikhan Bibi Kuar, Mrs. Zuleikhan Bibi Kuar, जिन्हें लोग फाजिला नाम से भी जानते थे, इंतकाल कर गई है। वे नंबर 76 मद्रास स्ट्रीट प्लेनवेट की रहने वाली थी। इनका जनाजा आज सुबह साढ़े दस बजे अल ईशान फ्यूनरल सर्विसेज मागून स्ट्रीट प्लेनवेट से उठाकर दफनाने के लिए खिश्तिया का कब्रस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 10:30 AM। नंबर 9 राहुल रिवे लेन ला लुइस कैटरबोन में 79 साल के 79 years old श्री देवदत्त गोकुल जिन्हें लोग कितो नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के एक बजे इनके मकान नंबर 9 राहुल रिवे लेन ला लुइस कैटरबोन से उठाकर फिनिक्स किश्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। कालीमाई रोड प्लान दे रोश में 58 साल के 58 years old श्री किशोर कुमार रामचंद जिन्हें लोग अजय शोफिया कामियों नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे इनके मकान कालीमाई रोड प्लान दे रोश से उठाकर लावांचुआ की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। बनवेन रोड कच्ची मिलितिया में 62 साल के 62 years old श्री कर्मानंद सेवातियन जिन्हें लोग ताजा नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज सुबह नौ बजे इनके मकान बनवेन रोड कच्चे मिलितिया से उठाकर सेकोंस्टांस सैंपिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। महिरपुर न्यू दिल्ली इंडिया में भारत में 44 साल के 44 years old श्री शैलेश शर्मा चतु जिन्हें लोग वीरू नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है जिन्हें लोग गवीरो उस्ताद राजा जिन्यो नाम से

जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे पहले बारामिया रोजबेल के रहने वाले थे। इनकी अर्थ ही आज दिन के 11:30 बजे इनके मकान महिलपुर न्यू दिल्ली इंडिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लोधी दिल्ली भारत की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11:30 AM। टैगोर द मोगू में 54 साल के 54 years old श्री जितेंद्र किसुंदुयाल जिन्हें लोग सुनंद नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज सुबह 10:30 बजे इनके मकान टैगोर रोड मोगू से उठाकर मोगू की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। जयलालिन लिबेटो कैटोबोन में 93 साल की 93 years old श्रीमती बुधिया लक्षण पैदाशी नाम जंदू की मृत्यु हो गई है। इन्हें लोग डॉक्टर ज्ञान जंदू की बहन के नाम से भी जानते थे। इनकी अर्थ ही आज दिन के एक बजे इनके मकान जयलालिन लिबेटो कैटोबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 1 PM। रॉय रोड रूज पॉम्पलेमूस में 68 साल की 68 years old श्रीमती सरंधा सीतुहल पैदाशी नाम रसधारी और जिन्हें लोग सरंधा नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज सुबह 10 बजे इनके पति राजदेव सीतुहल के मकान रॉयल रोड बुआरूज पॉपलेमूस से उठाकर त्यामिनिस्ट्र गुले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। रॉयल रोड पालमा कैटोबोन में 70 साल की 70 years old श्रीमती मालाबाई लक्सिमो पैदाशी नाम हरी और जिन्हें लोग मालाबाई नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह साढ़े दस बजे इनके पति मारो लक्सिमो के मकान रॉयल रोड पालमा कैटोबोन से उठाकर गांधी पालमा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10:30 AM। रूथ बाशेरी मोका में 52 साल की 52 years old श्रीमती बबीता बेकिया जिन्हें लोग मिंता नाम से भी जानते थे और जिनका पैदाशी नाम बाबाजी था की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे आज दिन के 11:30 बजे इनके मकान रूथ बाशेरी मोका से उठाकर मेजिन कल्दमास की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडिया 11 AM। सैकॉप ऑफ फिनिक्स में 75 साल की 75 years old श्रीमती गुमावती राम गुलामी पैदाशी नाम चुलन और जिन्हें लोग गुमावती नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकी बेटी वृंदा दसोई के मकान सैकॉप ऑफ फिनिक्स से उठाकर फूंजी साक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 1 PM। भिखारी रोड सुरीनाम में 83 साल के 83 years old श्री भरद्वाज सिबुरन जिन्हें लोग रंजीत नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है। वे पहले फार्मासी गोबिन में काम करते थे। इनकी अर्थी आज दिन के दो बजे इनकी पत्नी कमला गुरदयाल सिबुरन के मकान भिखारी रोड सुरीनाम से उठाकर सुयाग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM। और मधुलेन बोकास्काद अंहिता वाक्वा में 31 साल के 41 years old श्री ओकराज धोंदू जिन्हें लोग लोंग नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी आज सुबह दस बजे इनके मकान मधुलेन बोकास्काद अंहिता वाक्वा से उठाकर सोलवेरिनो नंबर 5 की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। जी हाँ, क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

Chillax with Radio Musty. गुड मॉर्निंग सभी को। 7:05 हुए हैं, सूरज पूरी तरह से निकल चुका है और क्या खूबसूरत सैटरडे मॉर्निंग है। आसमान रोशन, मौसम खुशनुमा और अच्छा लैक्स, पर गाने भी बिल्कुल इसी सैटरडे के मूड जैसे, कभी रोमांटिक कभी मस्ती भरे एकदम हटके गाने हम लेकर आए हैं, फील गुड गाने। तो जहाँ भी हैं आप, अपनी सैटरडे मॉर्निंग को एंजॉय कीजिए क्योंकि वीकेंड का मूड ऑन है। और आज की सुबह को और एक्साइटिंग बनाने के लिए वी हैव एक जबरदस्त गेम। आप जीत सकते हैं 2 entry टिकट्स टू वॉच सीएक जवाता। गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक थ्रिल्स, लॉफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेस फॉर द होल फैमिली। सीएक जवाता इज एट बागाटेल, विच शोज एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे एट 6 PM और सैटरडे एंड संडे एट 2:30 PM एंड 5:30 PM। और अब सवाल ध्यान से सुन

0: What is the English word for the French word siècle? What is the English word for the French word siècle? आपको क्या लगता है क्या है? बहुत ही सरल है, तो अपने आंसर आप भेजिए पूरे नाम और पूरे पते के साथ सही जवाब on 5499-1294. Good luck to all of you.
1: Chillax with Radio Masti,
2: your number one Bollywood radio station.

0: Chillax with Radio Musty.
1: Well, हम सोच रहे थे कि सैटरडे है आज, उतने जवाब नहीं मिलेंगे शायद, क्योंकि शायद उतने लोग कनेक्टेड नहीं है, बट हम गलत थे क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग कनेक्टेड है और सही जवाब बहुत सारे मिले हमें. हमने क्वेश्चन पूछा था, What is the English word for the French word cirque? और सही जवाब है circus. जी हाँ, हमने lucky draw भी कर लिया है, lucky winner भी हमें मिल गया है. So congratulations to Amit Bunda, आप है reply से और आपने दिया है एकदम सही जवाब. So yes, आपने खेला है MVC के साथ और यहाँ पर आपको मिल रहा है टू एंट्री टिकट. जी हाँ, टू एंट्री टिकट टू सीएक जवाटा. गेट रेडी फॉर एन अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फिल्ड विद मैजिक थ्रिल्स लॉफ्टर एंड स्पेक्टेकुलर सर्कस परफॉर्मेंसेस फॉर द होल फैमिली. कैच सीएक जवाटा एट बागाटेल विद शोज एवरी थर्सडे एंड फ्राइडे एट 6 PM एंड सैटरडे एंड संडे एट 2:30 PM एंड 5:30 PM. फॉर बुकिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन आप कॉल कर सकते हैं 5250-9413 पर. डोंट मिस द मैजिकल बिग शो. सो आप जीत गए हैं और ये टिकट अब तक कैसे पहुंचेगा हम आपको ज़रूर बताएंगे, संपर्क हम आपसे करेंगे. एंड जो लोग नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, क्योंकि वी हैव गॉट एक दो गेम्स और जो हम ज़रूर लेकर आएंगे थोड़ी देर में. तो चलिए गाना सुनते हैं एंड वी विल बी बैक विद सम मोर गुडीज़.

0: Chillax with Radio Musty.
1: राइट यहाँ पर गेम पे गेम हम लेकर आ रहे हैं आपके नाम एंड यू हैव गॉट अनदर गेम एंड दिस टाइम इट्स फ्रॉम विनर्स. जी हाँ, अगर आप जीत जाते हैं तो आपको मिल सकता है 500 रुपीस का गिफ्ट वाउचर ऑफर टू यू बाय विनर्स. क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिए. अंटिल 6 सितंबर व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ विनर्स एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1 लीटर. अंटिल 6th ऑफ सितंबर 2026 व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ विनर्स एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1 लीटर. सही जवाब पूरे नाम और पूरे पते के साथ आप हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं 5499 1294. चलिए, गुड लक टू ऑल ऑफ यू एक बार फिर.

0: Lunch with Radio Masti.
1: राइट आंसर टाइम. यहाँ पर हमने एक गेम खेला था आपके साथ और पूछा था दैट अंटिल 6 सितंबर व्हाट इज द नॉर्मल प्राइस एंड द प्रमोशनल प्राइस ऑफ विनर्स एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल 1 लीटर. आपको बता दें दैट नॉर्मल प्राइस है 440 रुपीज़, जबकि प्रमोशनल प्राइस है 379 रुपीज़ 95 सेंट. यहाँ पर बहुतों ने सही जवाब, कईयों ने गलत जवाब भी दी. कईयों ने प्रमोशनल प्राइस के बजाय में नॉर्मल प्राइस बता दिया, पर इट्स ओके, होता है. एंड यहाँ पर हमारी लक्की विनर या लक्की विनर हमारे कौन बने हैं हम आपको बताएंगे. बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सही जवाब मिले थे. जी हाँ, हमने ढूंढ लिया हमारा जो लकी विनर. सो कंग्रेचुलेशंस टू मिस्टर चितानंद धनु, आप हैं सैम्पियर से. कंग्रेचुलेशंस आपको. आपने खेला है MBC रेडियो के साथ और आपको मिल रहा है 500 रुपीज़ का वाउचर ऑफर टू यू बाय विनर्स. आपको ये भी हम बता दें दैट ये वाउचर आप तक बाय पोस्ट पहुंच जाएगा. सो नॉट टू वरी, आपको आना नहीं पड़ेगा MBC अपने ID के साथ, क्योंकि ये बाय पोस्ट पहुंच जाएगा. सो वंस अगेन आपको कंग्रेचुलेशन. और जो लोग नहीं जीत पाए, आपकी बारी शायद बहुत ही जल्द आने वाली है.
2: नीले नीले अंबर पर चांद जब आए प्यार बरसा.
3: पुराने गाने सिर्फ सुर और अल्फाज नहीं होते. नीले नीले

0: रेडियो मस्ती।
1: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। चलते

0: Radio Mustang.
1: Sports Magazine is brought to you by Quality Deco, the floor expert.
2: Sports News.
3: Radio Musti in the mix.
4: अपने घर में लाते चलिए, 7:30 बज रहे हैं और स्टूडियो में आ गए हैं विकास जी, तो चलिए उनसे सुनते हैं कि आजकल स्पोर्ट्स जगत में क्या कुछ हो रहा है। नमस्कार आपको विकास जी।
5: नमस्कार रिया, एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल स्पोर्ट्स फैंस। शुक्रवार की रात द रेड्स के लिए बड़ी ही लाभदायक साबित हुई, इसलिए शनिवार की सुबह उम्मीद की नई किरणें लेकर आई हैं। लिवरपूल फुटबॉल क्लब जाग उठा, सुपर स्ट्राइकर अलेक्जेंडर इसाक ने अपना तेवर दिखाया और खेल के प्रथम

0: 9 मिनटों में 2 गोल दागकर क्लब को और कोच एंटोनी इराओला को उनकी पहली जीत दिलाई। यानी 2 ड्रॉज के बाद एक पहली शानदार जीत, एक नया स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, एक नया युग अंधे युग के बाद। इप्स्विच टाउन 0 अलेक्जेंडर इसाक 2, दोनों ही गोल कोडी गैकपो के डिसाइसिव पास पर बने। गैकपो इसाक कॉम्बिनेशन नया रंग ला रहा है और लिवरपूल की बेरंग शुरुआत पर लाया थोड़ा सा रंग, थोड़ी सी जिंदगी और बहुत सारी उम्मीदें।
1: Gakpo gets possession back for the Reds. It's a good ball as well to Alexander Isak, who needs no second invitation. What a wonderful finish. 5 goals in his last 3 against Ipswich now. He got a hat-trick here 2 seasons ago, and he was in on the indecision. Wonderful finish in at the near post, and Liverpool lead early. Cody Gakpo again. What a ball that is for Alexander Isak, who's in again here. Isak with Liverpool's second. Same supply line, same man. Confidence pumping through his veins. What a start for Liverpool this is.
0: खेल के दूसरे भाग में नए रिकॉर्ड साइनिंग ब्रैडली बाकुला भी खेल पाया, जो 123 मिलियन पाउंड में पेरिस सेंट जर्मेन से लिवरपूल में आया है। सो इट्स फाइनली इप्स्विच टाउन 0 लिवरपूल 2। इंग्लिश प्रीमियर लीग का ये तीसरा सप्ताह आज और कल जारी रखे जाएंगे। आज का अर्ली किक ऑफ शाम 3:30 बजे न्यूकासल यूनाइटेड का मुकाबला बोर्नमुथ से सेंट जेम्सेस पार्क में, फिर शाम 6 बजे से ब्रेंटफोर्ड वर्सेस संडरलैंड, ब्राइटन का मुकाबला लीड्स यूनाइटेड से, फुलहम खेलेगी क्रिस्टल पैलेस के विरुद्ध, मैनचेस्टर सिटी का मुकाबला आज कोवेंट्री सिटी से है होम मैदान पे, नॉटिंगहम फॉरेस्ट वर्सेस टोटेनहम हॉटस्पर, और आज का लेट मुकाबला रात 8:30 बजे हल सिटी वर्सेस एस्टन विला। फिर बाकी 2 मैच कल रविवार को खेले जाएंगे, कल शाम 5 बजे एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, भूलेगा नहीं, ये भी एक तगड़ा मुकाबला साबित हो सकता है दोनों टीमों के लिए। एवर्टन मैनचेस्टर यूनाइटेड कल शाम 5 बजे, और कल रात 7:30 बजे 7:30 PM सू रिजर्व आर्सेनल वर्सेस चेल्सी, महा लंदन डर्बी सीजन का पहला क्लासिक, पहला झटका लग सकता है। एमिरेट स्टेडियम में आर्टेटा वर्सेस अलोंजो, प्रीमियर लीग इज बैक। सो लिवरपूल कल जीत गया 2-0 से, बाकी सभी मैच आज और कल खेले जाएंगे। बढ़ते हैं फ्रांस में, जहां पेरिस सेंट जर्मेन की गाड़ी ठप पड़ी हुई है, 3 मैचों में 1 भी जीत हासिल नहीं की, 2 ड्रॉ और 1 हार। उधर स्पेन में योजे मोरिनो को मिला पहला पेन, नतीजे सुनिए, रियल बेटिस 1 रियल मड्रिड 0, ट्रॉय पेरिस का एक पैरट का एक पहला गोल खेल के 81st मिनट पर, और इसके बाद रियल मड्रिड की ओर से किलियान एम्बापे को मिला एक पेनाल्टी जो वो मिस कर गया। सो ट्रॉय पैरट का 1 गोल, रियल बेटिस 1 रियल मड्रिड 0, ये योजे मोरिनो की पहली हार है 3 मैचों में रियल मड्रिड के साथ। आज और कल बाकी सभी मैच खेले जाएंगे स्पेन के लालीगा में। फ्रांस के लीग ए में कल ओलंपिक दे लियों ने ओसेया को 3-1 से हराया, तो आइस मोनाको ने एवे जाकर पेरिस सेंट जर्मेन को पार्क दे प्रिंस में जाकर 2-1 से परास्त किया। पारी के लिए पहला गोल खेल के 31st मिनट पर मार्किन्योस ऑन टारगेट, लेकिन दूसरे भाग में फ्लाविओ नाजिन्यो और इडुम्बो ऑन टारगेट, पारी 1 मोनाको 2। प्रथम 3 मैचों के बाद डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन अभी लीग टेबल के 12वें स्थान पे हैं। लियो ने कल ओसेया को 3-1 से हराया। इटली के सीरिया में जेनोआ 1 कुम्बो 4, जर्मनी के बुंडेसलीगा में स्टुटगार्ट ने एफसी कोलोनी को 4-1 से परास्त किया। स्टुटगार्ट के लिए खानूस, प्रोमेल, डेमिरोविच और वैगनुमान ऑन टारगेट। सो बाकी सभी मैच इस सप्ताहांत खेले जाएंगे इन सब चैंपियनशिप में। फॉर्मूला 1 मोटर रेसिंग चैंपियनशिप की इटालियन ग्रांड प्री रेस कल रविवार को लगने वाली है। किमी एंटोनेली अभी तक पहले स्थान पर है जनरल स्टैंडिंग में। फिर टेनिस में कार्लोस अल्काराज का खेल दिन ब दिन और अच्छा होता जा रहा है। 139 दिनों के बाद, इंजुरी के बाद, वो कोर्ट पर फिर लौट आया है और अपने टाइटल की खूब अच्छे तरीके से रक्षा भी कर रहा है।

0: अल्कराज ने कल चीन के वू यीबिंग को 6-3, 6-4 और 6-1 से हराकर यूएस ओपन के अगले राउंड में कदम रखा है, जहां पर उसका मुकाबला अब टॉमी पोल से होगा। कल के खेले गए मैचों में डिफेंडिंग चैंपियन अरीना सबलेनका की जीत हुई, उसने राकिमोवा को 6-3 और 6-4 से हराया। जेसिका पेग्यूला, फ्रांसेस चियाफोए, कोको गाउफ, अलेक्जेंडर जेरेव, डोमिनिक चेन, डैनिल मेदवेदेव आदि आगे बढ़ पाए। इसी समय डेनी शापोवालोव और बेन शेल्टन के बीच मुकाबला जारी है। स्थानीय तौर पर कल रविवार शाम 3:25 पर शॉन्डेमास में घुड़दौड़ सीजन की सबसे प्रतिष्ठित रेस द फेनिक्स मेडन कप 2400 मीटर पर दौड़ी जाएगी। फ्यूचर स्विंग, गुड काउंसिल, रैपिडाश आदि घोड़े एकदम तैयार है ये मेडन कप जीतने के लिए। और क्रिकेट में आयरलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा के दोनों सेमीफाइनल मैच कल रविवार को ही खेले जाएंगे। कल SSL क्रिकेट ग्राउंड मापू में सुबह 9:00 कंटिनेंटल चीटास का मुकाबला वन हेल्फ जागुआर से होगा। ये होगा ICE सीजन 4 का पहला सेमीफाइनल। फिर दिन के 1:00 कल ही वहीं के मैदान पे कैंपस अब्रोड लायंस टक्कर लेंगे थॉमस कुक टाइगर्स से। सो हमारे आपकी मुलाकात आज रात 7-9 के बीच आपके अपने झंकार 20 में। अभी के लिए म्यूजिक ऑन विद रिया, नमस्कार और शुभ दिन।
1: थैंक यू सो मच विकास जी।
2: This magazine was brought to you by Quality Decor, the floor expert.
3: Quality Déco finit ouvert ce nouveau showroom à Flac juste à côté MCB. Pour célébrer sa grande ouverture, la méga promo au plein de produits, morbe à portière 25 roupies, granit à portière 2000 roupies, lavabo, roche pour mur, robinetterie, sanitaire, toilette, baignoire et beaucoup les autres encore. Pas rater sa méga promo, vine découvrir un nouveau showroom de Quality Déco, Boulet Blanc à côté MCB, Flac, numéro téléphone 413 87 55 ou 413 10 53. Radio.

0: Chillax with Radio Musty.
1: And आज का दिन म्यूजिक लवर्स के लिए बहुत ही खास है. आज रात SBICC पार्क में कैसी आवाज गूंजेगी जिसने हमारी जिंदगी की कितनी ही खूबसूरत मोमेंट्स को साउंडट्रैक कर दिया है. जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट शान, जिनका असली नाम है शांतनु मुखर्जी, लेकिन हम सब के लिए वो बस शान ही है. एक ऐसी आवाज़ जो कभी रोमांटिक होती है, कभी नॉटी, कभी एनर्जेटिक और कभी सीधा दिल को छू जाती है. सोचिए वो पहली बार मुस्कुराहट, तन्हा दिल, वो लड़की है कहा कुछ तो हुआ है, माय डियर गुज़म. वैसे ये गाना हम जरूर चलाएंगे थोड़ी देर में. और कितने सारे और गाने हैं, अनगिनत. और शान की खास बात है उनकी वर्सेटिलिटी. रोमांटिक सॉन्ग्स हो, पॉप हो, डांस नंबर्स हो या सोलफुल मेलोडीज, उनकी आवाज़ हर मूड में अपनी एक अलग पहचान बना लेती है. उन्होंने चांद सिफारिश और जब से तेरे नैना के लिए फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड सब भी जीते हैं. और चांद सिफारिश जो हमने अभी अभी चलाया, इसकी बात ही क्या करें, क्या गाना है. आमिर खान और काजोल द फना, जतिन ललित का म्यूज़िक, बहुत ही खूबसूरत गाना है. और ये गाना जब रिलीज़ हुआ था तो सेंसेशन तो बन ही गया था. अभी भी जब भी हम ये गाना सुनते हैं तो एक अलग ही दुनिया में हम चले जाते हैं. सो दैट्स द मैजिक ऑफ शान. वैसे हम एक दो गाने ज़रूर चलाएंगे शान के, एक दो गाने, क्योंकि आज इट्स द बिग कंसर्ट ऑफ शान लाइव इन मॉरिशस. जी हाँ, आपको वो लाइव देखने को मिलेंगे. एंड लेट मी टेल यू दैट आज का जो कंसर्ट है, इट्स स्टार्टिंग एट 8 PM. जी हाँ, ऑर्गेनाइज्ड बाय ticketbox.mu. तो चलिए एक और गाना शाम के नाम.
0: Chillax with Radio Musty,
2: your number one Bollywood radio station.

एंड वेल इसी गाने के साथ इट्स टाइम फॉर रिया टू से बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. आई होप ये म्यूजिकल सफर आपने मेरे साथ एंजॉय किया. हमारी मुलाकात कल सवेरे होगी. तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट सैटरडे.

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Wishing you all a very good morning. Check your time. It's 8 o'clock.
5: सबको के नमस्ते भोजपुरी के समाचार सुने जा सरकार नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन कार्यक्रम के फिनो से शुरू करता एक पायलट चरण में आवत 16 से 28 नवंबर ले ग्रेड 8 के 12 से 13 बरिस के आयु होला 206 शामिल हुई जो 14 दिन ले युवा अनुशासन नेतृत्व नागरिक जिम्मेदारी सुरक्षा और स्वयं सेवा पर केंद्रित कयन गो गतिविधि में भाग लियन जा प्रधानमंत्री दफ्तर की सरपरस्ती में ये प्रोग्राम में शिक्षा मंत्रालय युवा एवं खेल मंत्रालय और पुलिस विभाग के सही

योग प्राप्त होल बा। पायलट चरण के समाप्त होइला के बाद कार्यक्रम के मूल्यांकन करल जाए। एकर आधार पर 2027 में एके पूरा देश में लागू करे के विचार करल जाए। मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपन सहयोग के और मजबूत करता। मंत्रिपरिषद दोनों देश के स्वास्थ्य मंत्रालय के बीच एगो समझौता पर हस्ताक्षर करे के मंजूरी देले बा।

0: रेत संगे मिलावल गल रहल नेशनल कोस्टगार्ड के जवान लोग करीब 366 किलो ईंधन तेल के जमाव के भी इकट्ठ कर ले हवन सा और मतलब जो नवादिजाम के भी मिलल बा। फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन कथित रूप से गोपनीय जानकारी लीक हो के मामला में अपन जांच आगे बढ़ाए खातिर और समय मंगले बा। अबले 5 गवाह के संगे पूछताछ करल गल बा। तीन जना के पहचान हो गल बा और उन लोग से भी पूछताछ करल जाए। FCC के एगो जांच अधिकारी काल मुका के अदालत में ई जानकारी दिलन। उ बखत कारोबारी स्टीवन मुतुका पेन के जमानत पर रिहाई की याचिका पर सुनवाई होत रहल। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस UTM काल आर आज पोतु साबल के अपन कैंपस में एगो ओपन डे के आयोजन करता। दूसर देश के खबर में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की बोले बा कि केव के केंद्र में होल हमला के दौरान एगो रूसी ड्रोन यूक्रेन के सुरक्षा सेवा के मुख्यालय के निशाना बनैले बा और हुआ टक्कर मार देले बा। तो एक संगे भोजपुरी के समाचार समाप्त होल। तुह लोग के ध्यान खातिर धन्यवाद। नमस्ते आर शुभ दिन।
1: News on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM2
3: Radio Musty.

0: RM2
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: It's the weather broadcast with winners.
3: On est tous winners.
4: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं. अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान. देश के पूर्व तथा सेंट्रल प्लेटू पर आज सुबह बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी. दिन के दौरान मौसम अच्छा रहेगा, मौसम सुहाना रहेगा. रात को बादल कुछ घिर आएंगे और ऊंचाइयों पर वर्षा होने का अनुमान है. हवा हल्की रहेगी और पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी. दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी. जनता को सुबह के समय समुद्र में न निकलने की सलाह दी जाती है. तापमान सेंट्रल प्लेटू पर न्यूनतम तापमान 14 से 16, अधिकतम 22 से 24. शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सूर्योदय आज सुबह 6:15, सूर्यास्त शाम 6:02 पर होगा.
1: Your weather forecast on RM2
0: Radio Musti.
5: La foire Bilbil Kaji retourne Côte Winners.
6: Bilbil Kaji de retour Côte Winners. Du 26 août au 6 septembre uniquement. Le shampoing Hugues by Elixir de 600 ml à 99,95 et l'assouplissant Lenore de 1155 ml à 197,95. Découvrez notre brochure sur notre page Facebook et sur winners.mu.
5: Nous la
7: On est tous winners!

0: без търка.
1: RM2.
2: बचकर सलमनट हो गया है सभी का वेलकम ऑन रेडियो मस्ती विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सैटरडे का दिन जो आया है और एकदम फ्रेश मॉर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और बताओ जरा आज सुबह का क्या प्लान है? लेट उठना है, ब्रेकफास्ट बनाना है, दोस्तों के साथ फ्रेंड के साथ आपने आउटिंग करनी है, या फिर बेड से उठने का ही प्लान कैंसिल है? यहाँ पे आराम करने का दिन जो आया है सैटरडे, और कई लोग आज छुट्टी का दिन मनाने वाले हैं, लाइक सैटरडे के लिए वो काम नहीं करते हैं। लेकिन ऐसे में हमारे कई फ्रेंड्स जा चुके हैं काम पर, ऑलरेडी एट वर्क, ऑलरेडी ऑन ड्यूटी, सो विशिंग ऑल ऑफ देम बॉन कुराज। यहाँ पर आ गई है हंसनी आप लोगों का साथ निभाने के लिए इन दिस सैटरडे मॉर्निंग शो। दिस इज आवर टाइमलेस तड़का जो यहाँ पर रहेगा आप लोगों के लिए अप्टिल 11, और साथ में हम लेकर आएंगे कुछ ऐसे टाइमलेस गाने जिनको सुनकर ही मुस्कुरा आप जाएंगे, एंड डेफिनेटली विल बी ब्रिंगिंग सो मेनी रीजंस आज मुस्कुराने के लिए, खुश रहने के लिए। तो यहाँ पर आप सभी का स्वागत ऑन रेडियो मस्ती।
3: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
4: Milo libère ta force.
5: Riche en lait, cacao.

0: et orge maltée, Milo libère ta force.
1: Nestlé, good food, good life.
2: और अभी के लिए टाइम टू हैव अ कोट ऑफ द डे, जिससे क्या होता है, जिससे किसी का मूड बदल सकता है, किसी की जिंदगी सवर सकती है. चूज हैप्पीनेस नॉट बिकॉज लाइफ इज परफेक्ट बट बिकॉज यू डिजर्व टू एंजॉय द लिटिल मोमेंट्स दैट मेक इट ब्यूटिफुल. बिल्कुल यहाँ पर खुश रहने के लिए वजह नहीं, बस एक खूबसूरत नज़र चाहिए. जिंदगी छोटी है, इसलिए मुस्कुराते रहो और हर पल को जीते रहो. सुकून वही है जहाँ दिल खुश है. दूसरों से तुलना छोड़ दो, अपनी जिंदगी में खुशियाँ खुद दिखाई देने लगेंगी. ये थे सम कोट्स, ऑफ कोर्स एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए एंड टू मेक यू फील अ बिट मोर पॉजिटिव.
3: Le sport c'est de l'énergie, de la sueur, des sacrifices.
0: Milo libère ta force. Riche en lait, cacao et orge maltée, Milo libère ta force.
1: Nestlé, good food, good life.

0: तड़का RM2
1: लेटेस्ट समय के टबेट मोर कलरफुल एंड वंडरफुल वेदर वे मस्ती जी हाँ वो ही है हमारी और आपकी जिंदगी जो हमको मिली है ऊपर वाले की मेहरबानी से और एक नया दिन शुरू हो गया है सो चलिए लेटेस्ट मेक द मोस्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल डे जो शुरू हो गया है हम सभी लोगों के लिए और यहाँ पर हमने सोचा है चलिए लेडी लक को बुला लेते हैं आफ्टर ऑल आज चांस वो देने वाली है सबको टू बी पार्ट ऑफ वर्षकों को एंड टू विन ऑन वेडर मस्ती Stand a chance to win two entry tickets to the grand finale of Fortis Beauty with a noble purpose. Miss India Worldwide Mauritius 2026. So mark your calendar for Saturday 12th of September 2026. Shuru hoga wo bada event as from 7:30 p.m. at the Triano Convention Center. So yahan par Radio Masti is here. Jahan par ye chance hum aapko de rahi hai to be part of the spectacular night. Jitna aap chahenge, so Radio Masti is here. Your chance to win starts here. Ek aisa question related to, let's say, beauty contest. जबकि आप जा रहे हो टू वॉच द स्पेशल नाइट तो एक क्वेश्चन रिलेटेड बॉलीवुड रिलेटेड एक क्वेश्चन हो रहा है यहाँ पर हम आपसे पूछने वाले हैं एक ऐसी अभिनेत्री शी वॉज बोर्न इन नवंबर 1967 13th ऑफ नवंबर राइट और आफ्टर विनिंग द 1984 मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट शी मेड हर एक्टिंग डेब्यू इन हिंदी मूवी जो नाम दिया गया था सुल्तनत तो यहाँ पर आपको पहचाना है वो अभिनेत्री कौन है हु इज द एक्ट्रेस एक्चुअली वो वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेस है इन बॉलीवुड और बहुत ही जाना माना है शी इज वेल रिकॉग्नाइज्ड फॉर हर कॉमिक टाइमिंग और उनके कई मूवीज आए जो एकदम हिट सुपर हिट रही है सो आपको पता लगाना है वो अभिनेत्री का नाम शी वॉज बोर्न इन नवंबर 1967 और शी वॉन द मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट इन द ईयर 1984 हम किस मूवी के बारे में नहीं बल्कि किस एक्ट्रेस के बारे में बात कर रही है राइट यू हैव टू गिव मी द नेम ऑफ द एक्ट्रेस अगर आपके पास सही जवाब आ गया है सो जल्दी से आप हमको याद करें ट्राई योर लक ऑन 5499-1294 डोंट फॉरगेट आपका पूरा नाम पता एड्रेस नेम ये सब प्लीज आप लिखे ताकि आप इन रहे फॉर द लकी ड्रॉ राइट सो चलिए देर किस बात की हम सुनी आई है पूरी टीम आई है टू विश यू ऑल द बेस्ट
0: RM2
2: रेडियो मस्ती
0: फील द मस्ती

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: वेलकम अगेन ऑन रेडियो मस्ती. यहाँ पर इट्स द गेम टाइम, जहाँ पर आपको चांस दिए जा रहे हैं टू पार्टिसिपेट एंड टू विन. यहाँ पे सवाल तो ये था, एक ऐसी अभिनेत्री, एक ऐसी एक्ट्रेस जो बस शी कंट्रीब्यूटेड सो मच इन बॉलीवुड, इन हिंदी सिनेमा और साथ में इन द ब्यूटी वर्ल्ड एज वेल. शी वॉन द टाइटल ऑफ मिस इंडिया ब्यूटी पेजेंट इन द ईयर 1984 और हर बर्थ डेट 13th ऑफ नवंबर 1967. हम किस के बारे में बात कर रही हैं? She is the beautiful, the very gorgeous Juhi Chawla Mehta. And yeah, she won the Miss India Beauty Pageant in the year 1984. So, say jawab, it's Juhi Chawla Mehta. Or let's go now, check out kaun hai lucky winner.

तो यहाँ पर चलते हैं रिविया जुरांपा, जहाँ पर विश्वनाथ दुर्गा जी आए हैं टू पार्टिसिपेट इन द रिकोको, एंड बस चांस आपका एंड यू आर द विनर. विश्वनाथ जी, कंग्रेचुलेशंस टू यू, आपकी जीत हो गई है. यस, विश्वनाथ दुर्गा, आपकी जीत.

कलेक्ट हुई है. एंड यहां पर आपको चांस मिल गया है टू विन द टू एंट्री टिकट्स टू द ग्रैंड फिनाले और फोर्चेस ब्यूटी विद द नोबल पर्पस मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड मॉरिशस 2026, जहां पर ये इवेंट होने वाला है नेक्स्ट सैटरडे को शनिवार 12 सितंबर को एट 7:30 PM एट द ट्रियानो कन्वेंशन सेंटर. Big bravo to you, congratulations, aapki jeet ho gayi hai, definitely, aap to ja rahe ho to be part of the great event.

जी हाँ बिल्कुल नंबर वन बॉलीवुड रेडियो स्टेशन जो आपका है ऑलवेज फॉर यू फॉरएवर एंड एवर दिस इज आवर रेडियो मस्ती एंड दिस इज आवर सैटरडे वाला शो जहाँ पर मिलकर हम धूमधाम से इस मॉर्निंग को जबरदस्त बना रहे हैं मस्त है ये गाने जबरदस्त है ये माहौल तो और क्या चाहिए टू मेक इट परफेक्ट सो मुस्कुराकर आप कह लीजिए ये जो दिन आया है हमारा है इट्स ओनली आवर्स और मिलकर हम इसको और भी खास बनाने वाले हैं राइट सो मिलकर हम अब सजा रहे हैं आप लोगों के लिए आज का टाइमलेस सर का ब्रिंगिंग यू सम ग्रेट गाने अप टिल 11 स्टे वेल कनेक्टेड आज के लिए ना और जो हंसनी है आपके साथ विशिंग यू ऑल अ वेरी गुड मॉर्निंग

0: без тарка.
1: RM2.
2: वेलकम ऑन अर रेडियो मस्ती. यहाँ पर बिल्कुल ये प्यार है. जिंदगी में बहुत कुछ तो नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा अपनापन और कोई ऐसा जो दिल से आपको समझे. खुश रहने के लिए दौलत नहीं, कभी कभी बस किसी का सच्चा प्यार और साथ ही काफ़ी होता है. जिंदगी खूबसूरत तब लगती है जब कोई पूछने वाला हो तुम ठीक हो ना. तो अगर ये आपके पास है, मैसेज ऑलरेडी आ गया है कि आप ठीक हो, सो बस उस मैसेज को और भी प्रेशियस बना लीजिए. थोड़ा सा प्यार मिल जाए तो बड़ी बड़ी परेशानियां भी छोटी लगने लगती है. जिंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस कोई ऐसा जो जिसके साथ हंस सकूं, रो सकूं और खुद को पूरी तरह बस हैप्पी फील कर सकूं. तो हर किसी को खुश रहने के लिए बहुत कुछ चाहिए. ये प्यार, ये अपनापन, ये दोस्ती, ये म्यूजिकल सफ़र, ये आपका रेडियो स्टेशन जो हमारा और आपका हम सफ़र बन ही जाता है. और ढूंढ लेते हैं वो जरिया, ढूंढ लेते हैं वो स्पेशल रीज़न टू स्माइल अगेन एंड टू बी हैप्पी. जब भी हम यहाँ पर आते हैं, आप लोगों के साथ हम जुड़ जाते हैं, तो ये जो खुशी है बस दुगनी हो जाती है. ऑलवेज बींग अ फील ऑफ बींग हैप्पी एंड स्ट्रेस फ्री. This is our Saturday wala show musical journey for this lovely morning. Well, I hope ki sab theek on your side. Drive karte samay please be very cautious, stay safe. Aur bas kaam par already aap ho is samay, already on duty. So bon courage aapko. I really hope ki nashta bas ho gaya hai. Abhi getting ready for some more energy. So bilkul tera hai ye musical safar aap logon ke liye up till 11. So kahin mat jaiye, stay well connected for more. Yahan par hai Hansani jo aapke saath hai. And I would like to hear from you. Kuch aap की बारी है कहने के लिए, कुछ कहने बारी जो है आपकी हो जाएगी ऑन 5 4 9 12 94. आपके पास कोई है कोई खास बात जो शेयर करने से क्या होगा, कुछ खास बन जाएगा और ये बातें. सो व्हाई नॉट कीप शेयरिंग मी योर मैसेजेस टू सेलिब्रेट योर सैटरडे. 5th of September एंड वी आर हियर टू सेलिब्रेट विद यू ऑन 5 4 9 12 94.

छठ कैदियों को गवाही के रूप के लिए बुलाने की योजना भी बनाई है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस UTM द्वारा कल और आज पॉइंट साबल स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य भावी छात्रों को UTM द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली विभिन्न

0: देंगे और मशहूर गायक केके को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और समाचार के बाद आज की चर्चा प्रोग्राम में आज रोड ट्रैफिक अमेंडमेंट एक्ट 2026 पर चर्चा की जाएगी। किरण जानकी के मेहमान होंगे SI मिर्जा बुधन। और विदेश की खबरों में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि कीव के केंद्र में हुए हमले के दौरान एक रूसी ड्रोन ने यूक्रेन की सुरक्षा सेवा के मुख्यालय को निशाना बनाया और उससे टकरा गया। तो इन्हीं खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए। नमस्कार और शुभ दिन।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: RM2
3: Radio Musty.
2: Feel the Musty.
3: Timeless Tarka.
2: RM2
3: Timeless Tarka.

0: ऑलराइट, इसमें झगड़ने की क्या बात है यार?
1: पहले भवरे जैसे पास पास मंडरा है,
0: पड़ा है।
1: फिर बिजी हूँ ये कहकर तुमको वो
0: टर
1: समझा करो डार्लिंग, आज बहुत काम
0: मेरी
1: है।
0: भी तो सुनो।
1: दूर हुआ तो क्या, दिल में तुम्हारा नाम है।
0: वाओ।
1: जिस चेहरे पर मरते हैं वो बोरिंग हो जाए।
0: नॉट लिसनिंग,
1: कुछ ही दिन में नजरे इनकी इधर उधर मंडरा।
0: नॉट लिसनिंग,
1: सिर्फ प्यार से जिंदगी नहीं
0: चलती।
1: इंटीरियर डेकोरेशन का कोर्स क्यों नहीं करती?
0: ओके दैट्स इट।
2: Radio Musti.
3: Meet the RM2 team at Kadivil Flag this Saturday, 5th of September, as from 11 a.m. till 2 p.m. Celebrate Ganesh Chaturthi festivities with gifts, new product tasting, and fun. Guess the fruits and win with Eagle Brand. Eagle Brand, the art of spice.
2: RM2 Radio Musti.
4: Timeless Tarka.
5: हमने की शुरुआत विद अ ग्रेट वॉइस ऑफ शान। यस, ही इज ऑलरेडी इन मॉरिशस और आज उनका धमाकेदार कंसर्ट भी रहने वाला है एट SBICC पाई एज फ्रॉम 8 PM शुरू होगा। और अगर अब तक आपने नहीं लिया है अपने टिकट्स को, सो जल्दी जल्दी ग्रैब योर टिकट्स एंड डेफिनेटली यू कैन गो टू बी पार्ट ऑफ द ग्रेट नाइट। उनके सारे जो गुड एंड हिट सॉन्ग्स रहने वाले हैं हम सब चाहने वालों के लिए। सो कांट वेट टू सी शान जो शान के साथ गाएंगे आज हम सब चाहने वालों के लिए। तो यहाँ पर बिल्कुल सभी का स्वागत है। ऑलवेज कीप यू रिलेटेड टू बॉलीवुड, जहाँ पर भी रेडियो मस्ती है, वी डू ब्रिंग यू द बेस्ट ऑफ बॉलीवुड गाने, राइट। और हम तो पहुँच गए हैं इन द सेकंड आवर ऑफ टाइमलेस तरका। कैसे ये वक्त निकल गया पता ही नहीं चला। जो अच्छा है उसे महसूस करो, जो बुरा है उसे बस जाने दो। खुश रहो और पॉजिटिव रहो, ये ज़रूरी बात है। अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ आपको लगता है आपको सुकून मिलेगा, आपको खुशी मिलेगी और आपको प्यार मिलेगा। हर सुबह तो एक नई शुरुआत है ना, पुरानी चिंताएं बस छोड़ दीजिए और अच्छी उम्मीदों के साथ आगे बढ़ो। अच्छी सोच रखो, अच्छे लोगों के साथ रहो और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाते रहो। Well, we feel like कि जहाँ दिल को सुकून मिले वहाँ पर हमें रहना चाहिए, जहाँ पर एनर्जी अच्छी मिले वहाँ पर हमें मुस्कुराना चाहिए, राइट। नेगेटिव बातों से, फीलिंग्स से बिल्कुल आप दूर रहेंगे, जितना आप दूर रहेंगे उतना ही बस आपके लिए फ़ायदा रहेगा। मुस्कान को पास रखिए और हर दिन को अपने दिल से आप जी लीजिए। ये दिन हमको मिला है, ज़िंदगी जो हमको मिली है, ज़िंदगी में वही एनर्जी रखिए जो आपके दिल को हल्का बनाएंगे। और वी फील लाइक हैवी, कभी कभार ऐसा होता है कि दिल भारी हो जाता है, लेकिन रेडियो मस्ती इज़ हियर दिल को हल्का बनाने के लिए। और हमारे पास वो नुस्खा है, हमारे पास वो सोल्यूशन है, वो मैजिकल डोज है जिससे क्या होता है, जो मूड है आपका हम बदल देते हैं। वी हैव इट ऑल ऑन रेडियो मस्ती। और ये जो म्यूजिकल शो हम सजाते हैं इसी उम्मीद के साथ कि जितने भी दर्द तकलीफ है वो सब दूर हो जाए, स्ट्रेस फ्री आप होके

0: You just enjoy खुलकर हमारे साथ इन द म्यूजिकल वर्ल्ड. तो दिस इज योर शो टाइम लिस्टर का. यहाँ पर 11 बजे तक हंसनी रहेगी आपके साथ साथ. हाँ, खूब सारी बातें हमें करनी है आपके साथ. ये जो सफर है कुछ और मजेदार होने वाला है. सो कहीं मत जाइए, ऐसे ही सुनते रहिए. स्टे वेल कनेक्टेड.
1: Timeless Tadka. RM2. Timeless Tadka.

0: Seamless Tadka.
1: RM2.
2: सब कुछ नया लगेगा अगर आप कुछ निगेटिव बातें पीछे छोड़ेंगे. जो दर्द आपको अंदर से तोड़ रहा है उसे पकड़ कर मत रखिए. लेट इट गो. आप खुश रहने को डिजर्व करते हो, इसलिए यहाँ पर लेट गो ऑल योर स्ट्रेस, लेट गो ऑल द पेन्स. हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं होता. कुछ चीज़ों को बस एक्सेप्ट करके दर्द से छोड़ देना चाहिए. वैसे एक बात तो है, पास्ट को यानी हाँ बीते जो हुए कल है उनको हम बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसके साथ जीना ज़रूर छोड़ सकते हो. लेट गो एंड बस आप जी. यहाँ पर जीने के लिए ये ज़िंदगी जो हमको मिली है, जो आपका नहीं रहा उसके पीछे अपनी ये खुशी मत खोइए. कभी कभी लेटिंग गो भी एक हीलिंग होती है. सो बी पार्ट ऑफ द हीलिंग प्रोसेस और क्या आप खुश हो जाएंगे. एंड बी द रीज़न फॉर योर ओन हैप्पीनेस. यहाँ पर ढूंढ लीजिए वो वजह टू बी हैप्पी. इतने सारे रीजन्स हैं और एक ढूंढेंगे तो बस जो ज़िंदगी है हमारी वो बिल्कुल सवर जाएगी. So we are here to keep sharing the positive vibes on Radio Masti, jahan par bhi saath jari hai. It's a pleasure to welcome everyone. Thank you so much for listening to Radio Masti, jo wonderful songs hai bas hum lekar aa rahe hain to entertain you for this great Saturday morning. We have Mr. Deepak. Hello ji, good morning to you. Ready ho ki sab theek hai? Enjoying the show, enjoying the songs in Timeless Tadka. To rahega ek zabardast one aapke liye and for everyone. Next one for Vasen Chakravanan ke liye, celebrating his birthday aaj. Lots of good wishes hai from Rajendra, from Arulen, Varuven. We have Puvali aur sabhi jo parivar hai unke, all the families jo aaye hai Vasen ji ko wish karne ke liye, jo Belia ke rehne wale hai. Wishing him all the best and wishing him a very happy birthday. We have it for Nandisha ke liye, celebrating her birthday as well. Lots of good wishes to you, birthday girl. Getting ready to go for prayers. और आपने सोचा है जन्मदिन की शुरुआत आप करेंगे विद द डिवाइन ब्लेसिंग्स. बिल्कुल सही सोचा है. तो स्टे ब्लेस्ड. आप हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते आप हमेशा रहे. ये हमारे गुड विशेस है फॉर यू फ्रॉम ऑल आवर टीम. सो जितने भी हमारे दोस्त आज अपने स्पेशल दिन मना रहे हैं, जी हाँ आज आपका है जन्मदिन जो साल में एक ही बार आता है, जो सबसे खास रहता है. सो वी आर हियर हंसनी के साथ विद ऑल द टीम टू विश यू अ वंडरफुल डे.

कुछ ऐसे गाने जिनको सुनकर बस अच्छा फील होता है और ऐसे में जहाँ पर भी साथ जारी है. इट्स अ वार्म वेलकम एवरीवन. मे बी अभी आपने रेडियो ऑन किया है, कुछ बिजी थे, कोई बात नहीं, चलता है. मुझे पता है कितना सारा काम होता है और घर पर ही आप बिजी रहते हो, साफ सफाई चलती है. स्पेशली जब ये सैटरडे वाला दिन आता है, वी डू हैव वीकेंड ऑल्सो, सो यू मेक द मोस्ट यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए. और इसी में क्या चाहिए, चाहिए एक सुपर डोज म्यूजिक जहाँ पर एनर्जी लेवल थोड़ा सा अप हो जाए. सो बिल्कुल सही जगह पे आप आए हो. दिस इज रेडियो मस्ती ब्रिंगिंग यू सम ग्रेट एनर्जी अराउंड. दिस इज टाइमलेस तड़का अंटिल 11. हंसनी का साथ आप निभाते रहिए एंड वी आर हियर अब लेकर एक टाइमलेस 90s. अगर ये गाना आपको बहुत ही पसंद है तो डेडिकेट करेंगे आपके लिए. विल मेक इट अ फैबुलस डे अहेड. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ टाइमलेस तड़का राइट ऑन रेडियो मस्ती.

Right back with the Radio Masti और यहाँ पर था एक chance यहाँ पर था नहीं बल्कि रहेगा actually that's a joke था अगर हम बोल देंगे तो लगेगा कि chance फिर से चला गया oh no not again यहाँ पर फिर से chance हम आपको दे रहे हैं Radio Masti is here now to bring you chances to bring you lots of positive vibes so खेलिए Radio Masti के साथ यहाँ पर you stand a chance to win two entry tickets to the grand finale of Fortis Beauty with the noble purpose Miss India World While Mauritius 2026 so आप डेट को बस याद रखिए that will be Saturday 12 September 2026 शुरू होगा वो बड़ा event as from 7:30 PM at the Triano Convention Center so stay tuned to Radio Masti यहाँ पर आप खेलेंगे और जो chance है वो भी बिल्कुल आपका हो जाएगा to be part of the spectacular night Radio Masti your chance to win starts here बिल्कुल शुरू होता है आपका chance कुछ देर पहले हमने चलाया है एक music और गाना तो आएगा बाद में यहाँ पर गाने को सुनकर आपको पता लगाना है मूवी का क्या नाम और उसमें जो टू एक्ट्रेसेस नजर आई थी उनका जो नाम है आपको बताना है दैट्स वेरी इजी फर्स्ट जो टाइटल है मूवी का आपको बस पता लगाना है और साथ में उस मूवी में टू एक्ट्रेसेस नजर आई थी ये आपको याद है अगर सही जवाब आ गया है आपके पास सो जल्दी से ट्राई योर लक ऑन 5491294 सो टोटल में आपको हमें देना पड़ेगा 3 सही जवाब सो वेटिंग फॉर यू ऑन 5491294

राइट, पिया वाला सॉन्ग किस मूवी से लिया गया है और साथ में नजर आई टू ब्यूटिफुल गॉर्जियस एक्ट्रेसेस जो नजर आई थी उस गाने में, उस मूवी में ही। तो बस सिंपल सी बात, आपको सही जवाब ढूंढना है और हमें शेयर करना है ऑन 5499-1294। वी आर वेटिंग फॉर यू। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे ठीक 10 बजे के समाचारों की ओर, और इसके बाद विल बी हेडिंग टुवर्ड्स योर लकी ड्रॉ, जहां पर जाने का मौका मिलेगा हु इज द लकी विनर। सो ऐसे ही स्टे वेल कनेक्टेड ऑन रेडियो मस्ती एंड कीप एंजॉयिंग आवर शो, जो है हमारा और आप ही का टाइमलेस तड़का।

0: Welcome to Radio Mystique.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Mystique.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Mystique.
0: Radio Mystique.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Mystique.
4: Time check, din ke 6 ka 10 baje hain. Sunte hain sankshipt samachar Pooja ke saath. Aapko namaskar Pooja.
5: Namaskar Hansini, sabhi ko mera namaskar. Samacharon mein aap sabhi ka hum swagat karte hain. सरकार नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन कार्यक्रम को फिर से शुरू कर रही है. इसके पायलट चरण में अगले 16 से 28 नवंबर तक ग्रेड 8 के 12 से 13 वर्ष की आयु वाले 200 छात्र शामिल होंगे. 2027 में इसे पूरे टापू में लागू करने का विचार किया जाएगा. मॉरिशस और सऊदी अरब स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपने सहयोग को और मजबूत कर रहे हैं. मंत्रिपरिषद ने दोनों देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दे दी है. मंत्रिपरिषद ने उच्च शिक्षा विज्ञान और अनुसंधान मंत्रालय को संयुक्त राष्ट्र के क्लाइमेट टेक्नोलॉजी सेंटर एंड नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय समन्वय केंद्र बनाए जाने को मंजूरी दी है. बुआ दिजा मुहैत और पदिसनी में सफाई अभियान के दौरान ईंधन तेल के अवशेष बरामद. इन मलबों को लाशोमिया के खतरनाक वेस्ट ट्रीटमेंट सेंटर ले जाया गया. यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस द्वारा कल और आज पैतुसाबल स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन. 3 साल बाद बॉलीवुड के मशहूर सिंगर शान का शानदार कंसर्ट आज SVICCPI में. जी हाँ, इसमें शान अपनी लोकप्रिय आवाज़ से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे, जबकि उनके बेटे माही भी पहली बार मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे और मशहूर गायक के को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे. विदेश में बोलीविया में एक सैन्य बराक में हुए विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत. अधिकारियों को आशंका है कि मृतकों की संख्या इससे अधिक हो सकती है. पुलिस के अनुसार विस्फोट में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें ज्यादातर घरों की खिड़कियां टूट गई. आपातकालीन कर्मी मलबे में लोगों की तलाश कर रही है. तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए. कुछ ही समय में शोक समाचार.

0: news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
1: बिकाऊ लेन फिनिक्स में 69

0: Connor, Dr. Pierrot, la rue Philao, quand le vieux met, 63 salaké, 63 years old, Shri Gurunaden Narayanan, Shri Gurunaden Narayanan, जिन्हें लोग रिवेन नाम से भी जानते थे कि मृत्यु हो गई है, वे पहले एयर मार्शल्स में काम करते थे। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे ला शापेल ऑडोंट एली एनसन रायरोड बुबासेन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सैम आते मोहोश की सिमिट्री ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। नंबर 117 प्लेट डेजियमिताज फिनिक्स में 75 साल की 75 years old श्रीमती तारामती गोपाल, पैदाशी नाम जयप्रकाश और जिन्हें लोग श्यामा नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनके बेटे विनेश्वर शर्मा गोपाल के मकान नंबर 117 पेंडेजियामिताज फिनिक्स से उठाकर बिगाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 12:30 PM। नंबर 18 बुटेया सीते से आशा तेहूज में 56 साल के 56 years old श्री देव कुमार गजाधर, जिन्हें लोग देव नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज शाम 4 बजे इनके बेटे गजाधर अश्ले के मकान, इनके बेटे अश्ले गजाधर के मकान नंबर 18 बीतिया सीते से आशा तेहूज से उठाकर बुआमौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 4 PM। डिस्पेंसरी रोथ्रियोले में 70 साल के 70 years old श्री विजय कुमार आलिया, जिन्हें लोग विजय नाम से अधिक जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दोपहर के 3 बजे इनके मकान डिस्पेंसरी रोड त्रियोले से उठाकर त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे 8:03 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: Timeless Tadka.
2: RM2.
1: Timeless Tadka.

0: Radio Mosti.
1: Radio Mosti.
2: Promotion Rakshabandhan code magasin Sia Collection à Floréal. 50% discount, leur tout nouveau arrivage. Sari, lehenga, kulta, shelvani et crop moyé blanc. Tout à petit prix à partir les 22 août jusqu'à les 6 septembre. Magasin Sia Collection à Floréal, ouvert lundi à dimanche, 10h matin à 6h tantôt. Numéro téléphone 58 07 53 57.
0: RM2
1: Radio Musty.
0: Timeless Tadka.
1: RM2.
3: Back with the Saturday Wala Show. This is our timeless Tadka. Yes, we are already ahead yahan par aap logon se milne ke liye, kuch aur baatein share karne ke liye. To chaliye, sabhi ka warm welcome hai in the third hour of a timeless Tadka. Yahan par hai aapke saath Hansini. And chaliye, kuch aur baatein kar lete hain. We head towards the game now. Yahan pe ek sawal to tha, wahan par ek gana jo humne chalaya tha kuch der pehle samacharon se pehle, aur aapko pata lagana tha movie ka naam, the title of the movie, aur में जो टू एक्ट्रेसेस नजर आई थी, बस उनका भी नाम आपको पता लगाना था. दैट वाज सो इजी. सो सही जवाब हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा, वो रेडियो मस्ती सुनेगा. राइट, सही जवाब इट्स हर दिल जो प्यार करेगा. और साथ में थी प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी, जो साथ दोनों नजर आई थी. तो अभी टाइम टू गो एंड चेक आउट कौन है वो लकी विनर.

सही जवाब देकर लकी जो ने चुना है रितेश रामधनी को जो रहते हैं पालमा रोड कटबोन. कंग्रेचुलेशंस टू यू रितेश जी, आप की जीत हो गई है. ब्रावो टू यू एंड हमारी पूरी टीम की तरफ से कंग्रेचुलेशंस. बिल्कुल आप ले जा रहे हो द 2 and 20 टिकट्स फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ Fortis Beauty with a Noble Purpose Miss India Worldwide Mauritius 2026 जो ग्रैंड फिनाले होने वाला है, इसमें जरूर आप जा रहे हो टू बी पार्ट ऑफ द स्पेक्टेकुलर नाइट. और ये जो इवेंट होने वाला है नेक्स्ट सैटरडे को 12 सितंबर को और शुरू होगा आज फ्रॉम 7:30 PM. तो चलिए ये चांस आपका हो गया है और जो टिकट्स है वो बिल्कुल आपके हो गए हैं. लेकिन आप निराश मत होइए क्योंकि कुछ और चांसेस बस रेडियो मिस्ट्री आपको देने वाली है. इसके लिए स्टे वेल ट्यून्ड.

0: into
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: ये फिजा भी कितनी खूबसूरत है, जैसे हर हवा आपको एहसास लेकर आ रही है। ये हवाएं जब चेहरे को छू जाती है ना, तो दिल बस इतना कहता है काश आपका स्पेशल वन आपके साथ होते। तो ये हवाएं, ये फिजाएं सब इशारा दे रही हैं फॉर यू टू हैव अ जबरदस्त सैटरडे। दिस इज आवर म्यूजिकल शो, दिस इज टाइमलेस तड़का ऑन रेडियो मस्ती, जो लेकर आ रही है द बेस्ट ऑफ म्यूजिक। ऑफ कोर्स यहाँ पर एंटरटेनमेंट आपका जारी है अप टिल 11 हमारे साथ, और जो हम सिटी विद यू, थैंक यू सो मच फॉर लविंग द कलेक्शन ऑफ आज का टाइमलेस तड़का। स्टे वेल ट्यून्ड।

0: फैशन टिप्स पावर्ड बाय हलकरी फैशन हाउस ऑफ रेडीमेड गार्मेंट्स। टाइमलेस तड़का
1: RM2
2: 10:42 already. Thank you so much for connecting with the Radio Masti. Or abhi ke liye kuch tips ho jaye, yes, to add some glow, to make you look more beautiful and glamorous. So wardrobe mein aapne kuch dikha aaj, maybe green kurti agar aapke paas hai to. कई दिनों से आपने पहना नहीं तो मे बी यू कैन ट्राई आज या फिर कल, अगर कोई इवेंट है, कोई प्रेयर है।

0: है जिसमें आप पार्टिसिपेट करने वाले हो. सो व्हाई नॉट ग्रीन कुर्ती को आप पहन लीजिए. ग्रीन कुर्ती जो है बिल्कुल फ्रेश एलिगेंट एंड सुपर वर्सेटाइल चॉइस अगर आपने चुना है आज इसको. शेड के हिसाब से स्टाइलिंग चेंज करके हम तो बस कैजुअल से फेस्टिव तक डिफरेंट लुक्स क्रिएट कर सकते हैं. सो ग्रीन कुर्ती के साथ क्या मैच होता है? वाइट क्रीम बॉटम्स, ग्रीन कुर्ती प्लस वाइट प्लाजो. प्लाजो के साथ लेट्स से स्ट्रेट पैंट्स अगर आप पहनेंगे तो एकदम फ्रेश और क्लासी लुक दिख जाएगा. ब्लू जीन्स के साथ भी आप पहन सकते हो ग्रीन कुर्ती, यानी कि ग्रीन कुर्ती प्लस जीन्स परफेक्ट कैजुअल इंडो वेस्टर्न लुक. इससे जो आपका लुक है वो सीधे इंडो वेस्टर्न तक बदल जाएगा. और प्रिंटेड दुपट्टा अगर कुर्ती के पास है तो प्लेन ग्रीन कुर्ती के साथ फ्लोरल या फिर प्रिंटेड वाला जो मल्टी कलर से दुपट्टे होते हैं उसमें भी आप ऐड कर सकते हो. इंस्टेंटली इंटरेस्टिंग बना देता है. और ज्वेलरी की बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी, झुमके, होप्स या फिर बेंगल्स, चूड़ियाँ या डेडिकेटेड गोल्ड चेन ग्रीन के साथ गॉर्जियस लगती है. और फुटवेयर क्या पहनेंगे? नीचे जूटीज, कोल्हापुरीज, सैंडल्स या न्यूड हील्स. ओकेजन के अकॉर्डिंग चूज आपको करना पड़ेगा जिससे आपका लुक थोड़ा सा और बढ़ेगा. सो शेड के हिसाब से डार्क एमरल्ड ग्रीन के साथ गोल्ड, क्रीम, बेज और ब्लैक भी जाता है. बॉटल ग्रीन के साथ आइवरी, रस्ट, मस्टर्ड या एंटिक गोल्ड एक्सेसरीज को आप पहन सकते हो. ओली ग्रीन के साथ बेज, ब्राउन, ऑफ वाइट या टेन शेड्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. मिंट ग्रीन अगर आपको पसंद है, ये है कलर ऑफ योर कुर्ती. सो वाइट, पेस्टल पिंक, लेवेंडर या सिल्वर एक्सेसरीज इसमें आप पहन सकते हो. तो ये रहे कुछ टिप्स आसान करने के लिए एंड टू मेक यू लुक मोर ब्यूटिफुल एंड एलिगेंट.
1: Fashion Tips was powered by Halkori Fashion, House of Ready-Made Garments.

0: Express Tadka.
1: RM2.
2: जितने भी हमारे परिवार हमारे फ्रेंड्स दूर होते हुए भी स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड रहते हैं ऑल टाइम, सो इसके लिए हम आपको थैंक यू तो कहना चाहेंगे. साथ समुद्र पार भी कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग और गहरा होता है. थैंक्स टू रेड मस्ती. अभी के लिए हम अपने शो को आगे बढ़ाते हैं. वी हैव गॉटन नाउ सम डेडिकेशंस. चलते हैं मोटा ब्लॉश. हाई वॉल्यूम पर एंजॉय किया जा रहा है आज का टाइमलेस शो, टाइमलेस तड़का वाला म्यूजिकल जर्नी. हेलो टू नीतीश, प्रणाम एंड वेलकम टू यू. यहाँ पर गाना आपके लिए जरूर चल जाएगा, वाई नॉट, आपकी प्यारी सी मामा के लिए एंड सभी रामदिकल परिवार के लिए भी. वी हैव गॉट अ स्पेशल ट्रैक कमिंग अप टू विश यू ऑल द बेस्ट, बॉन कुराज. और सुबह से कामकाज हो रहा है, घर की साफ सफाई हो रही है, सो लॉट्स ऑफ एनर्जी टू यू हमारे गानों के साथ. हैप्पी बर्थडे टू तर्षा लल बिहारी और उनके लिए ऑल द बेस्ट विशेस कमिंग है फ्रॉम पति भविष्य, फ्रॉम बेटा टियांश, मामा है सुनीता, दादा रोशन, दीदी निष्ठा, जीजू अविश, नेफ्यू है टिक्ष और सभी रिश्तेदारों की तरफ से वी डू विश यू हैप्पी बर्थडे, स्टे ब्लेस्ड और आपके लिए लॉट्स ऑफ शुभकामनाएं हैं हमारे सभी टीम की तरफ से भी. We have next गाना for Rohan के लिए, traveling to Mayberg right now और सफर जारी है. Enjoying the mood of Radio Masti, it's just wow. Thank you so much for sharing your feelings and appreciation. यहाँ पर गाना आपके लिए जरूर चल जाएगा. To wish you a safe सफर and stay connected to radio. अभी तो बहुत कुछ बाकी है on radio station जो है आपका Radio Masti. And we have it for Abhijit Sona. सुबह से strongly connected है with Timeless Tadka और enjoy कर रही है एक के बाद एक super duper गाना. और इस समय काम पर है. सुबह को गार सचिव यू अभिजीत जी, रेडी हो कि सब ठीक है. यू हैड अ मस्ट ब्रेकफास्ट और अभी एनर्जी लेवल काफ़ी बढ़ गया है टू एंजॉय दिस सुपर डे. तो बिल्कुल गाना भी चल जाएगा आपके लिए एकदम जबरदस्त वाला. थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स यहाँ पर हंसनी के साथ ऑन रेडियो मस्ती.
0: टाइमलेस तड़का.
1: RM2.
0: टाइमलेस तड़का.

0: जी हाँ बिल्कुल, प्यार के बिना ये जिंदगी बेकार, और इसी के साथ यहाँ पर जाने का टाइम आ गया है। हमारे बाद विल बी मीटिंग वेदिता, जो लाइव होने वाली है फॉर सम आउटडोर मस्ती, एंड शी विल बी लाइव एट सिल्वर यू फ्लैग के अडविल। तो मिलेंगे जल्द वेदिता से, और इससे पहले हम सुनेंगे संक्षिप्त समाचार पूजा के साथ, और नीलमणि यहाँ पर आएगी इन द स्टूडियो, वो आप लोगों का साथ जरूर निभाने वाली है। सो वी आर ऑल सेट फॉर अ धमाकेदार सैटरडे, जहाँ पर भी बस आप कनेक्टेड हो, स्टे ब्लेस्ड एंड विश यू अ सेफ सैटरडे अहेड, टेक वेरी गुड केयर।
1: Welcome to RM2
2: Radio Musti,
1: North, South,
2: 103.5,
1: East, West,
2: 96.4,
1: Center,
2: 99.4.
1: RM2 Radio Musti,
2: Radio Musti,
1: the latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: Time check din ke theek 11 baje hain. संध्या है संक्षिप्त समाचार पूजा के साथ, आपको नमस्कार पूजा।
3: नमस्कार हंसिनी, सभी को मेरा नमस्कार। पेंशन सुधार का मुद्दा अब भी ट्रेड यूनियन वर्ग को सक्रिय किए हुए हैं। सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध प्लेटफॉर्म कुमे सैजिकाल ने अगले 17 अक्टूबर को पोर्टलिस की सड़कों पर एक शांतिपूर्ण मार्च निकालने की घोषणा की है। ये मार्च मारीगेन दुला पे से शुरू होगा। उनकी मुख्य मांग है कि 60 वर्ष की आयु से बिना किसी शर्त के सार्वभौमिक वृद्धावस्था पेंशन को फिर से लागू किया जाए। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी मॉरिशस UTM द्वारा कल और आज पुएर्टो साबला स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन किया जा रहा है। उद्देश्य है भावी छात्रों को UTM द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले विभिन्न कोर्सों और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देना। 3 साल बाद बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर शान का शानदार कंसर्ट आज SVICCPI में। इसमें शान अपनी लोकप्रिय आवाज से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे, जबकि उनके बेटे माही भी पहली बार मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे और मशहूर गायक KK को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विदेश में नेपाल में बाढ़ के बाद हालात बदतर बने हुए हैं। हर दिन के साथ हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि अभी भी हजारों लोग लापता हैं। वहीं इस भीषण ट्रेजेडी को झेलने वाले अब मानसिक रूप से पीड़ा झेल रहे हैं, जिसमें बच्चे से लेकर बड़े भी शामिल हैं। फिलहाल राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए, कुछ ही समय में शोक समाचार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
3: बिकाउलिन फिनिक्स में 69 साल की 69 years old बीबी तहरून आमिया, जिन्हें लोग तहरून नाम से ज़्यादा जानते थे, इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज दिन के दो बजे इनके मकान बिकाउलिन फिनिक्स से उठाकर नमाज जनाजा के लिए फिनिक्स की मस्जिद, फिर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 2 PM। नंबर 117 प्लेन डिजे अमिताज फिनिक्स में 75 साल की 75 years old श्रीमती तारामती गोपाल, पैदाशी नाम जयप्रकाश और जिन्हें लोग श्यामा नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनके बेटे विनेश्वर शर्मा गोपाल के मकान नंबर 117 प्लेन डिजे अमिताज फिनिक्स से उठा

Karbigaha, Kishmashan Bhumi le jai jayegi cremation today at 12:30 p.m. 63 saal ke 63 years old Shri Gurunaden Narayanan, Shri Gurunaden Narayanan, जिन्हें लोग रिवेन नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है. वे पहले एयर मार्शल्स में काम करते थे और कोन डॉक्टर प्यरू ला रू फिलाओ कॉन लिव्यू के रहने वाले

0: ये 56 इयर्स ओल्ड है श्री देव कुमार गजाधर। श्री देव कुमार गजाधर जिन्हें लोग देव नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है कि अर्थात शाम 4 बजे इनके बेटे आश्ले गजाधर के मकान नंबर 18 द्वितीय सीते से आशा ते अगोश से उठाकर वामोशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुडे एट 4 PM। और डिस्पेंसरी रोड त्रियोले में 70 साल के 70 इयर्स ओल्ड श्री विजय कुमार आलिया जिन्हें लोग विजय नाम से अधिक जानते थे की मृत्यु हो गई है इनकी अर्थी आज से पहर के तीन बजे इनके मकान डिस्पेंसरी रोड त्रियोले से उठाकर त्रियोले की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टू डेट 3 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: RM2 Radio Musti.
2: Un September to remember chez Your Dream Motors. Nous réunis avec nos 4e édition. Oui, vous pouvez bien attendez. Nos plus grandes promotions pour l'année 2026 commencent jeudi 3 septembre jusqu'à dimanche 6 septembre. Pour une amas gros discount, le tout nous bat le tout. Que Your Dream Motors nous croit qu'il chaque dimanche mérite rouler sur le tout de rêve. Peu importe qui au budget et préférence. Ou péro d'un SUV, un petit loto, un 4x4, voiture de luxe, ban plug-in hybrid ou même 100% électrique, nous en avons tout. Des 9h jusqu'à 5h tantôt, les 3 septembre au 6 septembre. Top 10 à ban prix imbattable. Côté Audrey Motos nous fait ouvrir une réalité. Royal Road Moka 55 30 86 12 55 05 86 12 et 433 80 26. N'oubliez, suivez-nous sur Facebook et TikTok.
3: Week-end méga folies, code KDR Electromeub, Rosebel et Beauvallon. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Kitchen Unit sorti 14 900 roupies, VIN 7 990 roupies. Dining Table avec 6 chaises sorti 49 000 roupies, VIN seulement 25 000 roupies. Et pas fini! Ougay N Sofa L-Shape en cadeau. Sofa Recliner avec massage s'il vous plaît. Sorti 24 900 roupies, VIN 14 500 roupies. Ouena Dizou, oui, Zis Dizou, pour profite sa bande méga folies deal dans des magasins KDR électromeubles. Rosebel et Beauvallon, ancien King Savers.
4: Cirque Zavata à Bagatelle. Prépose-toi pour un moment magique et ban spectacle cirque extraordinaire. Tous jeudi et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vinguez Cirque Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et ban l'école, compagnie et ban groupe, nous pas fin oublier eux. Nous avons un package spécial pour eux avec ban spectacle à partir 11h. Allô, qui se peut attendre? Réserve votre place à la même, l'eau 50 50 94 13.
1: RM2 Radio Musti.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: क्या आप शादी की शॉपिंग करने के लिए अलग अलग जगह जाने की सोच रहे हैं? अब इसकी जरूरत नहीं, हर कोड़ी फैशन के यहाँ पूरे परिवार के लिए सब कुछ एक ही छत के नीचे अवेलेबल है। डिजाइनर लहंगास, लच्छास, जोधपुरीज, सारीज, क्रॉप टॉप्स, शेरवानीज, कंप्लीट सूट्स, ब्लेजर्स एंड मच मोर एट अनबीटेबल प्राइसेस। हर कोड़ी फैशन, रॉयल रोड ऑपोजिट पॉपुलर मुसेस गार्डन। फोन नंबर 5799-3782। हर कोड़ी फैशन, परंपरा, एलिगेंस एंड क्वालिटी।
0: RM2
1: Radio Musti.

0: Holly Branch RM2 Radio Masti.
1: गुड मॉर्निंग. सैटरडे का दिन है, 11:15 हुए हैं. कैसे हो आप? इससे पहले हंसनी थी जो आपके साथ में थी, अब निर्मनी आ गई है बॉली ब्रंच में विद सम मोर मस्ती. ऊपर से आपको घुमाने भी लेकर जाएंगे. आज कहाँ ये आपको जल्द ही पता चल जाएगा. अभी के लिए एंजॉय करते हैं, साथ में वाइब करते हैं विद सम गुड म्यूजिक दैट्स हैपनिंग राइट नाउ आपके ही RM2 रेडियो मस्ती पर.
0: Body Branch RM2 Radio Masti.

0: Holy Branch RM2 Radio Masti.
1: सुनने सदा हो मेरे यारों, RM2 रेडियो मस्ती हमेशा होगा योर साइड। तो अभी घुमाने ले जाने से पहले कुछ मैसेजेस पढ़ लेते हैं। आज है बिंदिया कालू जी का स्पेशल डे, आज वो मना रहे हैं अपना 27th एनिवर्सरी। बेस्ट विशेस दो बेटों की तरफ से, सानी एंड स्वयं एंड कालू फैमिली एंड फ्रेंड्स की तरफ से आपको बेस्ट विशेज। वी ऑल्सो हैव जीना जॉयसरी जी जो हमारे साथ कनेक्टेड हो चुकी है, बिग हेलो टू यू। एंड नेक्स्ट मैसेज आया है अनिता जी की तरफ से जो कि फ्लिक ऑफ फ्लैग के रहने वाले हैं। आप गाना मांग रहे हैं अपने दोस्तों, अपने भाई के लिए, सचिन राज दो भाई के लिए जो यूके के रहने वाले हैं, अजय के लिए, यीशु के लिए, सभी गणपत फैमिली के लिए। ना आप सभी को विश कर रही हैं वो हैप्पी सैटरडे। तो ऐसे ही हमारे साथ स्टे कनेक्टेड। अगर आपके पास है कोई मैसेजेस या डेडिकेशंस, डू नॉट हेजिटेट 5491294 पर अभी के लिए सैटरडे मूड बनाने के लिए नेक्स्ट गाना करते हैं आप सभी सुनने वालों के नाम।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती
1: 11:56 हुए हैं। आज का सैटरडे कॉम्बो ना एकदम मस्त है। क्यों? क्योंकि आज हम मना रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी भी और वर्ल्ड समोसा डे भी। बॉस, चैरिटी का मतलब है खुशियाँ बांटना और समोसा तो होती ही है खुशी। तो आज का सीन बहुत सिंपल है, अपने दोस्तों को या किसी ज़रूरतमंद को एक प्लेट गर्मा गर्म समोसा और कड़क चाय खिला दो। जैसे बॉलीवुड में कहते हैं ना, देने वाला जब भी देता है चप्पर फार के, तो आज का चप्पर फार के समोसा बनता है। दुआएं कमाओ और वीकेंड भी एंजॉय करो साथ में RM2 रेडियो मस्ती। यही पर है आपके एंटरटेन करने के लिए गानों के जरिए, तो यही पर स्टे ट्यून्ड एंड नेक्स्ट ट्रैक का ला रहे हैं आपको वाइब कराने के लिए। सो हमारे साथ सा वाइब करना जरूर।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे पूजा, नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। 37 वर्षीय चीनी नागरिक की कल थुदुदुस में एक हादसे में मौत हो गई। ये हादसा दिन के करीब 1 बजे आरटीओ पर हुआ। मृतक एक अन्य चीनी नागरिक के साथ कंक्रीट के बिजली के खंभे पर संबंधित काम कर रहा था। दोनों मजदूर एक ट्रक की क्रेन से जुड़े एक प्लेटफॉर्म में सवार थे। अचानक प्लेटफॉर्म के क्रेन से अलग हो जाने के कारण दोनों नीचे गिर गए। गंभीर रूप से घायल दोनों मजदूरों को सैम्यू की टीम ने चिकित्सा सहायता दी। हालांकि शोमा की मौत की पुष्टि कर दी गई। दूसरे मजदूर को फ्लाक के साज अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ट्रक का फिटनेस सर्टिफिकेट पिछले 7 जून को ही समाप्त हो गया था। दुर्घटना की सही परिस्थितियों का पता लगाने के लिए जांच जारी है। मॉरिशस में कुछ पुराने रेलवे स्टेशन आज भी हमारे इतिहास के एक हिस्से को जीवित बनाए हुए हैं। इनमें कुछ को डाक घरों में बदल दिया गया है। ये स्टेशन आज भी स्मृति और हिरासत के स्थल है, लेकिन साथ ही इन इमारतों के रखरखाव और संरक्षण की भी आवश्यकता है। अगस्त महीने में कैबिनेट द्वारा घोषित मॉरिशस और फ्रांस के बीच सहयोग का उद्देश्य मॉरिशस की आर्किटेक्चर विरासत के संरक्षण और उसके महत्व को बढ़ावा देना है। इसके तहत इन ऐतिहासिक स्थलों के रिहैबिलिटेशन और प्रबंधन के लिए एक सार्वजनिक निजी ढांचा स्थापित करने की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। सरकार नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन कार्यक्रम को फिर से शुरू कर रही है। इसके पायलट बेसिस में अगले 16 से 28 नवम्बर तक ग्रेड 8 के 12 से 13 वर्ष की आयु वाले 200 छात्र शामिल होंगे। प्रधानमंत्री दफ्तर की सरपरस्ती में इस प्रोग्राम में शिक्षा मंत्रालय, युवा एवं खेल मंत्रालय तथा पुलिस विभाग के सहयोग प्राप्त है। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा कल और आज भी पुएर्टो साबल स्थित अपने कैंपस में एक ओपन डे का आयोजन किया जा रहा है। और बॉलीवुड के मशहूर प्लेबैक सिंगर शान का शानदार कॉन्सर्ट आज SVICCPI में। इसमें शान अपनी लोकप्रिय आवाज से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे, जबकि उनके बेटे माही भी पहली बार मंच पर अपनी प्रस्तुति देंगे और मशहूर गायक केके को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। विदेश में नेपाल में बाढ़ के बाद हालात बदतर बने हुए हैं। हर दिन के साथ हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि अभी भी हजारों लोग लापता हैं। इस भीषण ट्रासिडी को झेलने वाले अब मानसिक रूप से पीड़ा झेल रहे हैं। उधर बोलीविया में एक सैन्य बराक में हुए विस्फोट में कम से कम 2 लोगों की मौत। घटना में कम से कम 58 लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार विस्फोट में दर्जनों घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और आपातकालीन कर्मी मलबे में लोगों की तलाश कर रहे हैं। तो इन्हें खबर

खबरों के साथ है समाचार समाप्त हुए कुछ ही समय में आप सुन पाएंगे शोक समाचार। धनुष लेन लियोशी त्याहूज में इकहत्तर साल के 71 years old

0: गुबिन लेन मेबर्ग में सतीश मैकेनिक के पास 98 साल की 98 ईयर्स ओल्ड है श्रीमती अपलामा जोगाना, जिन्हें लोग ताउचिन अपलाम नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके बेटे आत्मा जुगाना के मकान गोबिन लेन मेबर्ग से उठाकर तोबो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 एएम। साल के 63 ईयर्स ओल्ड श्री गुरुनादेन नारायणन, जिन्हें लोग रिवेन नाम से भी जानते थे, की मृत्यु हो गई है। वे पहले आर्मोशस में काम करते थे और कोनर डॉक्टर पियरू ला रुफिलाओ कौन ले व्यू के रहने वाले थे। इनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे ला शापेल ऑडेंट एलियनसन रॉय रोड बोबासे से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेम ऑटेम रोशा की सिमिट्री ले जाई जाएगी। फ्यूनरल टुडे एट 1 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Body Branch, RM2, Radio Masti.

0: Holly Branch
1: RM2
0: Radio Masti
2: मस्त है समा ऊपर से आरम जो रेडियो मस्ती में नरमनी साथ है। गुड आफ्टरनून, 12:13 हुए हैं और हमारे कुछ लिसनर्स अभी लंच पर होंगे तो आपको विश करते हैं बन अपेटी, एंजॉय योर मील्स विद योर बाली ब्रंच। एंड साओ में लेट मी टेल यू गेम्स भी होने वाले हैं, सो अटेंशन अटेंटिवली आप सुनना अभी के लिए बन अपेटी वंस अगेन। एंड अगर अभी आप काम पर है ब्रेक ले लो यार, गानों के जरिए ही सही आप एंजॉय वाइब जरूर करना हमारे साथ।
0: बॉडी ब्रांच
1: RM2
0: रेडियो मस्ती।

0: 2.
1: Radio Musti.
2: Promotion Rakshabandhan côte magasin Sia Collection à Floréal. 50% discount, leur tout nouveau arrivage. Sari, Lehenga, Kulta, Shelvani et Crop Moyé Blanc. Tout à petit prix à partir du 22 août jusqu'à le 6 septembre. Magasin Sia Collection à Floréal, ouvert lundi à dimanche, 10h matin à 6h tantôt. Numéro téléphone 58 07 53 57.
3: जब तू गाड़ी चलावेल का तू जाने ल की आगे का हो सकी एगो दुर्घटना लो तो अपान हो सकी ई सब कुछ सीमा पर होते रहेला पर ई सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहे सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है काहे कि हमनी के लासिरांस तोहर ख्याल रखेला टोइंग की सुविधा एगो लुटो ऑप्लास्मा जब लुटो बनता सहायता या एगो सुझाव सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा और दूसर नुकसान जैसे तूफान बाढ़ आग मूसलाधार पानी या जे आप अपन लुटो के चाबी भी गवा देला सिकोब ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ली बाटी जस्ती जानकारी हमनी के वेबसाइट sicom.mu पर पाई सकब इमे नियम आ शर्त भी लागू बा सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला
4: सिकोम ग्रुप ए लाइफटाइम कमिटमेंट
5: Week-end Megafolies, côte KDR Electromeub, Rosebel et Beauvalo. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Kitchen Unit, sortie 14 900 roupies, vin 7 990 roupies. Dining Table avec 6 chaises, sortie 49 000 roupies, vin seulement 25 000 roupies. Et pas fini! Ougay N Sofa L-Shape en cadeau. Sofa Recline avec massage s'il vous plaît. Sortie 24 900 roupies, vin 14 500 roupies. Ouin

0: Holiday Brunch, RM2, Radio Masti.
1: And yes, as promised, it's game time. And आपके लिए अभी सवाल है, very simple as usual. आपको बताना है कि आज हम कौन सा दिन मना रहे हैं जो related है खाने से. एक snack है जो बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं, उसी से related एक world day हम मना रहे हैं आज. आपको बस बताना है कि वो कौन सा day है. 5491294 पर. And then जवाब देने के बाद you can win not one but two tickets Zavata Circus show का. So good luck to you. Let us know आपके जवाब क्या है 5491294 पर.
0: Body Brunch, RM2, Radio Masti.

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: जी हाँ, गेम ऑन गोइंग है। जावाता के 2 टिकट्स आपको मिल सकते हैं। जवाब देने से पहले आपको बता देते हैं कि शो इज ऑन गोइंग रहता है थर्सडे एंड फ्राइडेज को एट 6 PM एंड वीकेंड्स पर सैटरडे संडे को एट 2:30। एंड अगर आपको भी एक्सपीरियंस करना है अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस फुल ऑफ मैजिक लाफ्टर, सो स्टे ट्यून्ड विनर का नाम जानने के लिए। एंड आप हो एंड यस, हमारे वनर का नाम है कबीर संगम। सही जवाब इंडीड है वर्ल्ड समोसा डे। कंग्रेचुलेशंस, आपको मिला है 2 टिकट्स टू अटेंड द जावाता शो और बागाचल। आप टिकट कलेक्ट करने के लिए आ सकते हो MBC 9 से लेकर 3 बजे तक। अभी के लिए नेक्स्ट सॉन्ग अकर बकर कमिंग अप।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।

0: ब्रांच RM2 रेडियो मस्ती।
1: And yes, as promised, अभी के लिए हम लेकर आए हैं एक और बहुत ही स्पेशल गेम, खासकर हमारे जो फैशन और पैजेंट लवर्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं द ग्लैमर द एलिगेंस द पर्पस इज बैक। आप जीत सकते हो 2 एंट्री टिकट्स फॉर द ग्रैंड फिनाले ऑफ फोर्टीज ब्यूटी विद नोबल पर्पस यानी कि मिस इंडिया वर्ल्ड वाइल्ड 2026। एंड लेट मी टेल यू, ये शाम एकदम सुब्लीम होने वाली है और वहां जाने के लिए आपको कोई मुश्किल टेस्ट नहीं देना है, बस एक बहुत ही सिंपल सा सवाल का सही जवाब देना है। एंड क्वेश्चन है कि कौन है वो आइकॉनिक बॉलीवुड एक्ट्रेस जिन्होंने साल 2000 में मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता है और वो आज एक ग्लोबल स्टार है। तो दो ऑप्शंस है, ऑप्शन ए है प्रियंका चोपड़ा या फिर ऑप्शन बी दीपिका। 5491294 पर सेंड अस योर आंसर्स।
0: बॉडी ब्रांच RM2 रेडियो

0: Bolly Branch RM2 Radio Masti.
1: Bolly Branch में second game ongoing है और जो tickets है reserved for the person जिसके पास है सही जवाब. लेकिन answer देने से पहले details तो share कर लेती हूँ आपके साथ. 12 September को Trianon Convention Center में होने वाला है amazing events of Your Miss India Worldwide Mauritius 2026. तो जवाब है Priyanka Chopra and Congratulations to our winner जो बन चुके हैं आप है. And yes, आप है मेघना जी. मिला है आपको दो tickets for the amazing pageants for a noble purpose. You Miss India Worldwide Mauritius 2026. And आपको बता देते हैं कि tickets collect करने के लिए आप within working hours में आ सकते हो MBC पर ही. And जिन लोगों की जीत नहीं हो पाई है, no worries, आपके लिए games ongoing रहेंगे दिन भर. आप बस connected रहना RM2 Radio मस्ती के साथ ही.
0: Bolly Branch RM2 Radio Masti.

0: लिए सुनते हैं संयुक्त समाचार। आपसे याचना नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। ग्रेड 8 के करीब 200 छात्र इस नवंबर नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नीस के नए संस्करण में भाग लेंगे। दो हफ्तों तक वे ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे जिसमें नागरिक कर्तव्य, चरित्र निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी के पालन और आपात स्थिति की तैयारी पर वे सीख पाएंगे। इस साल के नए साल के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था। एक ऐसी पहल जो 14 साल बाद फिर से शुरू हो रही है। पिछली बार 2012 में इसका आयोजन किया गया था। खुद रूस में कल 37 साल के चीनी मूल के कर्मचारी की मौत हो गई। जानकारियों के मुताबिक कल दिन के करीब 1 बजे आल्टियो के एक स्थल पर दो चीनी कर्मचारी कंक्रीट के एक खंभे पर ट्रक पर लगे क्रेन के ऊपर लगे प्लेटफॉर्म पर खड़े बिजली संबंधी कार्य कर रहे थे। प्लेटफॉर्म के छूट जाने पर दोनों गिर गए। 37 साल के शियुमा की मौत घटनास्थल पर हुई जबकि एक अन्य कर्मचारी फ्राक अस्पताल में भर्ती है। उनकी हालत गंभीर है। ट्रक का फिटनेस 7 जून को ढल गया। इस हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए एक जाँच शुरू की गई है। विदेश में भारत के महाराष्ट्र राज्य में टैक्सी और टुकटुक के चालकों को अब से अनिवार्य रूप से वहां की स्थानीय बोली मराठी बोलनी होगी। मराठी सीखने के लिए उनके पास 1 साल की मोहलत है। इसके लिए एक नया नियम लागू किया गया है जिसे लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए उनके और चालकों के बीच संवाद को आसान बनाना है। चलिए जानते हैं, अब सुनते हैं शोक समाचार। धनुष लेन ले ओशेत्या रूज में धनुष लेन तो ओशेत्या रूज में 71 साल के 71 ईयर्स ओल्ड के श्री सुपाया उसराल जो दसन जनता के नाम से ज्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनकी पत्नी लक्ष्मी उसराल के मकान धनुष लेन ले ओशेत्या रूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामौशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। गोबिन लेन मेबर्ग में सतीश मैकेनिक के पास गोबिन लेन मेबर्ग में 98 साल की 98 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अप्लमा जोगाना जो तोंचिन अप्लम के नाम से ज्यादा जानी जाती थी उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल सुबह 10 बजे उनके बेटे आत्मा जोगाना के मकान गोबिन लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोम्पो मेबर्ग की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो 10 AM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Body Branch, RM2, Radio Must See.

0: RM2
1: Radio Masti.
2: 1:07 मिनट हुए हैं, टाइम हो गया है आपको स्टूडियो के बाहर घुमाने ले जाने के लिए, लेकिन कहाँ? Well, Super U flag पर वी हैव गिनीशा विद अस. गुड आफ्टरनून.
3: A very good afternoon to you, my dear Nilmani. Good afternoon to everyone who's tuned to RM2 Radio Masti. Ji haan, dosto, studio ke bahar leke aaye hain kyunki mausam bahut hi pyara hai. The sun is shining so bright right now at Cœur de Ville. We are in Flac. So my dear, just to let you know, abhi main yahan pe aayi hu to sabse pehle cheez jo main batana chahungi ki Eagle brand ke saath aaj hum yahan pe hain and they've made me taste something ki jo maine kabhi life mein taste nahi kiya hai. It's a new product. Yes guys. So we are at Cœur de Ville Flac. एंड यहाँ पे ईगल ब्रांड का एक न्यू प्रोडक्ट जो है मार्केट में आ गया है, लॉन्च हो चुका है. एंड यस, यू कैन कम हियर एंड टेस्ट इट. एंड एक्चुअली नॉट ओनली टेस्टिंग इट, आप आएंगे, आप टेस्ट करोगे, आप गेस करोगे. इट्स अ गेम. अगर आपने सही गेस कर पाया कि कौन सा फ्रूट है वो, सो यू आर विनिंग सम लवली प्राइजेस. सो जस्ट टू रिमाइंड यू, एट Cœur de Ville राइट नाउ वी आर हियर, वी गोना बी हियर मोर टाइम जस्ट टू गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू कम हियर विद ईगल ब्रांड एंड टेस्ट ऑल दिस न्यू प्रोडक्ट्स. यानी उनके पास 18 वराइटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंगो है, कीवी है, दे हैव स्ट्रॉबेरी, दे हैव ब्लूबेरी, दे हैव कुमकुआ, दे हैव पाइनएप्पल, बहुत सारे. सो इट्स अ न्यू स्नैक फॉर द न्यू स्टाइल. यानी कि लाइफ में हमने बहुत कुछ ऐसी चीज़ें खाई होंगे, लेकिन ये वाला जो मैंने टेस्ट किया है निर्मले, इट्स सो यम्मी, ट्रस्ट मी. इट्स अवेलेबल इन ऑल सुपर मार्केट्स. आज ये सुपर यू फ्लैग Cœur de Ville में इट्स ऑन प्रोमो, ओनली 75 रुपीज इंस्टेड ऑफ 92 रुपीज. यस, आई विल रिपीट दैट अगेन, सिर्फ 75 रुपीज में आपको मिलेंगे इंस्टेड ऑफ 92 रुपीज. ओनली इट्स ऑन प्रोमो एट सुपर यू फ्लैग Cœur de Ville. सो द गेम इज ऑन. यू कम हियर, यू गेस द फ्रूट, यू टेस्ट इट एंड यू गेस इट and you are going to win amazing prizes. So abhi to hum pahunche hain, abhi to bahut kuch baki hai mere dost. So just keep on listening to us on RM2 Radio Masti. It's me Ginisha and the entire team of Radio Masti. We are waiting for you with the Eagle brand at just the entrance of Super U. Yes, at Cœur de Ville Flac.

दिल की गहराई से बहुत बहुत शुक्रिया जी साथ देने के लिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती। यस इट्स सैटरडे एंड द डे इज सो ब्यूटीफुल। जी हाँ, और ब्यूटीफुल डे पे हम लेकर आए हैं अ लवली मैसेज फॉर यू आवर डियर एंड लवली लिसनर्स। सो मॉरिशस, आर यू रेडी फॉर समथिंग न्यू व्हिच इज प्रेजेंटेड टू यू एंड ब्रॉट टू यू बाय ईगल ब्रांड। जी हाँ दोस्तों, ईगल ब्रांड हैज ब्रॉट अ ब्रांड न्यू स्नैक टू द मार्केट एंड ट्रस्ट मी दिस इज समथिंग यू हैव टू टेस्ट माय डियर। ट्रस्ट मी, इमेजिन 18 वैरायटीज ऑफ डेलिशियस ड्राई फ्रूट्स एंड इन वन रेंज, मैंगो, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, क्वामकाट, पाइनएप्पल और इतने सारे फ्रूट्स। ट्रस्ट मी, मैं बताना चाहूँगी कि मैंने खुद टेस्ट किया है एंड इट्स सो यमी। सो न्यू स्नैक फॉर द न्यू स्टाइल, परफेक्ट फॉर योर लिटिल क्रेविंग एंड योर ब्रेक्स एंड योर आउटिंग्स और सिंपली वन एवर यू वॉन्ट टू हैव समथिंग रियल टेस्टी। एंड टूडे वी आर एट सुपर यू जो है फ्लैक Coeur de Ville में, वी हैव स्पेशल प्रमोशन। ईगल ब्रांड ड्राई फ्रूट्स आर ओनली 75 रुपीज इंस्टेड ऑफ 92 रुपीज। जी हाँ, ओनली 75 रुपीज इंस्टेड ऑफ 92 रुपीज। और रुके तो जरा, अभी यह बात बाकी नहीं है, वो खत्म नहीं हुआ, बात ये बाकी है कि द गेम इज ऑन, वी हैव अ लवली गेम। आप यहाँ पे आ सकते हैं बच्चों को लेकर, खुद पूरे परिवार आ सकते हैं। यू कैन टेस्ट, दे आर मेकिंग यू टेस्टिंग दिस लवली न्यू प्रोडक्ट। और टेस्ट करने के बाद यू जस्ट हैव टू गेस, यस यू गेस विच फ्रूट इट इज एंड अगर आपने सही गेस किया सो ऑफकोर्स यू आर विनिंग अमेजिंग अमेजिंग प्राइसेस। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, हम तो बोलते हैं कि आप यहाँ पे आ जाइए एट Coeur de Ville एट फ्लैक, टेस्ट द ईगल ब्रांड चैलेंज योर टेस्ट बड्स एंड हु नोज यू कुड बी द नेक्स्ट लकी विनर। ईगल ब्रांड जो है आप आ सकते हैं यहाँ पे, वो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स नहीं बेचते हैं, सभी मॉरिशस को पता है कि ईगल ब्रांड जो है specialized in spices, so spices bhi bech rahe hain, but still they are introducing a new product to you which of course you have to come and taste it. To jitne bhi log hame sun rahe hain, agar aap aas paas mein ho, gaadi mein ho aur ghar pe ho, to aap yahan pe aa sakte hain at super you ke entrance mein. Hum sabhi log jo radio masti team hai aur eagle brand ke jo team hai, aapka intezar kar rahe hain at Coeur de Ville flak.

0: RM2
1: रेडियो मस्ती।
2: जब तू गाड़ी चलावे ला का तू जाने ला कि आगे का हो सकी, एगो दुर्घटना लो तो अपान हो सकी, ये सब कुछ सीमा पर होते रहेला, पर ये सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहे। सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है, काहे कि हमनी के लासिरांस तोहर ख्याल रखेला। टोइंग की सुविधा, एगो लुतो ऑप्लास्मो जब लुतो बनता सहायता या एगो सुझाव, सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा। और दूसर नुकसान जैसे तूफान, बाढ़, आग, मूसलाधार पानी या जे आप अपन लुतो के चाबी भी गवा दिला, सिकोम ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ली बाटी। जस्ती जानकारी हमने के वेबसाइट sikom.mu पर पाई सकब। इमे नियम आशर्त भी लागू बा, सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकोम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
4: RM2 Radio Masti Saturday। हेलो जी, जब सैटरडे होता है ना तो बहुत सारे प्लानिंग्स के साथ हम हमेशा आ जाते हैं। गुड म्यूजिक तो वैसे ही हम लेकर आई है, लेकिन गुड म्यूजिक के साथ कुछ अच्छे अच्छे चीज़ों को भी हम लेकर आई है फॉर यू पीपल लिविंग फ्लैक एंड नियर बाय। यस, सो माय डियर लवली लिसनर्स, जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, आई हैव अ चैलेंज फॉर यू। हाउ गुड इज योर सेंस ऑफ टेस्ट? आप बस यहाँ पे आ सकते हैं और हमें प्रूव कर सकते हैं कि जो चीज़ आप टेस्ट करते हो आप गेस कर सकते हैं कि वो क्या चीज है। क्योंकि टुडे एट सुपर यू क्योर द विल ईगल ब्रांड इज इनवाइटिंग यू, यस, कि आप आए और पार्टिसिपेट करें। यू प्ले अ फन लिटिल गेम उनके साथ, आप टेस्ट कीजिए। सो टेस्ट इट, डोंट लुक एंड गेस द फ्रूट। इज इट मैंगो, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी? हाँ जी, मुझे पता है कि आपको नहीं पता हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। एक्चुअली इट्स अ न्यू प्रोडक्ट जो इंट्रोड्यूस किया गया है फ्रॉम ईगल ब्रांड। ईगल ब्रांड लेकर आए हैं हमेशा की तरह कुछ ना कुछ नया। उनके मसाले तो वैसे ही बहुत ही ज़्यादा फेमस है, लेकिन ड्राई फ्रूट्स लेकर आए हैं। जी हाँ, दे हैव सो मैनी डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स राइट नाउ कि आप अगर यहाँ पे आए, आपने टेस्ट किया, यू गना से वाओ, दिस इज सो यमी। Yes, mango, kiwi, strawberry, blueberry, and kumquat and pineapple. It's a new snack, a new style. It's available in all supermarkets around Mauritius. Aaj promo pe hai Super U Flak Coeur de Ville mein. It's only at 75 rupees instead of 92 rupees. To main to bas invite karna chahungi aap sabhi ko ki aap yahan pe aaiye, taste kijiye, and you can win amazing, amazing prizes. Aapko yaad dila de ki ye jo Eagle brand ka jo company hai, it's existing more than 100 years. Yes, आपके किचन में, लेकिन अभी के लिए मसालों के साथ साथ वो आपके लिए कुछ स्नैक्स भी लेकर आई है। सो डू जॉइन अस राइट नाउ एट फ्लैक कोर दे विल, टेस्ट इट एंड जस्ट गेस इट एंड विन अमेजिंग प्राइजेस।
0: RM2 रेडियो मस्ती।

0: रेडियो मस्ती
1: गाने में भी टिक टिक और हमारी घड़ी में भी टिक टिक टाइम टू बीटा चला जा रहा है। 1:25 हो चुके हैं। थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती। सो मॉरिशस आज कुछ नया ट्राई करना है, आपका मन है कुछ नया ट्राई करने का, सो यस आ जाइए एट कोर दे विल सुपर यू फ्लैक में। ईगल ब्रांड लेकर आया है एक बिल्कुल नया स्नैक, 18 वराइटीज के डेलिशियस ड्राई फ्रूट्स, मैंगो, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, कमक्वात, पाइनएप्पल और बहुत सारे फ्रूट्स हैं। सो लेकिन मजा सिर्फ तेज करने में नहीं है, आज एक जबरदस्त गेम भी चल रहा है। सो आई कैन जस्ट चेक, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, सो लेट मी जस्ट लुक फॉर समवन। ये आई कैन सी अ वेरी नाइस लेडी, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, गुड आफ्टरनून।
2: गुड आफ्टरनून,
1: व्हाट्स योर नेम?
2: गायत्री।
1: आपका नाम गायत्री है, सो यू आर फ्रॉम फ्लैक?
2: नो, त्रियोले।
1: ओ, त्रियोले से आई है, मम्मा मिया। अच्छा, आप अपने भाई के पीछे पीछे आए, तो आप जरा आइए और एक फ्रूट टेस्ट करके मुझे बताइए कि ये कौन सा फ्रूट है। जल्दी से देखते हैं कि ये मैडम पहचान सकती है कि नहीं, क्योंकि सही अगर आपने पहचाना तो आपको एक गिफ्ट भी मिलेगा फ्रॉम ईगल ब्रांड। आपको करना है टेस्ट, गेस्ट एंड विन। फ्रूट टेस्ट कीजिए, गेस्ट कीजिए और कौन सा फ्रूट है, और सही जवाब देकर जीतिए लवली गिफ्ट्स।
2: लेमन।
1: मैडम जी बोल रही है कि लेमन है। OMG, this is the wrong answer. What's your name?
3: Meghna.
1: चलो मेघना try करके टेस्ट करके मुझे बताएगी कि ये कौन सा फ्रूट है। मैं भी तो हार गई, मैंने 3-4 फ्रूट टेस्ट किया, मुझे तो पता ही नहीं चला। इतना यम्मी, इतना डिलीशियस कि इंसान को पता ही नहीं चल रहा है कि हम क्या खा रहे हैं। कौन सा फ्रूट?
3: प्लम।
1: इज इट प्लम? त्यों त्यों त्यों, आप भी हार गए। वो भी हार गई, लेकिन आप तो मुझे बताइए विच फ्रूट इट वॉज। वो नहीं बता सकती है, गेस्ट ही करवा

0: सकती है। चलो कोई बात नहीं, आप आइए गैस कीजिए, पहले टेस्ट कीजिए और अगर अच्छा लगा तो डबल टेस्ट कीजिए। डबल टेस्ट करने के बाद अगर आपने पहचान लिया सो यू आर गोइंग टू विन अमेजिंग अमेजिंग प्राइसेस। और अगर टेस्ट पसंद आ गया तो आज स्पेशल प्रमोशन है, इंस्टेड ऑफ 92 रुपीज़ यू आर गोइंग टू पे ओनली 75 रुपीज़। तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आ जाइए क्योर दे विल फ्लैक में, टेस्ट कीजिए, गैस कीजिए एंड ईगल ब्रांड के साथ मस्ती कीजिए विद देयर न्यू प्रोडक्ट येस विच इज सेलिंग ऑल अराउंड मॉरिशस इन ऑल द सुपर मार्केट्स।
1: Radio Musti.
2: Your life is not complete until you have a little musty in your life. Radio Musti. All the way. The latest news and the greatest mix of music. Radio Musti.
1: Radio Musti.

0: Lauren to
1: Radio Musti.
2: थैंक यू सो मच जी साथ देने के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती. जी हाँ दोस्तों, फिलहाल के लिए वी आर ब्रॉडकास्टिंग लाइव फ्रॉम कोर दे विल फ्लैक. वी आर जस्ट एट द एंट्रेंस. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टेस्टिंग करवा रहे हैं किस चीज़ का, सम न्यू प्रोडक्ट्स. ट्रस्ट मी गाइस, आप भी आओगे, आप भी टेस्ट करोगे तो आप भी कहेंगे मम्मा मिया इतना टेस्टी चीज़ें कहाँ से लेकर आए हैं. ये ईगल ब्रांड है, ट्रस्ट मी, इट इज़ समथिंग सो यमी. इतने सारे लोग हैं यहाँ पे, दे आर ट्राइंग टू गैस, गैस करने की कोशिश कर ही रहे हैं लेकिन इट्स वेरी डिफिकल्ट. लेकिन मैं एक तक पहुँच गई हूँ. आई हैव बीन विनिंग ओनली वन पॉइंट. इतने सारे फ्रूट्स हैं बट स्टिल नॉट ईजी टू गैस. हम सर जी के पास जाएंगे. हेलो जी, गुड आफ्टरनून.
3: गुड आफ्टरनून.
2: आपका नाम?
3: राजेश.
2: राजेश, प्यार से बोला ना, अच्छी बात है. तो राजेश जी, आप मुझे बताइए, ये जो अभी आपने खाया, आपने गेस किया, ये कौन सा फ्रूट है जो अभी आपके मुंह में है?
3: ये फेस वाला ग्रेपफ्रूट, पॉम्प्लेमूस.
2: इज इट पॉम्प्लेमूस?

0: ये जो ग्रीन कलर का है, इज इट पॉम्प्लेमूस? नहीं, तो यू कैन नॉट से इट नाउ, तो मैं उसको कैसे विनर अनाउंस करूंगी? तो आप अभी बताइए, चलो एक और ट्राई करवाओ राजेश जी को, ये वाला ट्राई कर लीजिए और बताइए ये कौन सा है. इट्स यम्मी, इट्स डेलिशियस, मुंह में इतना अच्छा लगता है कि मन करे कि और खाए और खाए और खाए. और ये क्या है? पापाया? ओह, व्हाट अ रॉन्ग आंसर. मैंने भी सबसे पहले बोला कि ये पापाया है, लेकिन पापाया नहीं है. लेकिन फॉरगेट अबाउट कि आपने गेस किया या नहीं, आप मुझे बताइए टेस्ट करके आपको कैसा लग रहा है. ये नया प्रोडक्ट है, आपको कैसा लग रहा है?
1: इट्स गुड, नाइस टू हैव इट एंड ट्राई न्यू थिंग्स.
0: ऑफ कोर्स नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहिए. फुटबॉल आप देखोगे ना, शाम को मैच है टीवी पे, तो आप कुछ खरीद के जाइए. आई एम प्रीटी मच श्योर इट्स वेरी हेल्दी एंड इट्स वेरी नाइस, क्योंकि ये फ्रूट्स है वेरी नेचुरल. सो ईगल ब्रांड जाना जाता है हमेशा अपने स्पाइसेस के लिए, लेकिन साथ में नए प्रोडक्ट उनको लॉन्च करना है. ये जो प्रोडक्ट है उन्होंने बोला है कि ये पहले हम पूरे पॉपुलेशन को टेस्ट कराएंगे, तभी तो कि आप उसको पसंद करोगे, तभी तो आप खरीदोगे. सो प्लीज़ यू कैन कम हियर एंड जॉइन अस राइट नाउ एट कैफे द व्हील एट फ्लैक. आप आएंगे, आप टेस्ट कीजिए. इट्स अ गेम, इट्स नॉट अबाउट guessing it right, and if you guess it right, aap jeetoge. Bahut sare amazing amazing prizes given to you by Eagle Brand.
2: You're listening to RM2, a Radio Masti.

0: Polly Branch
1: RM2 Radio Masti.
2: And yes, another hour, another game. बोला था ना, when RM2 Radio Masti is here, don't stress. अगर पिछले games में आपका नाम नहीं आया on the winning list, तो try करने में एक बार फिर क्या हर्ज है. Once again, you can win एक नहीं बल्कि दो tickets for the Fortis Beauty with a Noble Purpose Miss India Worldwide Mauritius 2026 का tickets. And अभी सवाल थोड़ा tricky है, लेकिन आसान है, आसान है. आपको बताना है कि हमारी आरजी गिनिशा इस वक्त कहाँ पर है और किस ब्रांड का टेस्टिंग करवा रही है. आई नो कि आप बहुत अटेंटिव है, रेडियो मस्ती से कनेक्टेड है सुबह से. इजी सवाल, आपको उस ब्रांड का नाम बताना है. 549912 94 पर लेट्स गो.
0: बॉली ब्रांच
1: RM2 रेडियो मस्ती.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: I really hope that you guys are really loving and enjoying each and every track जो लेकर आए हैं आप लोगों के लिए. Yes, it's Saturday. So Saturday को party शादी के साथ साथ अगर snack अच्छा मिले तो क्या बात है मेरी जाना. जी हाँ, snack की बात अगर हम कर रहे हैं तो आपको याद दिला दें कि Eagle brand ने introduce किया है a new product in Mauritius. यानी कि it's some dry fruits. Mauritius, वैसे क्या आप ready हैं एक नई taste और एक नई experience के लिए? हम तो उसके लिए बिल्कुल in हैं. I'm saying yes, just go for it. क्योंकि हमने भी taste किया है और हमें भी बहुत ही अच्छा लगा है. और जितने भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं एट कोर दे विल फ्लैक सुपर यू के बिल्कुल सामने उसके एंट्रेंस पे, यस दे आर लविंग द टेस्ट. तो आज घर पर मैं बैठी मेरी जान, कम डाउन टू सुपर यू फ्लैक कोर दे विल एंड डिस्कवर ईगल ब्रांड्स न्यू ड्राई फ्रूट्स. 18 डिलिशियस वराइटीज, एक नहीं दो नहीं 18 डिलिशियस वराइटीज, मैंगो, कीवी, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, पाइनएप्पल और बहुत कुछ. सो और सुनो, सिर्फ टेस्ट करना नहीं है, जीतना भी है आपको. यानी कि आज वो यहाँ पे हैं अपने पूरे टीम के साथ. ईगल ब्रांड का जो टीम है, दे आर मेकिंग यू टेस्टिंग ईच एंड एवरी ड्राई फ्रूट एंड इफ यू कैन गेस इट राइट यू आर विनिंग अमेजिंग प्राइजेस. यस, गिविंग टू यू, ऑफरिंग टू यू फ्रॉम ईगल ब्रांड. सो आज सुनो, सिर्फ टेस्ट करना नहीं है, जीतना है. सो प्ले आवर एक्साइटिंग गेस द फ्रूट गेम. टेस्ट करो, फ्रूट गेस करो एंड विन सम अमेजिंग अमेजिंग गिफ्ट्स. और आज का स्पेशल प्रोमो मिस मत करना दोस्त. ईगल ब्रांड ड्राई फ्रूट्स ओनली एट 75 rupees इंस्टेड ऑफ 92 rupees. यस, यहीं पे आपको ये सारा का सारा प्रमोशन मिल सकता है एट सुपर यू एट कोर दे विल फ्लैक. सो 75 rupees में ग्रैब करो, टेस्ट करो, गेस करो और गिफ्ट जीतो. सो मॉरिशस माई लवली RM2 फैमिली, मैं आपको बुला रही हूँ, फ्रेंड्स को बुलाओ और सीधा सुपर यू फ्लैक कोर दे विल में आ जाओ. ईगल ब्रांड, इट्स अ न्यू स्नैक, न्यू style or aaj just make it a new experience. So we are waiting for you right now, the entire Radio Musti team, and keep on enjoying the good music. To chaliye ji, my next one goes out to each and everyone who's heading to Super U Flak.

0: जब ऐसे धमाकेदार गाने हम लेकर आते हैं ना आप लोगों के लिए ऑन आवर टू रेडियो मस्ती, जस्ट इमेजिन आप ऐसे गाने सुन रहे हो और मुंह में इतना मीठा मीठा ड्राई फ्रूट्स ट्राई कर रहे हो. व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है जी हाँ. तो आज जरूर आना एट सुपर यू फ्लैग ऑफ द व्हील. जी हाँ दोस्तों, हम आ गए हैं यहाँ पे आवर टू रेडियो मस्ती विद द एंटायर टीम ऑफ ईगल ब्रांड. एक्चुअली व्हाई, बिकॉज अगर आपने मिस किया है मैं आपको याद दिलाती हूँ, वी आर प्रेजेंटिंग टू यू, इंट्रोड्यूसिंग टू यू अ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. ईगल ब्रांड लेकर आया है 18 varieties of yummy dry fruits. Mango भी है, kiwi भी है, strawberry, blueberry, pineapple और बहुत कुछ है. बस बस आप यहाँ पे आ जाइए और आज का स्पेशल प्रोमो आप मिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ये लोग पैकेट्स का ये जो ड्राई फ्रूट हैं बेच रहे हैं at 92 rupees, it's on a promotional prices today at 75 rupees only. So ये सिर्फ प्राइस की बात हम बता रहे हैं, हम बेचने की बात कर रही है. यहाँ पे गेम भी चल रहा है, वी हैव अमेजिंग गेम हैपनिंग राइट नाउ, जहाँ पे आप आ सकते हैं एंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं. एक्चुअली यू जस्ट हैव टू लेट अस नो कि आपका टेस्ट बड कितना सही चल रहा है. जी हाँ दोस्तों सुनो, आप सिर्फ टेस्ट से नहीं गेम भी जीत सकते हैं. सो टेस्ट करो, फ्रूट गेस करो एंड अमेजिंग जो गिफ्ट्स हैं आप जीत सकते हैं. वी हैव दिस भाई साहब हमारे साथ, आपका नाम
1: शावन.
0: शावन ओके, सो आप यहीं से हो, फ्लैग से हो?
1: हाँ फ्लैग से हैं.
0: आपने टेस्ट किया वो फ्रूट्स?
1: हाँ टेस्ट किया.
0: कैसा लगा?
1: फ्रूट अच्छा है
0: लेकिन गेस नहीं कर पाए.
1: दो गेस कर पाए.
0: गिफ्ट मिला? गिफ्ट नहीं मिला इस भाई साहब ने. अच्छा, चारों को चारों गेस करना. मैं भी हार गया. आप अकेले नहीं हो इस रेस में, मैं भी हार गई.
1: हमारा लक सेम है.
0: हाँ हमारा लक आज सेम चल रहा है, बट स्टिल जस्ट टू रिमाइंड यू कि बच्चे भी हैं, बीवी भी हैं, सभी हैं. सो यू कैन बाय इट, इट्स ओनली एट 75 रुपीज पर पैकेट इंस्टेड ऑफ 92 रुपीज. तो चलिए अभी के लिए देखते हैं, वी हैव दिस ब्यूटीफुल लेडी. हेलो लेडी, आपका नाम क्या है?
2: हेमा.
0: अरे हेमा, मैं आपको मारूंगी नहीं, जादू की जप्पी लगाते हैं. चले, जादू की जप्पी लगाया. आपने टेस्ट किया?
2: हाँ.
0: कैसा लगा?
2: बहुत अच्छा.
0: गेस कर पाए कि कौन से फ्रूट्स हैं?
2: नहीं
0: नहीं, इतना डिफिकल्ट है. जस्ट इमेजिन ये फ्रूट्स इतना यम्मी है कि किसी को पता भी नहीं चल रहा है. बट स्टिल आप ज़रूर खरीद दीजिए, क्योंकि आज ये प्रमोशनल प्राइसेस पे बिक रही है. इंस्टेड ऑफ 92 रुपीज इट्स ओनली एट 75 रुपीज. आपका नाम?
3: रुमिता.
0: रुमिता खाओ रही है, मुँह भरा हुआ है. आप गेस कीजिए, ये जो अभी आपने टेस्ट किया ये कौन सा फ्रूट है? कौन सा?
3: पामेलो.
0: पामेलो नहीं नहीं है, नहीं है. वो मैडम देखेगी और बताएगी. आप गेस कीजिए एंड विन कीजिए अमेजिंग अमेजिंग प्राइसेस. जी हाँ दोस्तों, यस आई कैन टेल यू एवरीबॉडी, यहाँ पे ना जो भी आ रहे हैं दे आर टेस्टिंग दिस ड्राई फ्रूट्स, दे आर गोइंग क्रेजी, क्योंकि ये इतना यमी है. कभी कभी हम कुछ ऐसा चीज़ खा देते हैं ना कि सिर्फ मुँह नहीं, हमारा जो मन है पूरा खुश हो ही जाता है. सो आप आइए, टेस्ट कीजिए, गेस कीजिए एंड विन अमेजिंग प्राइसेस गिविंग टू यू बाय ईगल ब्रांड. तो क्या आप किसी की वेट कर रहे हो? मैं तो बोलती हूँ कि आप बस इंतजार मत कीजिए किसी का, जल्दी से आप आ जाइए अपनों को लेकर. एंड इफ यू कैन हियर मी, आप ड्राइव कर रहे हो, आप घर पे हो, कहीं से भी अगर आप हमारा साथ दे रहे हो, तो मैं आपको रेंडेवू दे रही हूँ एट फ्लैग कोर दे विल, जस्ट एट द एंट्रेंस ऑफ सुपर यू. आप यहाँ पे आ सकते हैं, यू आर गोइंग टू फाइंड द एंटायर टीम ऑफ ईगल ब्रांड एंड एज वेल आवर टू रेडियो मस्ती. सो यू कैन जस्ट जॉइन अस, क्योंकि दिस इज अ न्यू प्रोडक्ट जो लॉन्च किया जा रहा है बाय ईगल ब्रांड.

0: मॉर्निंग ब्रंच RM2 रेडियो मस्ती.
1: And yes, Radio Masti पर आप very well हो connected. And let me tell you, सवाल पूछा गया था कि हमारी RJ गिनिशा इस वक्त कहाँ पर है और किस ब्रांड का टेस्टिंग करवा रही है. And yes, सही जवाब देने वाले को मिलेगा 2 tickets for the final of the 4 Tests of Beauty with Noble Purpose Miss India Worldwide Mauritius 2026 finals, जो कि होगा इस 12 सितंबर को at Trianon Convention Center as from 7:30 PM. तो winner कौन है? And yes, हमारी winner है करिश्मा रामनोथ. Congratulations to you, dear. आपको मिला है 2 tickets to watch the final of Miss India Worldwide Mauritius live. And आप tickets collect करने के लिए आ सकते हो MBC पर ही within working hours. Once again, congratulations to you. अभी के लिए, let's dive right back into the music. And after that, गिनिशा आपसे फिर से मिलेगी with the brand tasting that's happening right now at Super U, Cœur de Ville.
0: Body Brunch, RM2, Radio Masti.

0: Color into
1: Radio Masti.
2: मस्ती ही मस्ती लेकर आते हैं जब भी हम आते हैं ऑन ऑल टू रेडियो मस्ती. जी हाँ दोस्तों, इट्स सैटरडे एंड सैटरडे इट्स ऑल फॉर गोइंग आउट विद योर फैमिली, एंजॉयिंग द फैमिली टाइम अपनों के साथ, अपने प्यार के साथ, अपने दोस्तों के साथ. अगर आप इस तरफ आ गए हो, यू आर एट फ्लैग कैर द व्हील, या गाड़ी में हो, सुन रहे हो और आसपास हो, हम तो बस आपको इतना कहना चाहेंगे, डू कम हियर, जॉइन अस द एंटायर रेडियो मस्ती टीम एंड द एंटायर ईगल ब्रांड का टीम. बिल्कुल, क्योंकि कुछ नया है, कुछ टेस्टी है, कुछ डिफरेंट हैं. और अब अगर आपको ये नया टेस्टी ट्राई करना है, सो यू हैव टू जॉइन अस एट सुपर यू कैर द व्हील फ्लैक. तो आज मिलते हैं सुपर यू फ्लैक कैर द व्हील में. ईगल ब्रांड को लेकर आया है 18 वराइटीज ऑफ ड्राई फ्रूट्स, जहाँ पे मैंगो भी है, कीवी भी है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, एंड दे हैव कुमक्वात, दे हैव पाइनएप्पल, और बहुत सारे टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स हैं. सो आज का स्पेशल प्रोमो है 75 rupees ओनली इंस्टेड. हाँ जी भाई, आपने ठीक से सुना, इंस्टेड ऑफ 92 rupees यू आर पेइंग दिस ड्राई फ्रूट का जो पैकेट है ओनली फॉर 75 rupees ओनली. सो लेकिन मज़ा यही ख़त्म नहीं होता है मेरी जान. आप टेस्ट करो, आप गेस करो और गिफ्ट जीतो. यू हर्ड इट राइट, यानी वी आर हैविंग एन अमेजिंग अमेजिंग गेम गोइंग ऑन राइट नाउ. यहाँ पे जितने भी लोग आ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, एंड इफ दे आर गेसिंग द फ्रूट्स The fruits, right? They are winning amazing prizes offered to you by Eagle Brand. तो चलिए आज dry fruit taste करो, fruit identify करो और देखो कितना सही guess आप कर सकते हो. तो जितने भी हमारे listeners हैं, आप wait क्या कर रहे हो? Family को लेकर आओ, अपने दोस्तों को लेकर आओ और सीधा Super You Flag Cœur de Ville में आ जाओ. 75 rupees का promo today only, taste करो, guess करो and win करो.

0: RM2 Radio Masti.
1: तो चलिए दोस्तों, टाइम तो बीटा चला जा रहा है, 1:55 हो चुके हैं। यू आर लिसनिंग टू योर नंबर वन रेडियो स्टेशन, यानी कि दैट्स आरएम2 रेडियो में, इट्स मेगन ऑन द माइक एंड यस वी आर आउटसाइड द स्टूडियो टुडे, क्योंकि हम आ गए हैं वस्त में, यानी कि फ्लैक में, सुपर यू फ्लैक कर दे विल के बिल्कुल बाहर हम खड़े हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल जी, ऐसा एक्चुअली आज आपका क्या सीन है? अगर कोई सीन नहीं है तो मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, क्योंकि वी हैव अ गेम हैपनिंग राइट नाउ, टेस्ट गेस्ट एंड विन। अरे आप सोचेंगे कि अब ये क्या बोल रही है। बिल्कुल जी, ईगल ब्रांड का न्यू ड्राई फ्रूट स्नैक्स आ गया है मार्केट में विद 18 डिफरेंट वराइटीज, जो जिसमें जो जो मैंने ट्राई किया है, जैसे कि मैंगो है, कीवी है, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, कुमकुट, पाइनएप्पल। अरे लिस्ट तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, आप लोग यहाँ पे आइए एंड खुद चेक कर लीजिए। आज सुपर यू फ्लैक कार्ड रिवील में मिल रहा है स्पेशल प्रोमो ऑन दिस ड्राई फ्रूट्स, यानी कि इट्स ओनली 75 रुपीज राइट नाउ इंस्टेड ऑफ 92 रुपीज। येस, यू आर गोइंग टू पे ओनली 75 रुपीज इंस्टेड ऑफ 92 रुपीज। और हाँ, चैलेंज भी है, बहुत ही आसान सा चैलेंज है, जो बहुत सारे लोग जीत भी रहे हैं और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। आप टेस्ट करो, आप सोचो और गेस करो कि कौन सा फ्रूट आपको टेस्ट करवाया जा रहा है। सही जवाब दिया तो गिफ्ट आपका। बिल्कुल जी, तो आज का प्लान आप यहीं पे बना लीजिए, आप यहाँ पे आ जाइए सुपर यू फ्लैक कार्ड रिवील में आ जाओ, ईगल ब्रांड टेस्ट करो, 75 रुपीज में ग्रैब करो और गेस द फ्रूट गेम, एंड आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं एंड विनर भी बन सकते हैं। सो यस, इट्स सैटरडे और मुझे पता है कि आज तो वैसे ही घर पे कभी कभी बच्चे स्नैक्स मांगते हैं, जब भी आप फुटबॉल मैच देख रहे हैं, या हो सकता है आप सास बहू का सीरियल

देख रहे हो, आप रेडियो मस्ती को सुन रहे हो, तो कुछ ना कुछ स्नैक हाथ में होना चाहिए. सो व्हाई नॉट समथिंग टेस्टी एंड हेल्दी. इट्स ऑल अबाउट ड्राई फ्रूट्स. सो माय डियर, क्या पता नेक्स्ट विनर आप भी हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे आ जाइए, टेस्ट कीजिए एंड विन दिस अमेजिंग प्राइजेस. बिल्कुल जी, आज सुपर यू फ्लैग के ऑडिविल में स्पेशल प्रोमो चल रहा है. सो वी आर वेटिंग फॉर यू, द एंटायर रेडियो मस्ती टीम एंड ईगल ब्रांड का जो टीम है, जो मसालों के लिए फेमस ही तो है, लेकिन आज अपना न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं. सो डू कम एंड जॉइन देम, जॉइन अस एट द सुपर यू कोर दे विल एट फ्लैग. कभी स्पाइसी कभी स्वीट, म्यूजिक लवर्स की हार्ट बीट, टक टक बॉलीवुड.

0: subscribe to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: दोपहर के 2 बजे हैं. चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार. फिर से आपसे याचना. नमस्कार.
6: नमस्कार नील मनी. सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. ग्रेड 8 यानी ग्रेड 8 के करीब 200 छात्र इस नवंबर नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस के नए संस्करण में भाग लेंगे. 2 हफ्तों तक वे ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे जिसमें नागरिक कर्तव्य, चरित्र निर्माण, सामाजिक जिम्मेदारी के पालन और आपात स्थितियों की तैयारी पर वे सीख पाएंगे. नए साल के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री डॉ. नवीन राम गुलाम ने इसका ऐलान किया था. एक ऐसी पहल जो 14 साल बाद

0: से शुरू हो रही हैं। पिछली बार 2012 में इसका आयोजन किया गया था। थोडरुस में कल 37 साल के चीनी मूल के कर्मचारी की मौत हो गई। जानकारियों के मुताबिक कल दिन के करीब 1 बजे आल्टियो के एक स्थल पर दो चीनी कर्मचारी कंक्रीट के खंभे पर ट्रक पर लगे क्रेन के प्लेटफॉर्म पर खड़े बिजली संबंधी कार्य कर रहे थे। प्लेटफॉर्म के छूट जाने पर दोनों गिर गए। 37 साल के शियुमा की मौत घटनास्थल पर हुई, जबकि एक अन्य कर्मचारी फ्लाक अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। ट्रक का फिटनेस 7 जून को ढल गया था। हादसे के सही कारणों का पता लगाने के लिए एक जाँच शुरू की गई है। विदेशी समाचारों में बोलीविया के एक सैन्य अड्डे पर हुए धमाके में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है। कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। करीब 81 लोग घायल हुए और वहां रखे पायरोटेक्निक सामानों के कारण अन्य धमाकों का खतरा बना हुआ है। लोगों से वहां से दूरी बनाए रखने की मांग की गई है। और भारत के महाराष्ट्र राज्य में टैक्सी और टुकटुक चालकों को अब से अनिवार्य रूप से वहां की स्थानीय बोली मराठी बोलनी होगी। मराठी सीखने के लिए उनके पास 1 साल तक की मोहलत है। इसके लिए एक नया नियम लागू किया गया है, जिसे लेकर काफी विवाद उत्पन्न हो रहा है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य यात्रियों की बेहतर सुरक्षा के लिए उनके और चालकों के बीच संवाद यानी बातचीत को आसान बनाना है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

0: Tag and Play.
1: RM2.
2: सो वेल फ्रेंड्स, टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले, जहां पर हम आते हैं आपके लिए लेकर गुड म्यूजिक. वैसे गुड म्यूजिक की बात करें तो मॉर्निंग से लेकर नाइट तक का रेडियो मस्ती में हमारे सभी आरजेस की यही कोशिश रहती है कि गुड म्यूजिक हम आप तक पहुंचाए. वैसे जब वीकेंड होता है, इट्स द ओनली टाइम वे यू कैन आराम से एंजॉय म्यूजिक. सो आज हम उम्मीद करते हैं कि आपके पास वो फ्री टाइम है जहाँ पर आप म्यूजिक को एंजॉय कर पाएंगे, आपके टाइम को एंजॉय कर पाएंगे और थोड़ा सा टाइम खुद के लिए भी निकाल पाएंगे. तो वो वेलकम हमारे सभी लिसनर्स का. 2:08, मैं हूँ परी आपके साथ सैटरडे आफ्टरनून 5th of September. आई डू होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर वीकेंड. वैसे वीकेंड की शुरुआत तो हो चुकी है, कल थी जन्माष्टमी और आज भी सेलिब्रेशन कंटिन्यूज. आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, सो हमारे लिए तो हर एक दिन होता है सेलिब्रेशन हमारे लिसनर्स के साथ. तो चलिए अभी के लिए आपके मूड को सेट रखेंगे, गुड म्यूजिक आप तक पहुंचाएंगे और इंतजार होगा आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस का ऑन 5499-1294.

0: So ये है KK और शान की आवाज में एक ब्यूटीफुल सा गाना. वैसे शान से याद आया, आज तो शान का एक शानदार परफॉर्मेंस होने वाला है, उनका शानदार कॉन्सर्ट जिसके बारे में हम कब से बात कर रहे थे. ऐसे इनाम आप तक पहुंचाए हैं हमने, गोल्ड प्लैटिनम वीआईपी टिकट्स भी आप तक पहुंचाई है. सो आई एम श्योर जो भी हमारे विनर्स हैं वो आज रात को जाकर इस कॉन्सर्ट को एंजॉय करने वाले हैं. सो डू नॉट फॉरगेट, आज है 5th of September और रात को 8 बजे एट SBICC Pi आप एंजॉय कर सकते हैं शानदार कॉन्सर्ट ऑफ शान. सभी के लिए ये गाना हो जाए हमारे सभी लिसनर्स के नाम. मैं ऊपर ही आपके साथ, एंजॉय दिस वन.
1: Authentic, original, and better than our rights.

0: आर एम टू
1: रेडियो मस्ती।
2: जब तू गाड़ी चलावेल का तू जाने ला कि आगे का हो सकी, एगो दुर्घटना लुटो अपान हो सकी, ये सब कुछ सीमा पर होते रहेला, पर ये सब मुश्किल घड़ी के सामना अकेले नहीं करे के चाहे। सिकोब के संगे तोहरा कोनो चिंता नहीं करे के है, काहे कि हमनी के लासिहांस तोहर ख्याल रखेला। टोइंग की सुविधा, एगो लुटो प्लास्मो जब लुटो बनता सहायता या एगो सुझाव, सब कुछ खातिर हमनी तोहर संगे है जा। और दूसर नुकसान जैसे तूफान, बाढ़, आग, मूसलाधार पानी या जे आप अपन लुटो के चाबी भी गवा दिला, सिकोम ड्राइव स्मार्ट सब कुछ के बारे में सोच ली बाटी। जस्ती जानकारी हमने के वेबसाइट sikom.mu पर पाई सकब। इमे नियम आ शर्त भी लागू बा। सिकोम FSC के लाइसेंस के तहत काम करेला।
3: सिकोम ग्रुप, ए लाइफटाइम कमिटमेंट।
4: Week-end Megafolies, Côte Cadet, Electromeub, Rosebel et Beauvalo. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Chambre à coucher avec l'homme aux 4 battants, plus Lily Doub, sont aussi 44 500 roupies, puis 24 500 roupies. Et en cadeau, un dressing table pour madame. Air fryer Techwood, 5.3 litres, sont aussi 3 790 roupies, puis 10 350 roupies. Bundle offer avec aspirateur, ventilateur, blend Sanford à seulement 4 590 roupies. Ouena, Dizou, oui, Zis, Dizou, pour profit, ça va méga folies deal dans des magasins KDR et Électromeubles à Rosebel et Beauvalon, ancien King Savers.
0: RM2
1: Radio Musty.
5: वेल फ्रेंड्स, सैटरडे है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सभी लिसनर्स। सो आपके लिए स्वीट स्वीट सॉन्ग्स हम चला रहे हैं, हैप्पी हो या फिर दिल को छूने वाले गाने, सब कुछ मिलता है आपको ऑन RM2 रेडियो मस्ती। वैसे सैटरडे का आपका मूड क्या है? अभी तो आई एम श्योर दैट आप थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहते हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं या फिर बस घर पर रिलैक्स चिलैक्स कर रहे हैं। जो भी है आपका मूड, गुड म्यूजिक कंटिन्यूज ऑन रेडियो मस्ती। परी का साथ है दिन के 4 बजे तक। आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशंस ऑन 5499 1294।

0: Plug and play.
1: RM2.
2: So well, that was taken from the film Son of Sardar. ये गाना था आप सभी के लिए मेघा सिंह एंड भानव्या पंडित की आवाजों में. ये गाना हमारे सभी लिसनर्स के नाम रानी मैं तो राजा. वैसे तो हमारे जो दिलों के राजा है वो है हमारे लिसनर्स. हमेशा हम कहते हैं कि आप नहीं तो हम नहीं. सो थैंक यू फॉर ऑल द लव. वीकडेज हो या फिर वीकेंड आ जाते हैं अपना प्यार लेकर ऑन 5499-1294. सो थैंक यू सो मच. चलिए अभी के लिए शुरुआत करते हैं अंजलि आपके साथ. हमारा साथ दे रही हैं आप एंड एंजॉयिंग songs. Thank you, G. कहते हैं what a beautiful Saturday और plan हो रहा है to go seaside. लेकिन घर में आधे लोग हाँ बोल रहे हैं आधे लोग ना बोल रहे हैं. लेकिन convince them go seaside. लग तो रहा है कि मौसम आज काफी crispy crispy and nice सा है. So ऐसे में family के साथ you can enjoy some quality time और sunset वाला जो seaside time होता है वो सबसे best होता है. So अभी से plan करेंगे तो तब तक तो पहुँच ही जाएंगे. Have a great time Anjali and good wishes to you and to your family. सभी के लिए प्यार. और अभी के लिए लाल माटी से Davisen आए हैं अपनी गुड विशेस लेकर. सो आई डू होप Davisen यू आल्सो हैविंग अ ग्रेट टाइम. अपना वीकेंड आप भी एंजॉय कर रहे हैं. थैंक यू आपने चुना रेडियो मस्ती को और अभी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं. सो अगला गाना हम डेडिकेट करेंगे आपके नाम. लीना जी हमारा साथ दे रही हैं और कहती हैं दैट गाना हो जाए फॉर पति सूर्य देव. आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑन 5th of September. सो उनके लिए प्यार एंड स्पेशल विशेज. चलिए यहाँ पर बिंदिया जी हमारे साथ जुड़ गई हैं आप और कहती हैं दैट गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ फॉर ऑल द लिसनर्स एंड स्पेशली अपने नाम जो हमेशा साथ देती है ऑन रेडियो. कहती है मॉर्निंग 5 AM से मैं कनेक्टेड रहती हूँ और रात के 11 बजे तक गानों को सुनती हूँ. तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है. थैंक यू जी. थैंक यू. आप सबसे ज़्यादा टाइम हमारे साथ यानी कि हमारे इस प्यारे रेडियो के साथ बिताती है. सो आई डू होप दैट आप गानों को एंजॉय करें अपने टाइम को एंजॉय करें रेडियो मस्ती के साथ. चलिए दोस्तों अभी के लिए इट्स टाइम फॉर योर प्लग एंड प्ले. मैं हूं परी आपके साथ टिल 4 PM. ऐसे ही अपने स्वीट मैसेजेस आप हम तक पहुंचा सकते हैं मुझ तक पहुंचा सकते हैं ऑन 5499-1294.
0: नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट ट्यून इन टू द वेरी बेस्ट रेडियो मस्ती योर नंबर वन बेलोवेड स्टेशन.

Bring it back. You can do it.

0: Plug and play.
1: RM2.
0: Plug and play.
2: और चलिए अभी के लिए ये जो गाना है इसे हम डेडिकेट करना चाहेंगे फौमेधा मनीष श्रेया आर्यन नील शीतल विकी रतीना नितिन संगीता मोंटाइब्रॉन से हमारा साथ दे रहे हैं सीता अनगीता बोलूराम आशा तो

बनारस से अभी हमारा साथ दे रही हैं सभी खूब लाल परिवार रिव्यू जो गांव पास से आप भी कनेक्टेड हैं चलिए 256 और इसी गाने के साथ बनने वाले हैं समाचारों की ओर लौट कर आएंगे दैट्स योर प्लग एंड प्ले मैं हूं परी आपके साथ दिन के 4 बजे तक

0: subscribe to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2, Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Time check, 3 p.m. देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है याचना, आपको नमस्कार.
5: नमस्कार परी, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार. सुनिए संक्षिप्त समाचार. तैयार किया जा रहा यूथ पेपर यानी आगामी कप 31 के मद्देनज़र युवाओं की स्थिति और उनके विचारों को सामने रखने वाला दस्तावेज है. कप 31 का आयोजन 9 से 20 नवंबर के बीच तुर्की में किया जा रहा है. इन विषयों पर राजीव गांधी साइंस सेंटर में दो दिनों तक चर्चा की जा रही है. ये पहल पर्यावरण मंत्रालय और यूथ लीडरशिप काउंसिल की है, जिसमें राष्ट्रसंघ और ऑस्ट्रेलियाई उच्चायुक्त का समर्थन प्राप्त है. तैयार किए जा रहे इस दस्तावेज में बायोमिमिक्री यानी प्रकृति से प्रेरणा लेकर इंजीनियरिंग और तकनीकी समाधान विकसित करना, किसानों के लिए कृषि कैलेंडर तैयार करना, साथ ही कम उम्र से ही प्रकृति संरक्षण से जुड़े कानूनों की शिक्षा देना जैसे मुद्दे आदि को शामिल किया गया है. ग्रेड 8 के करीब 200 छात्र इस नवंबर नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन नाइस के नए संस्करण में भाग लेंगे. दो हफ्तों तक वे ऐसे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे जिसमें नागरिक कर्तव्य, चरित्र निर्माण, सामाजिक

0: वास्तविक जिम्मेदारी के पालन और आपात स्थितियों की तैयारी पर भी सीख पाएंगे। नए साल के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इसका ऐलान किया था। एक ऐसी पहल जो 14 साल बाद फिर से शुरू हो रही है, पिछली बार 2012 में इसका आयोजन किया गया था। विदेशी समाचारों में बोलीविया के एक सैन्य अड्डे में हुए धमाके में कम से कम 2 लोगों के मारे जाने की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं। अधिकारियों के अनुसार मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। करीब 81 लोग घायल हुए हैं और वहां रखे पायरोटेक्निक सामानों के कारण अन्य धमाकों का भी खतरा बना हुआ है। लोगों से वहां से दूरी बनाए रखने की मांग की गई है। और भारत के महाराष्ट्र राज्य में टैक्सी और तुक-तुक के चालकों को अब बस से अनिवार्य रूप से वहां की स्थानीय बोली मराठी बोलनी होगी। मराठी सीखने के लिए उनके पास 1 साल की मोहलत है। इसके लिए एक नया नियम लागू किया गया है जिसे लेकर काफी विवाद भी उत्पन्न हो रहे हैं। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। यहाँ आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv. Plug and play.
2: RM2.
1: Plug and play.

तो चलिए दोस्तों हमारा साथ दे रहे हैं आप 3:15 हो गए हैं एंड यू आर कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ. सो यहाँ पर कुछ गेम्स हम लेकर आते हैं आपके लिए एंड साथ ही साथ आप जीत सकते हैं कुछ शानदार इनाम. सो यहाँ पर आपके लिए सिंपल सा सवाल, एक फिल्म आई थी जिसमें नजर आई थी आलिया भट्ट, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ कमाल नहीं दिखा पाई लेकिन उसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है. यशराज चोपड़ा की फिल्म यस यशराज बैनर्स के तली बनी हुई फिल्म अल्फा और जिसमें नजर आई थी आलिया भट्ट, अल्फा में उनके ऑपोजिट एक और एक्ट्रेस नजर आई थी और आपको हमें बताना है उस एक्ट्रेस का नाम. बात हो रही है फिल्म अल्फा की. यशराज बैनर्स तले बनी हुई ये फिल्म जिसमें नजर आई थी आलिया भट्ट, उनके साथ एक और ब्यूटिफुल एक्ट्रेस. वेल सो यहाँ पर हम आपको बता दें अगर आप देते हैं सही जवाब बनते हैं लकी विनर. आप जीत सकते हैं 2 entry tickets टू द ग्रैंड फिनाले of Fortis Beauty with Noble Purpose Miss India Worldwide Mauritius 2026 होने वाला है on Saturday 12th of September at 7:30 PM and ये होगा at Triano Convention Center. तो चलिए यहाँ पर आपको हम देंगे थोड़ी सी और details, लेकिन अभी के लिए इंतजार अल्फा फिल्म में आलिया भट्ट के साथ कौन सी एक्ट्रेस नजर आई थी. Just send me your right answers on 5499-1294 आपके पूरे नाम और पते के साथ. All the best.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: सवाल well, दोस्तों यहां पर पूछा था आपसे हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन अल्फा फिल्म में आलिया भट्ट के अलावा कौन सी एक्ट्रेस नजर आई थी एंड यहां पर हमें मिले बहुत सारे सही जवाब लकी ड्रॉ के बाद यानिता पंचाल आप एफोरसाइड क्यूपिप से बन गई हैं हमारी लकी लकी विनर कांग्रेचुलेशंस सुवेल जिया यहां पर आपने हमें दिया बिल्कुल सही जवाब खेला RM2 के साथ और आपने जीता है चांस टू एंजॉय दिस स्पेक्टेक्युलर नाइट टू एंट्री टिकट्स टू द ग्रैंड

0: of Fortis Beauty with a Noble Purpose Miss India Worldwide Mauritius 2026 होने वाला है Saturday 12th of September 2026 at 7:30 PM at Triano Convention Center. So congratulations कहेंगे आपको आना होगा MBC Monday to Friday working days आप आ सकते हैं यहाँ पर सुबह 9 से लेकर afternoon 3 PM तक अपनी ID के साथ and आप जीत सकते हैं आपने जीत लिया ये शानदार इनाम so you can enjoy this spectacular night on 12th of September. So, एक बार फिर आपको कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस और जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग
1: प्लग एंड प्ले
2: RM2
1: प्लग एंड प्ले
0: So well, that's your plug and play away के लिए हमारी winner Yanita. This one goes out for you. और साथ ही साथ हमारे जितने भी listeners हमारे साथ जुड़े हुए हैं, we have this beautiful song आपके नाम. Yanita हमारा साथ दे रही हैं. We also have Prisha and Yavni. अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं. So I'm sure that you love dancing थोड़ा सा. So हो जाए ये beautiful track आपके नाम. Equally goes out for Bhai Vimal and everyone जो हमारे साथ connected रहते हैं. हमेशा गानों को enjoy करते हैं. So that's your plug and play on RM2 Radio. मस्ती जीतने के मौके और भी मिलेंगे. Stay well connected.

0: Plug and play.
1: RM2.
2: काश जिंदगी में भी ऐसे सिचुएशंस होती कि जो सिचुएशन हमें अच्छे ना लगे उसे एकदम प्लग ऑफ कर दें और जो अच्छी लगे बस इसे प्लग एंड प्ले करते रहे। सिचुएशंस हमारे हाथों में नहीं होती दोस्तों, लेकिन जो भी आप सोचते हैं ये तो आप ही के हाथ में होता है। सो हमेशा हम यही कहते हैं कि ऑलवेज बी ग्रेटफुल, यानी कि लाइफ में छोटी छोटी जो खुशियाँ मिली हैं उनको आप संजो कर रखें, और छोटी छोटी खुशियाँ ही कभी कभार बड़ी खुशियाँ बन जाती है, और उसके बाद सिचुएशंस चाहे कैसे भी क्यों ना हो, बस अपने दिल को समझाइए कि ये जो सिचुएशंस है वो हमेशा के लिए थोड़ी ना रहने वाले हैं। लाइफ है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, लाइफ में खुश रहना ये आपके हाथ में है। सो ऑलवेज बी हैप्पी और गुनगुनाते चलिए जिंदगी का ये म्यूजिकल ट्यून। सो वेल, यहाँ पर हमारी प्यारी सी रोशनी लकी वन आज जाकर शान का कॉन्सर्ट एंजॉय करने वाली है, और साथ ही हमें कह रही है दैट आई विल मिस यू सो मच, हम भी आपको काफी मिस करेंगे, लेकिन आई एम श्योर दैट यू आर गोइंग टू एंजॉय द कॉन्सर्ट। सो हैव अ ग्रेट ग्रेट टाइम, शान के शानदार गीत आप एंजॉय कर पाएंगी, एंड आई एम श्योर दैट ये जो हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स है इन्हें आप हमेशा संजो कर रखेगी। सो थैंक यू सो मच रोशनी, आपने हमें याद किया है। सो अभी के लिए जो नेक्स्ट गाना है होगा आपके नाम, एंड हैव अ वंडरफुल सैटरडे। ललिता जीतन साथ दे रही है ऑलरेडी सी साइड विटामिन सी। जैसे हम कहते हैं भाई, मंडे टू फ्राइडे जितना काम करते हैं उसके बाद बॉडी माइंड को रिजुविनेट करना तो बनता है, रिलैक्स करना तो बनता है। सो यू आर डूइंग द राइट थिंग, अभी के लिए आप पहुंच गई हैं सी साइड, और साथ में अपने सभी फ्रेंड्स को याद कर रही हैं, सिमिया, रूमी, शैला, सुनीता, शीला, प्रिया और सभी जीतन परिवार के नाम डेडिकेट कर रही हैं अगला गाना। श्याम देवीचंद हमारा साथ दे रहे हैं, आप भी गर्मा गर्म इलायची चाय और फुल वॉल्यूम पर एंजॉय कर रहे हैं रेडियो मस्ती के गाने। सो ये भी हम कहते हैं कुछ लोग सी साइड पर, कुछ लोग घर पर ही चिल करना पसंद करते हैं। सो जो भी है आपके प्लान्स, नॉट टू फॉरगेट दैट रेडियो मस्ती हमेशा आपके साथ। चलिए सो श्याम जी, अगला गाना होगा आपके नाम और आपकी ओर से सभी देवीचंद परिवार के नाम। और चलिए यहाँ पर मिस्टर रवि हमारा साथ दे रहे हैं। देखिए आप हमें अपना पूरा नाम तो कभी लिख के भेजते नहीं है, तो यहाँ पर जो नाम आपका सेव हुआ है हमें वही नाम व्हाट्सएप के जरिए जो मिलता है हम वही पढ़ते हैं, लेकिन टुडे वी गॉट टू नो योर नेम, योर नेम इज रवि। सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट ग्रेट वीकेंड मिस्टर रवि, अपना ख्याल रखिए आप, और वीकेंड को एंजॉय करें हमारे प्यारे प्यारे गीतों के साथ। बस आपके मैसेजेस, आपके डेडिकेशन पहुँचते रहे, आपका प्यार हम तक पहुँचता रहे ऑन 5499-1294। साथ ही यहाँ पर दारिन श्वेता, रवीश, प्रीशा, लवशा, नपाडू परिवार, हमेशा की तरह आप भी कनेक्ट हो गए हैं रेडियो मस्ती के साथ। सो थैंक यू सो मच, आपने चुना है हमें एज योर रेडियो पार्टनर। सो बस आपको एंटरटेन करते रहेंगे, आपके सैटरडे को बनाते रहेंगे खास इन खूबसूरत गीतों के साथ।
1: RM2
0: रेडियो मस्ती,
1: फील द मस्ती।

0: RM2 Radio Musty.
1: सो वेल फ्रेंड्स, विद दिस ब्यूटीफुल ट्रैक इट्स टाइम फॉर परी टू से गुड बाय. और यहाँ पर ऐसे ही प्यारे गाने आपके लिए हम चलाते रहेंगे. मैं तो चली, लेकिन आ रही है हंसनी आपके लिए कुछ और प्यारे गाने लेकर. सो आप भी उनका साथ दीजिए ऑन RM2 रेडियो मस्ती. मुलाकात होगी आपसे कल मॉर्निंग 8 से लेकर 11 बजे तक. इन योर टाइमलेस तड़का कुछ टाइमलेस क्लासिक्स आपके लिए हम लेकर आएंगे. तब तक के लिए हैव अ ग्रेट सैटरडे, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड स्टे कनेक्टेड RM2 रेडियो मस्ती के साथ.

0: to Radio Misty.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Musti.
3: North, South,
0: 103.5.
3: East, West,
0: 96.4.
3: Center,
0: 99.4.
4: RM2, Radio Musti.
0: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
5: Wishing you all a very good afternoon. Check your time. Sham ke thik 4 baje hain. संक्षिप्त समाचार टीना के साथ आपको नमस्कार टीना
6: नमस्कार संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें नवंबर में ग्रेड एक के 200 विद्यार्थी नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी नीस के नए संस्करण में हिस्सा लेंगे लगभग दो हफ्ते तक वे ऐसे कार्यक्रम का पालन करेंगे जिसमें नागरिक शिक्षा चरित्र निर्माण आपात स्थिति के लिए तैयारी और सामुदायिक सौहार्द शामिल है इस परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने नए साल पर जनता को अपने संबोधन के दौरान की थी ये पहल 2012 में आयोजित पहली एडिशन की 14 साल बाद वापस आ रही है युवा पत्र जो तैयार किया जा रहा है यानी कप 31 के लिए युवाओं का विचार जो 9 से 20 नवंबर तक अंटालिया तुर्की में आयोजित होगी उन विषयों पर दो दिन तक राजीव गांधी साइंस सेंटर में पर्यावरण मंत्रालय यूथ लीडरशिप काउंसिल और यूनाइटेड नेशन तथा ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के सहयोग से चर्चा की जा रही है बायोमीमेटिक्स यानी प्रकृति से प्रेरित इंजीनियरिंग किसानों के लिए एक कृषि कैलेंडर और प्रकृति संरक्षण से जुड़े कानूनों की शिक्षा बचपन से ही देना इस तैयार किए जा रहे टेक्स्ट में पेश किए गए तर्कों का हिस्सा है और मॉरिशस में कुछ पुरानी रेलवे स्टेशन हमारे इतिहास के एक हिस्से को जीवित रखे हुए है कुछ को पोस्ट ऑफिस में बदल दिया गया है वे आज भी यादों के स्थान बने हुए हैं लेकिन साथ ही ऐसे भवन भी है जिन्हें रखरखाव और संरक्षण की आवश्यकता है

0: मॉरिशस और फ्रांसीसी गणराज्य के बीच सहयोग जिसकी घोषणा कैबिनेट ने अगस्त में की थी का उद्देश्य विशेष रूप से मॉरिशस की वास्तुकला विरासत के संरक्षण और संवर्धन को मजबूत करना है जिसमें इन स्थलों के पुनर्वास और प्रबंधन के लिए एक पब्लिक प्राइवेट संरचना स्थापित करने की संभावना भी शामिल है। विदेश में नेपाल में भयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता तेज की जा रही है जिन्होंने देश के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हजारों लोग बेघर और प्रभावित हुए हैं। सबसे जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपने अभियानों को मजबूत कर रही है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। हमें आगे आ रही नमस्कार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: Music,
3: Music,
2: RM2, Radio Musti.

0: RM2
1: Radio Musti.
2: Cirque Zavata à Bagatelle. Prépare-toi pour un moment magique et ban spectacle cirque extraordinaire. Tous jeudi et vendredi, 18h, achetez des billets, gagnez gratis. Ou pour rouler un bon plan pour week-end, vingez Cirque Zavata samedi et dimanche, 14h30 et 17h30. Et ban l'école, compagnie et ban groupe, nous pas fin oublier eux. Nous avons un package spécial pour eux avec ban spectacle à partir 11h. Allô, qui se peut attendre? Réserve votre place à ce la même, l'eau 50 94 13.
0: RM2
1: Radio Musti.
3: Music Takta
1: Kata. RM2 Radio Musti.
4: It's a bright sunny afternoon and welcome on Radio Musti. 4:09 ho chala hai. Chaliye hum milkar dhoomdham se is afternoon ko set karne wale hai with the magical songs. Shuruaat for aaj ka Bollywood Takta Kata. Special thank you to our lovely Pari जो यहाँ पर थी आज for plug and play show और जो musical सफर है बस उनको आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जुड़ गई है आपके साथ और जो हंसनी wishing you all a great afternoon and really hope कि सब अच्छा है सब कुछ ठीक से जा रहा है और अगर नहीं तो कोई बात नहीं अभी ठीक बनाएंगे ना यहाँ पर mood को फिर से set काम करने वाले हैं क्योंकि we do believe कि जो music का कमाल है वो बस जबरदस्त ही होता है so let us be in the musical magic यहाँ पर जो अच्छा रहा है ऑफ कोर्स आप लोगों के आने से कुछ और रंगीन तो हो जाएगी आफ्टर ऑल आज शान के साथ हम शान को देखने जाएंगे या इस आज उनका लाइव कंसर्ट होने वाला है आज फ्रॉम 8 PM एंड ही विल बी लाइव यस एट SBICC पर सो उनको देखने जाना है लाइव सो ऑफ कोर्स आज ये मौका हम सब फन फॉलोअर्स को मिल रही है टू सी शान लाइव इन मॉरिशस तो यहाँ पर गानों के साथ विल बी हैविंग अर्शकों को थोड़ी देर के बाद यस गाना तो हो जाए ना गाने के बाद हम लेकर आएंगे एक अर्शकों को क्या पता आपके लिए लेडी लग बिल्कुल तैयार रेडी और आपकी जीत हो सकती है राइट अभी ऑन रेडियो मस्ती सो ऐसे ही सुनते रहिए और अदरवाइज अगर आपके पास कुछ है शेयर करने के लिए दिल में कोई ऐसी बात शेयर करने से अच्छा लगेगा सेलिब्रेटिंग योर 5th of September कई हमारे बर्थडे बॉयज एंड बर्थडे गर्ल्स जुड़े हुए हैं इस समय तो मिलकर धूमधाम से मनाएंगे जन्मदिन को हमें तो चाहिए ना वो बहाना सो मिलकर करेंगे आप लोगों का इंतजार आई बी वेटिंग हंसनी है कुछ बातें शेयर करने के लिए आपके साथ विल बी वेटिंग ऑन 5499 1294
3: Music,
1: RM2, Radio Musti.

एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों के वास्ते ही हम सजाते हैं म्यूजिकल शोज और आज सैटरडे के लिए हम बस सेट कर रहे हैं द जबरदस्त मूड इन आज का बॉलीवुड टक टकाटक। तो चलिए यहाँ पर इस स्पेशल दिन को मनाते हैं 5th of September। हेलो गाइस, वेलकम इन द शो। जहाँ पर भी आपका प्यारा साथ जारी है, इट्स अ वार्म वेलकम टू एवरीवन। सो बढ़ेंगे कटबोन के यहाँ और वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑफ समवन रियली वेरी स्पेशल। ही इज आवर एंजल आदर्श परमेश्वर को लॉट्स ऑफ गुड विशेस। आज उनका स्पेशल दिन है। हैप्पी बर्थडे टू यू, लॉट्स ऑफ गुड विशेस है। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं हैं मेरे प्यारे भाई। और महादेव आपको हमेशा खुश रखे, आपकी हर इच्छा को पूरी करे और आपको आपकी ज़िंदगी में हमेशा प्यार मिले, आप हमेशा स्वस्थ रहे, ऑलवेज इन गुड हेल्थ। यही हमारी शुभकामनाएं हैं और हमेशा ऐसे ही आप मुस्कुराते रहो और बस यू जस्ट बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग और आपके जो डियर वंस हैं हमेशा आपके साथ रहेंगे। वी जस्ट लव यू आदर्श, वी जस्ट लव यू मामुदू। यहाँ पर लॉट्स ऑफ गुड विशेस कमिंग फ्रॉम योर एडोरेबल मामा नम्रता की तरफ से, फ्रॉम योर डैड किशोर और सभी परिवार आए हैं टू विश यू हैप्पी हैप्पी बर्थडे।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: That was great, fantabulous, number one song जो चलते रहती है on our way to मस्ती. As always, super hit गानों के साथ we keep you connected. So we are back now कुछ और मस्ती के साथ. Yes, we have दर्शकों को, we have the game जहां पर जीतने के chances हम आपको देंगे definitely, जहां पर मिलने वाला है आपको tickets to be part of Circus Avata. So कौन जाना चाहता है circus? ये मौका रेडियो मस्ती आपको दे रहा है. Get ready, yes, get ready for this unforgettable experience filled with magic, thrills. साथ में बहुत सारी मस्ती, laughter, spectacular circus performances for the whole family. Catch Circus Avata at Bagatelle with the shows every Thursday and Friday at 6 p.m. or Saturday, Sunday के जो shows आते हैं.

0: it will be at 2:30 p.m. and 5:30 p.m. For bookings and information, you can call on 5250-9413. You can call on 5250-9413. Sia ka zavata. Don't miss the magical big show jo aap logon ke liye bas hai in Mauritius. So you want to be there to have some musti to relax, hasne ke liye, hasane ke liye, so why not? Yahan par Radio Musti is here to give you this a chance. तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है. बस सिंपल सी बात है, सही जवाब देकर यू कैन विन द टिकट्स टू बी देयर. द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द डिफरेंट सर्कस एक्ट्स ट्रेडिशनली कॉल्ड? What is the person who introduces the different circus acts traditionally called? अगर आपके पास सही जवाब आ गया है, so जल्दी से जल्दी जल्दी जल्दी try your luck. I'm waiting आपके सही जवाबों के लिए on 5499-1294. Don't forget आपका पूरा नाम, पता, ये सब please आप complete लिखे ताकि आप इन हो जाए for yeah the lucky draw. So Hansini आई है, पूरी team आई है to wish you all the best.
1: Music,
2: Tuck Tuck Tuck. RM2, Radio Musti.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: बैक में दर्शकों को यहाँ पर था एक सिंपल सा क्वेश्चन और इसका जवाब आपको ढूंढना था. व्हाट इज द पर्सन हु इंट्रोड्यूसेस द डिफरेंट सर्कस एक्ट्स ट्रेडिशनली कॉल्ड. एंड सही जवाब इट्स द रिंग मास्टर. यस वही तो है जो यहाँ पर होस्ट करता है सर्कस शो को डायरेक्ट करता है. नॉर्मली द इंट्रोड्यूसेस द परफॉर्मेंसेस परफॉर्मर्स जो होते हैं और ऑडियंस से बात भी करते हैं और हिंदी में बोल

बुलाते हैं पता है सर्कस का संचालक का तो यहाँ पर सही जवाब इट्स द रिंग मास्टर और बस बहुत सारे लोग ने पार्टिसिपेट किए हैं दिल से आपको थैंक यू वेरी मच आपके पार्टिसिपेशन के लिए और यहाँ पे चलिए लेट्स गो एंड चेक आउट कौन है लकी विनर

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: ओएमजी रेडियो मस्ती
2: नजरें जो है वो नहीं हटाएंगी और कान वो भी नहीं हटाएंगे क्योंकि इतने अच्छे अच्छे गाने मस्त गाने चल रही हैं. सो आई यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर कब तक ये स्पेशल गाने चलते रहेंगे. ये तो है आप लोगों के लिए नॉनस्टॉप हिट सॉन्ग्स चलते रहते हैं, हम लेकर आते हैं ओनली द बेस्ट. रियली होप यू एंजॉयिंग द मूड ऑफ टकटकाटक. और बिल्कुल हम तो आए हैं ही टू एंटरटेन यू सैटरडे को और भी ज़बरदस्त बनाने के लिए. इट्स अ ब्राइट आफ्टरनून और सबका हम वेलकम करना चाहेंगे. कई हमारे फ्रेंड्स बस अभी भी काम कर रहे हैं, सुकुआश आप सभी को. और कुछ तो अभी जा रहे हैं घर वापस, या सम पीपल आपने सोचा है टू रिफ्रेश टू रिलैक्स, आप सी साइड थोड़ा सा जाएंगे, यू नो थोड़ा सा बदला हुआ नज़ारा देखेंगे तो दिमाग ठंडा हो जाएगा एंड यूल फील लाइक हैप्पी गुड अगेन, रिफ्रेशिंग मूड फिर से जाग उठेगा. सो दैट्स नाइस. कैरी ऑन द स्पेशल मूड जो हम लेकर आ रहे हैं म्यूजिकल आपको बनाने के लिए. चलिए आप सभी का वेलकम ऑन 5499124. वी हैव गॉट गाना फॉर आशा. थैंक यू सो मच फॉर लविंग द शो, लविंग द वीकेंड और मैजिकल गाने. हाँ जी बिल्कुल, हर हर महादेव मेरी बहना हंसनी जी, हर हर महादेव टू यू सरज भाई. रेडी होप कि सब ठीक है और गाना एकदम मस्त ऑफकोर्स चल जाएगा आपके लिए. यहाँ पर गाना डेडिकेटेड फॉर अंतिश रामसरन के लिए ऑल द वे फ्रॉम स्विट्जरलैंड. वो कनेक्टेड है फ्रॉम मॉरिशस. यहाँ पर एक्चुअली उनका बहुत बड़ा शो हुआ था एंड ही रिप्रेजेंटेड मॉरिशस ऑन अ टीवी शो और सब मॉरिशन को बस प्राउड उन्होंने महसूस करवाया है. That's a pride to have you in Switzerland and that's a great dear brother. Itne success paane ke baad abhi you have got more success to climb the ladder. So wishing you all the best from all the Mauritians and from all the team of Radio Masti. We are just proud of you. To yahan par gaano ke saath aapke messages bhi bas taktakate ho ya rahi hai, barsaat ho rahi hai messages ka. Right on 5499-1294. So share your feelings, share your messages on 5499-1294.
0: Music,
1: music, tak tak tak. RM2 Radio Musti.

0: RM Tube
1: Radio Masti.
0: Feel the Masti.
2: Stay tuned for the best blend of music जो हम लेकर आ रहे हैं for this Saturday वाला show. It's a tuk-tuk-tuk up till 6 PM with our Jahan Sunny. Stay well tuned. अभी थोड़ी देर में हम बढ़ेंगे news की ओर and Maya is all set for the news, for the latest news. तो ऐसे ही आप सुनते रहिए यहाँ पर गानों के साथ. We'll keep you magical, we'll keep you musical.

0: RM2 Radio Musty.
1: Ce soir, les jackpots voient très très grand. Approximativement 15 millions au loto plus et environ 55 millions au loto. 55 millions au loto plus 15 millions au loto plus égale à 70 millions de roupies. 70 millions au total à remporter. Et ce soir, les tirages quittent les studios et viennent à votre rencontre. Rendez-vous à la City Trianon pour le vivre en live à 19h.
2: Ceci est un communiqué de l'Autotech. Le jeu peut créer une dépendance. Jouez responsablement.
0: RM2
3: Radio Musty.
0: Music Taktakata.
3: RM2 Radio Musty.
4: हेलो दोस्तों, यहाँ पर सैटरडे आ गया है एंड वीकेंड ऑफिशियली ऑन है. आज कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन गुड वाइब्स. तो अगर आप अभी घर पे चिल कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ आउटिंग पे हो, या फिर कार में ड्राइव करते समय आपका साथ जारी है, या फिर बस सोफा पे रॉयल ट्रीटमेंट ले रहे हो, तो बिल्कुल सही जगह पे आप आए हो. आप सभी का वेलकम ऑन रेडियो मस्ती, जहाँ पर स्पेशल गाने तो चल ही जाएंगे. दिस इज बॉलीवुड टकटकाटक. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त हंसरी, और आपकी आफ्टरनून को बस बोरिंग होने तो नहीं देंगे, ये तो वादा है हमारा. यहाँ मिलेगा म्यूजिक का मैजिक, थोड़ी सी यू नो मस्ती जो और हम बढ़ाते जाएंगे, और साथ में कुछ इंटरेस्टिंग बातें और बहुत सारी पॉजिटिव वाइब्स. तो माय डियर लिसनर्स, वॉल्यूम थोड़ा सा अप कर दीजिए, मूड को एकदम हाई कर लीजिए और रेडी हो जाइए एक म्यूजिकल राइड के लिए. और बस इट्स ऑल अबाउट मस्ती, इट्स ऑल अबाउट ग्रेट म्यूजिक जो यहाँ पर चलने वाला है हमारे साथ अप टिल 6 PM. तो वी आर ऑल सेट फॉर दिस म्यूजिकल जर्नी. आप कहाँ पर हो इस समय, अगर कुछ कहना आप चाहेंगे, यू नो समटाइम्स शेयर करने से दिल हल्का हो जाता है, खुश हम रहते हैं. सो व्हाई नॉट गिविंग यू सो मेनी रीजंस टू बी हैप्पी, एंड वी आर हियर टू शेयर द हैप्पीनेस ऑल अराउंड. तो वेटिंग फॉर यू, आप ही का इंतजार रहेगा. कुछ आपके मैसेजेस हो जाएंगे तो या दैट विल बी ग्रेट. हंसनी इज हियर वेटिंग फॉर यू ऑन 5499-1294.
0: म्यूजिक
3: RM2 रेडियो मस्ती.

0: म्यूजिक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: द बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स राइट ऑन रेडियो मस्ती दिस इज आवर टक टक टक और हम तो कहेंगे जो भी कर रही हो इस समय एक बात याद रखें, वीकेंड छोटा है ना तो हैप्पीनेस को पोस्टपोन ना करें। अब ये टाइम जो आपको मिला है इट्स आवर म्यूजिकल ट्वीट ऑन रेडियो मस्ती, तो जस्ट एंजॉय टू द बेस्ट क्योंकि हमारा जो सैटरडे म्यूजिकल टाइम है वो आपके साथ हम बिता रही है एक्साइटिंग बनाने के लिए, टू मेक इट अ बिट लाइक मोर स्पेशल। तो एक के बाद एक सुपर डुपर गाने हम लेकर आएंगे, दिस इज आवर एंटरटेनमेंट वाला सफर। और जो हंसरी इज हियर विद यू ऑल एंजॉयिंग दिस फैबुलस मूड ऑन रेडियो मस्ती, सो आपका भी स्वागत। अगर अभी आपने सुना शुरू किया है इट्स आवर शो टुगेदर, इट्स बॉलीवुड टक टक टक।

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती.
2: That was a wonderful one. चलते चलते आप लोगों से मुलाकात होती है और चलते चलते यूं ही हम सब म्यूजिक के मुसाफिर बन जाते हैं. This is a radio mystery, हमारा और आपका एक प्यारा सा आशियाना. जब भी हम मिलते हैं ढेर सारी बातें होती है एंड वी फील लाइक स्वीट होम वाला फील जब भी रेडियो मिस्ट्री इज ऑन. तो यहाँ पर चलिए आपके मैसेजेस को हम आगे बढ़ाते हैं. We have Chagalal families strongly connected from a good lens. आपका वार्म वेलकम है जी. थैंक यू सो मच फॉर योर लव. We have got Mr. Badrak Bidesi. चलिए आपका भी साथ जारी है. आपका हम स्वागत करना चाहेंगे और आपके लिए भी गाना. वीना जगेसा आई है फ्रॉम एवरीवी मोबाइल. अच्छा सा गाना आपके परिवारों के लिए हो जाए, आपके फ्रेंड्स के लिए और हमारे टीम के लिए भी. हाउ स्वीट ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच. और इसके बाद चलते हैं फ्लाका की ओर जहाँ पर रिधिमा का साथ है. बिग हेलो टू यू हंसनी. हेलो रिधिमा, कैसी हो? यहाँ पर गाना मेरी मामा के लिए, सुनीता जी के लिए, सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आज. हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी जी. विशेस कमिंग फ्रॉम रामलोगन परिवार. और आपके डैड हैं मिस्टर संजय जो प्रिपरेशंस कर रही हैं. और आज प्लान है ग्रियाद एट होम. वेरी नाइस, हम तो आएंगे. एंड प्रिपरेशंस में बस हमारा साथ जारी है, हमारे गाने एक्चुअली जारी है. साथ तो आपका होता है, हमारे गाने जो शामिल हम बस कर लेते हैं टू मेक इट अ बिट मोर स्पेशल. वैसे काफ़ी सारा काम पड़ा हुआ है, आपके कजिन आए हुए हैं, लॉट्स ऑफ प्रिपरेशंस जारी है. वेरी नाइस. आपकी जो मम्मी है वो तो वन एंड ओनली है ना, सो मेक हर फील अ बिट मोर स्पेशल आज, क्योंकि आज उनका स्पेशल दिन जो आया है, उनका जन्मदिन है. हैप्पी बर्थडे टू यू. लॉट्स ऑफ गुड विशेस जाएगा आपके लिए. वी हैव जय किशन जी, हेलो एंड वेलकम इन द शो. रियली अप्रिशिएट इन द कलेक्शन ऑफ टक टका टक. और courage to you and to all your security friends, security guards जो connected है strongly to radio, क्योंकि आपका ये मानना है कि यही तो हम सफर बन जाता है जब भी आपका 24 hours shift होता है. Very nice, बिल्कुल सही सोचा है आपने. तो जितने भी हमारे दोस्त से काम करते हुए साथ निभा रहे हैं to bring you some more energy, we have got a so much a rocking song जो हम चलाने वाले हैं. हमारे साथ up till 6 p.m. या हंसनी है, आपके साथ साथ ही चलूंगी. It's Bollywood टक टक आटस.
0: Music,
1: RM2 Radio Musti.

0: Fashion tips powered by Halkari Fashion, House of Ready-Made Garments.
1: Music Taktakata.
2: RM2 Radio Musti.
3: जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर रेडियो मस्ती पर फैशन टिप्स का टाइम हो चला है. सो माय डियर गर्ल्स, माय डियर लेडीज, आज आपने क्या चूज़ किया है? वार्डरोब से क्या आपने निकाला है? बाय चांस अगर आपने निकाला है बर्गंडी ड्रेस, तो सही रहेगा आप लोगों के लिए फैशन टिप्स जो रहने वाले हैं ऑन रेडियो मस्ती. सो आज का फैशन कलर बर्गंडी जो आप चूज़ करने वाले हो, तो बिल्कुल परफेक्ट आपने चुना है. एकदम रिच, क्लासी एंड एलिगेंट लुक जो देता है. और इसको स्टाइल करने के लिए ढूंढ रही हो मैचिंग शूज, तो यू कैन चूज न्यूड, ब्लैक, गोल्ड या मेटालिक हील्स. ये तो बेस्ट रहेंगे. इवनिंग लुक आपका एकदम यू नो एलिगेंट आप दिख जाएंगे. और बैग के बारे में आपने सोचा है कुछ? अच्छा, टिप दे देती हूँ बैग के बारे में. ब्लैक या न्यूड या फिर गोल्ड क्लच चूज आप कर सकते हो. बर्गंडी ऑन बर्गंडी भी शिक लगता है या, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कंट्रास्ट कलर को चूज़ करेंगे तो ये भी डिफरेंट लगेगा. ज्वेलरी की बात करें तो गोल्ड ज्वेलरी बर्गंडी के साथ स्पेशली गॉर्जियस लगती है. सो आपके पास बर्गंडी ड्रेस बिल्कुल रेडी तैयार. और ज्वेलरी की बात करें तो गोल्ड वाले चूज कर लीजिए. मिनिमल लुक के लिए आप ब्रेसलेट चूज कर सकती है, इनफ रहेगा, ना तो ज़्यादा ना कुछ कम. और मेकअप थोड़ा सा सॉफ्ट रखें, सॉफ्ट ब्राउन गोल्डन आइज, एक यू नो सॉफ्ट मेकअप वाला जो नाइट आउट में बिल्कुल बोल्ड लुक दे सकते हैं. और बालों को खुला रखिए, सॉफ्ट कर्ल्स आप रख सकते हो या फिर लोबन ड्रेस के साथ बिल्कुल मैच हो जाएगा. अकॉर्डिंगली ये जो है आपका हेयर स्टाइल जो है मैच हो जाएगा. तो अगर आपने चूज कर लिया है इजी कॉम्बो वाला बर्गंडी ड्रेस, गोल्ड ज्वेलरी प्लस न्यूड हील्स प्लस न्यूड क्लच, तो बिल्कुल आपका जो लुक है एकदम एलिगेंट दिखेगा. दैट वाज इजी फैशन टिप्स ऑन रेडियो मस्ती.
0: फैशन टिप्स वाज पावर्ड बाय हल्को.

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: मेरा दिल ले ले दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग ऑफ अशान. वैसे अगर अभी आपने गाना सुना है और रेडियो कितना झकास रहा द फील ऑफ मेरा दिल ले ले. जस्ट इमेजिन जब लाइव उनको सुनेंगे फॉर हिज कंसर्ट जो वो देने वाले हैं आज इन मॉरिशस एट SBICC पर. जब शान के साथ वो गाएंगे, शान के साथ उनको देखेंगे,

क्या होगा. सो जितने भी हमारे दोस्त जा रही हैं फॉर द शान कंसर्ट, विश यू अ ग्रेट टाइम. दैट विल बी फन, दैट विल बी अ नाइट फिल्ड विद मेमोरीज. उनकी लाजवाब आवाज के साथ जब वो देंगे धमाकेदार परफॉर्मेंस हमारे सब फैन फॉलोअर्स के लिए जो यहाँ पर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड है एज ऑलवेज बॉलीवुड प्लस रेडियो मस्ती जो धमाका हम लेकर आते हैं. That was आज का बॉलीवुड टकटकाटक. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंजॉयिंग द शो. हमारे बाद आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे समाचार बुलेटिन, और इसके बाद विल बी वेलकमिंग विकास रामधनी जो लेकर आएंगे द नेक्स्ट शो. सो बी विद हिम एंड आई विश यू हैप्पी इवनिंग अहेड. टेक वेरी गुड केयर. हम मिलेंगे जल्द, तब तक के लिए यू स्टे सेफ एंड एंजॉय योर सैटरडे वाला टाइम.

0: welcome to Radio Masti.
1: The time is brought to you by
2: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
1: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
0: Radio Masti.
1: North, South,
0: 103.5.
1: East, West,
0: 96.4.
1: Center,
0: 99.4.
3: RM2 Radio Musty.
0: Radio Musty.
3: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musty.
4: Wish you all a very good evening. Check your time. Sham ke theek 6 baje hai.
5: समाचारों में आप सभी का स्वागत है. सबसे पहले मुख्य समाचार. सदियों से अटलस में अफ्रीका का छोटा आकार दिखाया जाता रहा है, जिसे सुधारने के लिए संयुक्त राष्ट्र की महासभा में एक प्रस्ताव अपनाया गया है. नवंबर में ग्रेड 1 के 200 विद्यार्थी नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी नीस के नए संस्करण में हिस्सा लेंगे. इस पहल की घोषणा प्रधानमंत्री ने नए साल के संबोधन में की थी. कप 31 के लिए राजीव गांधी साइंस सेंटर में यूथ लीडरशिप काउंसिल, यूनाइटेड नेशन और ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के सहयोग से युवा पत्र पर चर्चा की जा रही है. विदेश में नेपाल में भयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम द्वारा मानवीय सहायता और राहत अभियान तेज कर दिए गए हैं. और अब समाचार विस्तार से. सदियों से स्कूलों और अटलस में हावी होने वाली दुनिया के नक्शे ने अफ्रीका की छवि उतनी बड़ी नहीं दिखाई है जितनी वो वास्तव में है. कल शुक्रवार 4 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में देशों के एक भारी बहुमत ने इस विकृति को सुधारने के उद्देश्य से एक अफ्रीकी पहल का समर्थन किया. महासभा ने महाद्वीपों के वास्तविक आकार के प्रति अधिक सटीक वैश्विक मानचित्र प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव अपनाया. ये पहल टुगो द्वारा लाई गई थी और इसे अफ्रीकन यूनियन का समर्थन प्राप्त है. ज्यादा जानकारी इस रिपोर्ट में.
6: संयुक्त राष्ट्र ने एक रेजोल्यूशन के जरिए ऐसे नक्शों को बढ़ावा देने की हिमायत की है जो दुनिया के महाद्वीपों का असल क्षेत्रफल ज्यादा सही तरीके से दिखाते हैं. इस अभियान में अफ्रीका का अहम किरदार रहा है. पुराना मर्केटर मैप 16वीं सदी में बनाया गया था जो दिशा निर्धारित करने के लिए बहुत फायदेमंद था, लेकिन इसमें दुनिया के कुछ इलाके खासकर नॉर्थ और साउथ पोल के करीब के मुल्क अपने असल क्षेत्रफल से काफी बड़े नजर आते हैं. इसी वजह से अफ्रीका जैसे महाद्वीप का क्षेत्रफल अक्सर हकीकत से छोटा महसूस होता है. इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन इस मसले को दूर करने की कोशिश करता है. इस मैप में महाद्वीपों के क्षेत्रों को उनके असल क्षेत्रफल के ज्यादा करीब दिखाया जाता है. मिसाल के तौर पर अफ्रीका की बहुत बड़ी हकीकी साइज ज्यादा वाज़े नजर आती है. संयुक्त राष्ट्र में 154 मुल्कों ने मसौदे के पक्ष में वोट डाला जबकि एक देश ने इस फैसले के खिलाफ मत दिया. 6 देशों ने एब्सटेन किया है. टोगो ने इस चुनाव का संचालन किया. टोगो के विदेश मंत्री बताते हैं ये मसौदा अपनाना अफ्रीका और दुनिया के लिए ऐतिहासिक है. इससे इस बात की पुष्टि है कि स्पष्ट और बराबर प्रतिनिधित्व कितना जरूरी है. एक नक्शा एक तकनीकी औजार है लेकिन ये महाद्वीपों और जनताओं के स्थानों के लिए एक अहम बात है. ये रेजोल्यूशन सरकारों, स्कूलों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और टेक्नोलॉजी कंपनियों को हिम्मत देता है कि जब महाद्वीपों के क्षेत्रफल का मुकाबला करना हो तो इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन और दूसरे इक्वल एरिया नक्शे का इस्तेमाल करें.
5: नवंबर में ग्रेड 8 के 200 विद्यार्थी नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन यानी नीस के नए संस्करण में हिस्सा लेंगे. लगभग 2 हफ्ते तक वे एक ऐसे कार्यक्रम का पालन करेंगे जिसमें नागरिक शिक्षा, चरित्र निर्माण, आपात स्थिति के लिए तैयारी और सामुदायिक मित्र

0: राष्ट्रीयता शामिल है। इस परियोजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने नए साल पर जनता को अपने संबोधन के दौरान की थी। ये पहल 2012 में आयोजित पहली एडिशन के 14 साल बाद वापस आ रही है।
1: ये तस्वीरें साल 2012 की हैं। उस समय कुछ स्कूली छात्र नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन में हिस्सा ले रहे थे।
2: Est-ce qu'on peut arriver à diminuer la pauvreté à Maurice?
3: Oui.
4: Est-ce qu'il y a quelqu'un de moi qui était une dating violence?
5: Un copain agresse une copine.
4: Dans une relation, vous êtes capable d'assumer nos responsabilités.
1: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नागरिक मूल्यों, एक दूसरे की मदद और मॉरिशनवाद के प्रति जागरूक करना था, साथ ही उनमें अनुशासन, जिम्मेदारी और समाज के प्रति भागीदारी की भावना विकसित करना भी इसका उद्देश्य था। लेकिन इस पहली पहल के बाद ये कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ सका। चौदह साल बाद सरकार ने अब इस कार्यक्रम को दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। इस बार देश भर से ग्रेड 8 के 200 छात्रों का चयन किया जाएगा। ये नेशनल इनिशिएटिव फॉर सिविक एजुकेशन का एक पायलट प्रोजेक्ट होगा। इन छात्रों का चयन सरकारी अनुदान प्राप्त और निजी कॉलेजों से किया जाएगा। इनमें रॉड्रिक्स और अगालिका के छात्र भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 100 लड़कियां और 100 लड़के होंगे। पहले सप्ताह में छात्र अपने अपने एजुकेशन जोन में स्थित प्रशिक्षण केंद्र में गतिविधियों में हिस्सा लेंगे। दूसरे सप्ताह में रेजिडेंशियल प्रोग्राम होगा। छात्रों को पॉइंट होम यूथ सेंटर और नेशनल कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग सेंटर में रखा जाएगा। इस नए कार्यक्रम के कई प्रमुख हिस्से होंगे। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिसमें मॉरिशस का इतिहास, संविधान और देश की सांस्कृतिक विविधता तथा साझा विरासत के बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद चरित्र निर्माण पर ध्यान दिया जाएगा, जिसमें अनुशासन, ईमानदारी और विवादों को संभालने जैसे विषय शामिल होंगे। कार्यक्रम में समुदाय के प्रति भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके तहत नागरिक संवाद, सामाजिक समावेश और किसी सहयोगी संस्था के साथ मिलकर एक सामुदायिक परियोजना करने का मौका छात्रों को मिलेगा। इस कार्यक्रम के शैक्षणिक ढांचे को तैयार करने की जिम्मेदारी मॉरिशस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को दी गई है।
0: युवा पत्र जो तैयार किया जा रहा है, यानी कप 31 के लिए युवाओं का विचार, जो 9 से 20 नवंबर तक अंताल्या तुर्की में आयोजित होगी। इन विषयों पर दो दिन तक राजीव गांधी साइंस सेंटर में पर्यावरण मंत्रालय, यूथ लीडरशिप काउंसिल और यूनाइटेड नेशन तथा ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के सहयोग से चर्चा की जा रही है। बायोमीमेटिक्स यानी प्रकृति से प्रेरित इंजीनियरिंग किसानों के लिए एक कृषि कैलेंडर और प्रकृति संरक्षण से जुड़े कानूनों की शिक्षा बचपन से ही देना, इस तैयार किए जा रहे टैक्स में पेश किए गए तर्कों का हिस्सा है। रविवार को साब्लनुआ के स्थानीय निवासियों और विदेशी श्रमिकों के बीच झड़पें हुई। इस घटना की विशेष परिस्थितियों से परे एक सवाल ये उठता है कि मॉरिशस के लोग बाहर से आए इन श्रमिकों को किस रूप में देखते हैं, और सबसे बढ़कर ये श्रमिक खुद पर डाली जाने वाली इस नज़र को कैसे महसूस करते हैं, उनके रहने की स्थिति कैसी है। हमने इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है।
1: जिडी कायल मडागास्कर के रहने वाले हैं। उन्हें मॉरिशस में डिलीवरी का काम करते हुए 3 महीने हो चुके हैं। मडागास्कर आई एक कंपनी के जरिए यहाँ आया हूँ। हम सैंपल में रहते हैं। कुल मिलाकर 15 लोग हैं। यहाँ सभी लोग अच्छे हैं। सुपरमार्केट में कुछ कैशियर भी मडागास्कर से हैं। वे कैमरे के सामने बात नहीं करना चाहती। कुछ जगहों पर ग्राहक उनके धीरे काम करने, कभी कभी मुस्कुराकर बात न करने या भाषा की समस्या को लेकर शिकायत करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये एक जरूरत है। यहाँ वृद्ध लोगों की संख्या बढ़ रही है। कुछ लोग यहाँ रहने की आदत आसानी से डाल लेते हैं। सुपरमार्केट से बाहर निकलते समय हमारी मुलाकात नाइजीरिया के रहने वाले फोंक

में से होती हैं। 28 साल की उम्र में वे पिछले 6 साल से वेटर का काम कर रहे हैं। कई मॉरिशियनों से मिलता हूँ, ज्यादातर अच्छे हैं। मुझे मॉरिशस बहुत पसंद है, मेरे लिए ये स्वर्ग है। थोड़ा आगे हमारी मुलाकात वैभव से होती है, दुकान के मैनेजर जो हमारी भाषा अच्छी तरह

0: हैं। जिस तरह उंगलियां एक जैसी नहीं होती, कभी कभी कुछ परिस्थितियां परेशान कर देने वाली होती हैं, लेकिन ज्यादातर समय सब कुछ ठीक होता है। मॉरिशस में काम करना आसान है। कर्मचारियों में दीपाली भी हैं, जो मॉरिशस में पिछले 1.5 महीने से काम कर रही हैं।
1: कि मुझे यहाँ का कल्चर काफ़ी अच्छा लगता है, वेदर बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली यहाँ के लोग। तो मुझे यहाँ पे कभी ऐसा फील नहीं हुआ है कि मैं इंडिया छोड़ के आई हूँ।
0: वहीं अमृता भी विदेशी कामगारों की सेवाओं से संतुष्ट है। कुछ दुकानों में अच्छे से स्वागत नहीं होता, चेहरे में मुस्कुराहट नहीं होती, लेकिन यहाँ अच्छा स्वागत किया गया। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मॉरिशस में 50,000 से ज्यादा विदेशी कामगार हैं। उनके पास काम करने का परमिट या सर्टिफिकेट ऑफ एग्जेम्पशन है। इनकी बढ़ती संख्या से कुछ मॉरिशनों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। उन लोगों की संस्कृति मॉरिशस की संस्कृति से अलग है। हम लोगों की मदद करते हैं, लेकिन उन लोगों की ऐसी मानसिकता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे देशों से यहाँ आए लोगों को मूर्ख समझकर उनका फायदा उठाया जाए। ट्रेड यूनियन के नेताओं का ये कहना है, वे विदेशी कामगारों के आने के साथ उनसे जुड़ी समस्याओं को भी सामने आते देख रहे हैं। तो क्या समाज में विदेशी लोगों के प्रति भेदभाव की भावना की शुरुआत हो रही है, या ज़ेनोफोबिया यानी विदेशी लोगों के प्रति नफरत कहना कुछ ज्यादा होगा? हमें इन लोगों की बहुत जरूरत है, लेकिन उनको क्या सुरक्षा देते हैं, उनकी मदद कैसे करते हैं? यूनिवर्सिटी में प्रवेश करने पर इंडक्शन होता है, लेकिन क्या नौकरी शुरू करने से पहले इन लोगों को एक सप्ताह के लिए मॉरिशस की संस्कृतियों के बारे में समझाया जाता है? उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं, कहां जा सकते हैं, कहां नहीं, इन सब के बारे में उन्हें नहीं बताते? हमारी और सरकार के बीच बैठक के जरिए समाधान ढूंढना चाहिए। पहले जहां विदेशी कामगार ज्यादातर निर्माण और कपड़ा उद्योग तक सीमित थे, वही अब वे कई अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और अब हमें इसके साथ तालमेल बिठाना होगा, क्योंकि आने वाले वर्षों में उनकी संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।
2: मॉरिशस में कुछ पुरानी रेलवे स्टेशन हमारे इतिहास के एक हिस्से को जीवित रखे हुए है। कुछ को पोस्ट ऑफिस में बदल दिया गया है, वे आज भी यादों के स्थान बने हुए हैं, लेकिन साथ ही ऐसे भवन भी है जिन्हें रखरखाव और संरक्षण की आवश्यकता है। मॉरिशस और फ्रांसीसी गणराज्य के बीच सहयोग, जिसकी घोषणा कैबिनेट ने अगस्त में की थी, का उद्देश्य विशेष रूप से मॉरिशस की वास्तुकला विरासत के संरक्षण और संवर्धन को मजबूत करना है, जिसमें इन स्थलों के पुनर्वास और प्रबंधन के लिए एक पब्लिक प्राइवेट संरचना स्थापित करने की संभावना भी शामिल है। कल रात हिंदू समुदाय ने भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया। पूरे टापू पर भक्त इस आध्यात्मिक आयोजन को प्रार्थनाओं, पारंपरिक नृत्य और भक्ति के साथ मनाने के लिए मंदिरों में इकट्ठे हुए। कृष्ण भगवान अभी भी बुजुर्गों और युवाओं दोनों के दिलों और दिमागों में एक विशेष स्थान बनाए हुए हैं। विदेश में नेपाल में भयानक बाढ़ और भूस्खलन के बाद मानवीय सहायता तेज की जा रही है, जिन्होंने देश के कई क्षेत्रों को प्रभावित किया है। हजारों लोग बेघर और प्रभावित हुए हैं। सबसे जरूरी जरूरतों को पूरा करने के लिए यूनिसेफ और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अपने अभियानों को मजबूत कर रहे हैं। देश की खबरों के बाद आइए अब मौसम का हाल सुनते हैं याशना मिश्रा के साथ।
3: हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, आज रात आसमान साफ रहेगा, कल सुबह पूर्वी इलाकों और ऊंचाइयों पर, जबकि दोपहर बाद पश्चिमी इलाकों पर बादल घिरा सकते हैं और हल्की बारिश भी हो सकती है। हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। प्रवालेखा के परे दक्षिण पश्चिम में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लाटो पर 14 से 16, अधिकतम 22 से 24, जबकि तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 18 से 20, अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:15 बजे और शाम को सूर्यास्त 6:02 पर होगा।

0: इसी के साथ ये समाचार समाप्त हुए। इसे आप तक पहुंचाने में हमें फैजान का साथ मिला, उन्हें धन्यवाद कहेंगे। जुड़े रहिए थोड़ी देर में शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: रोड ब्रह्मस्थान में 92 साल की 92 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री आपादू पैदाइशी नाम पापिया जो श्रीमती ताताई मदाम ताताई नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन की उनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे उनके घर रॉयल रोड ब्रह्मस्थान से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए रिश्मा ऑफलाक की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। रॉबिन्सन रिवर लेन क्यूपिप में 74 ईयर्स ओल्ड के श्री बालाल रामेसर जो अनिरुद्ध नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर रॉबिन्सन रिवर लेन क्यूपिप से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिकाहा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 PM। रॉयल रोड लेस्यू सेबास्टोपोल में 51 ईयर्स ओल्ड के श्री दया रामराचा जो ऋषि प्रेसिडेंट नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनके भाई श्री शैलेश रामराचा के घर रॉयल रोड लेसिया सेबास्टोपोल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लेसिया की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। कटकारो स्ट्रीट ओकुले में 37 ईयर्स ओल्ड के श्री केसावन नारायणन जो केसावन नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी कल सुबह साढ़े नौ बजे उनके भाई श्री डॉमेन नारायणन के घर कटकारो स्ट्रीट ओकुले से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पिकाखा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 9:30 AM। गोबिन लेन मेबर्ग में सतीश मैकेनिक के पास 98 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती आपलामा जोगाना जो तौंतिन आपलाम नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनके बेटे श्री आत्मा जोगाना के घर गोबिन लेन मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए टोम्बो मेबर्ग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। धनुष लेन लुओशी तेरोज में 71 ईयर्स ओल्ड के श्री सुपाया उसहाल जो दासन जनता नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, कि मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल सुबह दस बजे उनकी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी उस खाला के घर धनुष लेन लोशे तेरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआ मौशों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 10 AM। शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: You're listening to RM2, a Radio Musti.
2: RM2,
3: Radio Musti.
2: Week-end méga folie, code KDR Electromeub, Rosebel et Beauvalo. Uniquement le samedi 5 et dimanche 6 septembre. Chambre à coucher avec l'homme aux 4 battants, plus Lily Doub, sont aussi 44 500 roupies, Vin 24 500 roupies, et en cadeau, un dressing table pour madame. Air fryer Techwood, 5.3 litres, sont aussi 3 790 roupies, Vin 10 350 roupies. Bundle offer avec Astro.

0: aspirateur, ventilateur, blend Sanford à seulement 4 590 roupies. Ouena, Dizou, oui, Zis, Dizou, pour profite sa ban méga folie deal dans 10 magasins KDR électromeubles à Roseville et Beauvallon, ancien King Savers.
1: RM2 Radio Musti.
2: अजय डोंट माइंड, लेकिन इतना अच्छा मौसम है और तुम इन बीमारियों के अलावा और कुछ नहीं सोचता। गुलफाम साहब के फैन हो, कोई शायरी वायरी नहीं आती क्या?
3: बिल्कुल आती है, सुनो।
2: सुना।
3: अर्ज है, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, दवा भी काम ना आए कोई दुआ ना लगे, मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा ना लगे। आदाब।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

और समझ समझ को समझो, समझते समझते शाम के 6:24 और 35 सेकंड हो चुके हैं। म्यूजिक टक टकाटक रेजो मस्ती पर जारी है।

0: बारिश की बूंदें जब जमीन पर आती हैं सूखे दिलों में भी यादें जगा देती हैं सुखी रहिए और बी हैप्पी ऑलवेज
1: म्यूजिक टकटकाता
2: RM2 रेडियो मस्ती
0: शाम के 6:35 और 50 सेकंड थैंक यू हंसिनी अब तक साथ निभाने के लिए साथ देने के लिए आपके फैन आपको याद कर रही हैं ललिता जी का मैसेज है लवली हंसिनी ये प्रोग्राम आप फुल वॉल्यूम एंजॉय कर रही है और अगला गीत जो है आपके सभी फ्रेंड्स सीमिया लैला मीनू लानिनी यश आश्ले पुरोही माही जिया ललिता एंड जितन फैमिली ऑफ लावोंचिया के लिए थैंक यू जुड़ने और चुनने के लिए स्वागत है आप सबका और RM2 रेडियो मस्ती पर 7 to 9 रात 7 to 9 के बीच एज यूजुअल हमारा शो झंकार बीट्स गेटिंग रेडी स्पोर्ट्स की ढेर सारी खबरें भी पक रही हैं मैं हूं विकास और हूं आपके साथ रात के 9 तक सो स्टे ट्यून्ड टू RM2 रेडियो मस्ती और अपना मैसेज भी भेजते रहिए 5499-1294-5499-1294 पे ये बारिश जो है अक्सर बीते लम्हे याद दिला जाती है
2: RM2 रेडियो मस्ती
1: हिट म्यूजिक ओनली

0: म्यूजिक टकटकाटक
1: RM2 रेडियो मस्ती
2: म्यूजिक टकटकाटक ऑन रेडियो मस्ती RM2 और अभी से लेकर लगभग 15 मिनट बाद हमारा प्रोग्राम शुरू होने वाला है झंकार बीट्स स्पोर्ट्स एंड म्यूजिक प्रोग्राम 7 to 9 एवरी सैटरडे विद मी विकास रामधनी और महफिल सजने लगी है हमारे एक दोस्त की के स्वागत के लिए बता दिया आपको कि 7 to 9 विल बी वेलकमिंग ए फ्रेंड जो स्पोर्ट्स के बहुत बड़े स्पोर्ट्स पर्सन है और स्पोर्ट्स बहुत प्यार करते हैं एंड ही इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस

0: टू यू. आज एक नया खेल जो है, एक नया डिसिप्लिन नोन एज पिक बॉल, ये सब क्या है. और सो वेटिंग फॉर अमरीश. हाई, बात करेंगे 7:30 till 8 एंड आफ्टरवर्ड्स हमारे झंकार बीट्स रेडियो मस्ती और M2 पर खूब सारी बातें करेंगे. और आपकी टीम, हमारी टीम, सबकी टीमें आज खेल रही हैं, कल खेल चुकी है और परसों क्या होगा, सुनते रहिए और देखते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए. और M2 रेडियो मस्ती 5499-1294-5499-1294 पे वेटिंग फॉर योर मैसेजेस.
1: Music, music, tuk-tuk-tuk. RM2, Radio Musti.

0: To Bollywood, Radio Musti.
1: और ये गीत खास तौर पे आपके लिए जिन्होंने ये मैसेज भेजा है, आपकी पूरी फैमिली के लिए, पति लालदेव के लिए, बेटा विक्की, बहू कीर्ति, अवनी एंड क्यूट वंश फ्रॉम सुया बिहारी ऑफ कंगुमा, थैंक यू जोड़ने के लिए और चुनने के लिए. You are tuned to Radio Musti RM2.

0: और आप भी हमारे साथ नितिन भाई, नितिन जंजू सिंह को मॉडल से, जो मासिक शिवरात्रि की तैयारी में लगे हुए हैं, पूरे परिवार को हार्दिक बधाई। और हाँ, हम मिलेंगे ज़रूर, मिलेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। और ये अगला गीत आपकी सिस्टर के लिए है, अच्छा हंसनी के लिए है। सो वेल, अर्शद, बीबी अर्शद के लिए, लॉट्स ऑफ किसेस एंड लव टू रिमाइंड यू दैट यू आर ग्रेटफुल टू हैव यू, आपके बेबी अर्शद इन योर लाइफ, और यू आर माय एवरीथिंग टू मच बेबी रेबेका की ओर से, ये लॉस्ट फॉर द रोड इस प्रोग्राम के लिए।
1: म्यूजिक
2: RM2 Radio Musti
0: आप है तो हम हैं, और हम है तो क्या गम है। सुनते रहिए RM2 Radio Musti, 24 घंटे आपकी सेवा में। कमिंग नेक्स्ट 7 to 9 झंकार बीच।

दोस्ती भी नहीं खोनी है, फ्रेंडशिप नहीं खोना है. सो दिस मैसेज फॉर रानी. हाय रानी बहना, राजा भैया राकेश को भी हाय हेलो कहना. और अगला गीत आप मांग रहे हो उनके लिए, और सब साथ में आपके बेटे वागीश के लिए वैभव एंड वृषभ से की सुनव मेबर्ग, एंड फॉर यू टू. थैंक यू.

0: सभी दोस्तों को सभी फ्रेंड्स को फ्रेंडशिप जिंदाबाद एंड दिस वन अभी आ रहे हैं 729 स्टे ट्यून टू आर एम टू रेडियो मस्ती कमिंग नेक्स्ट
1: रेडियो मस्ती
2: The time is brought to you by
3: McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. I'm loving it.
2: And RKG Classic Pure Cow Ghee.
1: Radio Musti.
2: North, South,
1: 103.5.
2: East, West,
1: 96.4.
2: Center,
1: 99.4.
4: RM2 Radio Musti.
1: Radio Musti.
4: The latest news and the greatest mix of music. Feel the Musti.
0: It's exactly 7 p.m. on Radio Musti.
1: Jhalkar Beats.
4: RM2 Radio Musti.
1: Jhalkar Beats.
0: शानिन कंसर्ट सुन के नाम ये गीत

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junka Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: वादा है कि हम सुन रहे हैं और ख्वाब की बात हुई, सपने की बात हुई, तो ख्वाब देखना चाहिए पर उसे पूरा करने की पूरी ताकत भी रखनी चाहिए। इसलिए ड्रीम बिग एंड फुलफिल योर ड्रीम्स, गो फॉर गोल्ड, है ना। नमस्कार और स्वागतम एक बार फिर, मैं हूँ विकास रामधनी, आपका होस्ट और साथी ऑन द मिक्स विद द झंकार बीट्स एवरी सैटरडे 7 to 9 RM2 रेडियो मस्ती पर। स्पेशल सेगमेंट स्पोर्ट्स और म्यूजिक दोनों को लेकर, अद्भुत संगम यानी खेल और संगीत का, ओनली ऑन रेडियो मस्ती RM2 विद लॉट्स ऑफ फैंटास्टिक न्यूज फ्रॉम द स्पोर्ट्स वर्ल्ड। और आपको बता दें कि आज के इस प्रोग्राम में हमारा एक स्पेशल गेस्ट भी आने वाला है खेल जगत से, अच्छी अच्छी खबरें लेकर, साथ में ग्रेट म्यूजिक, कुछ बातें भी करेंगे। सो एक्सपेक्टिंग अमरीश एट एनी टाइम हमारे स्टूडियो में, स्वागत है आपका। इट्स अबाउट पिकल बॉल इन मॉरिशस, ये सब क्या है और सुनते रहिए और हम आपको सुनाते रहेंगे। पर अभी के लिए प्रीमियर लीग से हॉट रिजल्ट्स, आज का अर्ली किक ऑफ ड्रॉ पर संपन्न हुआ। वी हैव न्यूकासल यूनाइटेड 2 बोर्नमुथ 2। द मैगपाइज अपने ही होम मैदान पे सेंट जेम्स पार्क में 2-0 से हार रहे थे, उसके बाद 2-2 न्यूकासल 2 बोर्नमुथ 2। इस समय 1, 2, 3, 4, 5 मैच खेले जा रहे हैं। वी हैव ए गोल फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी 1 कोवेंट्री सिटी 0, गोल कर्टेसी ऑफ अर्लिंग हैलैंड द सिबोग ऑफ मैनचेस्टर सिटी, खेल के 26वें मिनट पर। सो मैन सिटी 1 कोवेंट्री 0। फुलहम अभी 2-1 से क्रिस्टल पैलेस को हरा रही है और ब्राइटन की हार हो रही है होम मैदान पर, ब्राइटन 0 लीड्स यूनाइटेड 2। और कल शुक्रवार को इस सप्ताह का पहला मैच खेला गया जिसमें लिवरपूल की जीत हुई 2-0 से। सुनते रहिए
1: RM2 Radio Musti

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Junga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: शंकर बीच हर शनिवार की शाम की रात 7 से 9 के बीच हमारे साथ में हूँ विकास और ढेर सारी खबरें हैं फुटबॉल जगत से खासतौर पे इंग्लिश प्रीमियर लीग से लेकिन साथ में बाकी जो चैंपियनशिप है यूरोप भर में वी हैव स्पेन का जो लालीगा है जर्मनी का बुंडेसलीगा इटली का सीरिया फ्रांस का लीग ए सब और मैच खेले जा रहे हैं कल बता दें कि फ्रांस के लीग ए में लगातार तीसरी बार के लिए पेरिस सेंट जर्मेन डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन जीत नहीं पाया कल फिर उसकी हार हुई 2-1 से इस बार मोनाको के खिलाफ फिर स्पेन के लालीगा में भी यूजे मोरिनो को लगा पेन उसकी पहली हार दो प्रथम विक्ट्रीज के बाद कल उसकी हार हुई 1-0 से अगेंस्ट रियल बेटिस इसमें किलियान एम्बापे ने एक पेनाल्टी मिस भी की वो भी इंजुरी टाइम में कितना दर्द दिया कितना पेन दिया यूजे मोरिनो को और कल लिवरपूल फुटबॉल क्लब द रेड्स की जीत हुई लिवरपूल के लाल जीत गए 2-0 से उनकी पहली जीत आफ्टर 2 ड्रॉ मैचेस अंटोनी इराउला की टीम प्रथम 9 मिनटों में 2 गोल बना पाई गोल कर्तेसी ऑफ अलेक्जेंडर इसाक दोनों ही गोल और दोनों ही कोडी गाकपो के डिसाइसिव पास पर इन सब पर बात करेंगे लेकिन अभी फिलहाल बता दें कि वी हैव सम मैसेजेस ऑन 5499-1294-5499-1294 पे This one coming from Yalesh Sham of Suriname और Sham Sham family की ओर से नमस्कार आपको भी और ये अगला गीत आप सुनना चाहते हैं the new version of चुनरी चुनरी आपके लिए और अपनी पूरी फैमिली के लिए सो यस ये हमारे प्रोग्राम में आ गया है एंड दिस वन आपके पति लालदेव के लिए बेटा विक्की बहू कीर्ति अवनी एंड क्यूट वंश फ्रॉम सुय बिहारी फैमिली ऑफ कोंगोमा और अरशद के लिए भी ये अगला गीत एंड दिस वन ग्रेट गोइंग पॉजिटिव लवली वाइब्स ऑन रेडियो मस्ती बेटी फ्रॉम पेची राफवे मैं हूँ विकास यहाँ

0: से एंड थैंक यू फॉर मेकिंग सैटरडे इवनिंग सो ग्रेट। अगला गीत आप डेडिकेट करना चाहती हैं आपकी बेटी परमिता जो इस समय हु हैज लोड्स टू रिवाइज फॉर हर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। हाँ, रिविजन करना चाहिए एंड देयर शुड बी ए प्लान बिकॉज इफ यू फेल टू प्लान देन यू प्लान टू फेल। सो SCO या HSC या कोई भी क्लास हो सबके लिए रिविजन चाहिए। विशिंग हर स्ट्रेंथ एंड पेशेंस एंड बॉन कुआज एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।
1: RM2 Radio Musty.
0: ये गाना है सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में।
2: सदके में हम सब के लिए ये धरती बनाई थी पर मोहब्बत के दुश्मनों ने इस पर लकीरें खींच के सरहदें बना दी। मैं जानता हूं वो लोग तुम्हें इस बार नहीं आने देंगे मगर ये पवन जो तुम्हारे यहां से होकर आई है तुम्हें छू कर आई होगी। मैं इसे सांस बनाकर अपने सीने में भर लूंगा।
0: लाएंगे लाएंगे और ये खाना लाया है वंदना ने।
3: झुककर तुम पानी पिया करते हो मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूंगी। समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लूंगी।

0: रात के साथ बजकर 31 मिनट और 17 सेकंड यू आर ट्यून टू आरएमटी रेडियो मस्ती विद मी विकास रामधनी और ये है झंकार बीट्स आपका अपना प्रोग्राम एवरी सैटरडे इवनिंग 7 टू 9 विद लॉट्स ऑफ व्यूज न्यूज एंड रिव्यूज और साथ में वंडरफुल म्यूजिक के साथ ढेर सारी खबरें स्पोर्ट्स वर्ल्ड से. हमने बताया था आपको कि आज हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट आएंगे और हमारा गेस्ट हमारा जो अतिथि हैं अतिथि देवो भव अतिथि आगे है. वेलकम टू स्टूडियो RM2 अमरीश. थैंक यू आने के लिए जुड़ने के लिए. नमस्कार अमरीश एंड वेलकम टू मॉरिशस. वेलकम टू रेडियो मस्ती RM2.
1: नमस्कार विकास.
0: यस अमरीश नमस्कार एंड आप आए बाहर आए. हम बात कर रहे थे अभी मॉरिशस में पहली बार के लिए हमने सुनने में आया कि एक नया गेम एक नया डिसिप्लिन स्पोर्ट्स डिसिप्लिन तैयार हो रहा है. आप खुद इसको लेकर आए हैं और इतने सालों बाद मॉरिशस वापस लौटे हैं आफ्टर स्पेंडिंग सम 10 इयर्स इन US और देश की पुकार सुनकर अब वापस लौट आए. थैंक यू आने के लिए. अब लौट चलें हम कहते रहते हैं. सो अमरीश बगू आप ऑपरेटर हैं एंड ओनर पिकल बॉल पैराडाइज के ओनर हैं और ऑपरेटर हैं. हमारे जो दोस्त इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या है ये पिकल बॉल और पैराडाइज में आप इसको ला रहे हैं. सो थोड़ा हम जानना चाहेंगे अलोंग विद फुटबॉल आप तो है ही बहुत बड़े फैन लिवरपूल के और मैनचेस्टर यूनाइटेड के भी हमारे बहुत सारे फैन इस समय हमारे सुन रहे हैं. सो वेलकम टू RM2 रेडियो मस्ती अमरीश. चलिए हम जानना चाहेंगे ये पिकल बॉल वास्तव में है क्या.
2: धन्यवाद विकास. दोस्तों अगर आप अभी तक पिकल बॉल के बारे में नहीं सुना है तो समझ लीजिए कि ये एक टेनिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस का एक फन कॉम्बिनेशन है. लेकिन सबसे खास बात है कि ये गेम हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट है. ये स्पोर्ट बहुत इजी टू लर्न है. आपको प्रोफेशनल एथलीट होने की ज़रूरत ही नहीं है. सिर्फ कुछ मिनट्स में आप खेलना शुरू कर सकते हैं. दूसरी बात ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है. आप करते हैं आप खेल करते हैं कैलोरीज बर्न करते हैं और साथ ही अपने हार्ट हेल्थ और फिटनेस को इम्प्रूव करते हैं. पिकोबॉल एक सिर्फ एक गेम ही नहीं है ये एक कम्युनिटी स्पोर्ट है. पिकोबॉल लोगों को कोर्ट पर लाता है जहां लोग मिलते हैं हंसते हैं और एक कम्युनिटी का हिस्सा बनते हैं. हमने पिकलबॉल पैराडाइज शुरू किया है और वेन्यू है रेसिंग क्लब ट्रियानो.
0: थैंक यू अमरीश. थैंक यू इन सब जानकारियों के लिए. बहुत ठीक आपने बताया कि ये टेनिस बैडमिंटन और टेबल टेनिस का एक शानदार कॉम्बिनेशन है. सो इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं है. मतलब कि हार्ड वर्क तो होगा जब आप इसको प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे. व्हाट्स इंटरेस्टिंग अमरीश की ये आप ये जो घीसी पीटी जो डिसिप्लिन होती हैं उनको लेकर आप नहीं आए हैं. एक नया कंसेप्ट है मॉरिशस में जनाने के लिए सबको लाने के लिए. आई एम श्योर अपने प्रोग्राम के दौरान इस पर हम अधिक बात करेंगे. ये पिकल बॉल वास्तव में है क्या. आपने बताया कि ट्रियानो में ये स्थित है. आपका ये सॉफ्ट ओपनिंग भी हो गया है और जब लॉन्चिंग होगी तो हम इन सब के बारे में बात करेंगे. सो स्टे ट्यून टू RM2 रेडियो मस्ती. अमरीश बगू विद अस पिकल बॉल पैराडाइज यहां तक लाए हैं US से लेकर मॉरिशस तक की यात्रा. थैंक यू जुड़ने और चुनने के लिए.
3: RM2 Radio

0: कार बीन्स।
1: You can text me on 5499-1294-549-9294 पे। It's Brentford 1, Sunderland 0, Brighton 1, Leeds United 1, Fulham 2, Crystal Palace 2, Manchester City 1, Coventry 0, और Nottingham Forest 0, Tottenham Hotspur 0, अभी Brentford ने एक दूसरा गोल स्कोर किया। Our number is 5499-1294, हमारे साथ आज है स्टूडियो में अमरीश बगू, पिकल बॉल पैराडाइज से।

0: Paradise.
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Drunkard Beats.
0: RM2, Radio Musti.
2: बैक टू स्पोर्ट्स न्यूज और प्रीमियर लीग के अंतर्गत अभी जो पांच मैच खेले जा रहे हैं वे अपनी समाप्ति पे है और 5-6 मिनट मैच समाप्त हो जाएंगे. लेटेस्ट अपडेट आपको देंगे. सो ब्रेंटफोर्ड 1-0, एक गोल मना कर दिया गया. ब्राइटन 1-1. फुलहम की हार हो रही है बी क्रेवन कोटेज में. फुलहम 2-3. जोस किंग एंड सेजा पलासियोस फॉर फुलहम. ट्रियोक मिचेल का एक डबल. बेन चिलवेल आल्सो ऑन टारगेट फॉर क्रिस्टल पैलेस. मैन सिटी लीडिंग 1-0 अगेंस्ट कोवेंट्री. और नॉटिंघम फॉरेस्ट 0 टोटनहम हॉटस्पर 0. रात 8:30 आज हल सिटी का मुकाबला एस्टन विला से है. और बता दें आपको कि कल संडे को दो महा मैच खेले जाएंगे. सबसे पहले एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड कल शाम 5:00 और उसके बाद कल रात 7:30. नॉट टू मिस किसी भी हालत में द लंदन डर्बी. इस सीजन का पहला क्लासिक मुकाबला बिटवीन आर्सेनल एंड चेल्सी यानी आर्टेटा वर्सेस क्साबी अलोंसो. देखते रहिए और सुनते रहिए. सो अमरीश पिकल बोल पराडाइज से सीधा रेडियो मस्ती RM2 के स्टूडियो में आने के लिए एक बार फिर शुक्रिया. अमरीश हमारे जो दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वे जानना चाहते हैं कि ये पिकल बोल का जो आइडिया है ये कहाँ से आया. क्या है कि ये नया है मॉरिशस में. इसको अभी और जानना है, बताना है, खेलना है, खिलवाना है. सो अमरीश आइडिया ये कहाँ से उत्पन्न हुआ.
3: काश आप जानते हैं कि मैं 10 साल से US में काम कर रहा था और फिर एक दिन वन फ्रेंड केम टू मी एंड उसको ने इनवाइटेड मी. उसने बुलाकर और मुझे बताया चलो खेलते हैं. और ये स्पोर्ट है, ये एक क्रेज बना मेरे लिए. तो मैं कोचिंग के लिए फ्लोरिडा गया था और मैं एक सर्टिफाइड कोच हूँ पिकल बोल के. ये मैं एक स्पोर्ट जो लाना चाहता हूँ. तो आइए और मजा लीजिए.
2: अच्छा मान लीजिए अमरीश किसी को भी खेलना है उसको चाहिए क्या खेलने के लिए. टू स्टार्ट
3: कोई फिटनेस लेवल नहीं चाहिए, कोई एथलीट की कैपेसिटी नहीं चाहिए. जब आप आइए तो मैं कोचिंग सेशन दे दूंगा और फिर आप स्टेप बाय स्टेप ये खेल को जान लीजिएगा और फिर आप एक फुल मैच खेल सकते हैं.
2: अच्छा वो टूल क्या है जैसे फुटबॉल से तो खेलते हैं. हाँ, जूते से पहनकर. हाँ, खेलते हैं. हाँ, ये टेनिस खेलते हैं रैकेट लेकर. हाँ, ये पिकल बॉल किससे खेलते हैं.
3: हाँ रैकेट से ही खेलते हैं. ओके ये ज्यादा ये वेरी वेरी लाइट है. 8 ounces है और एक प्लास्टिक बॉल है जो इसमें 40 holes है. ओके और ये वेरी लाइट है और आप आसानी से खेल सकते हैं.
2: मतलब कि एक मैदान पिच होता है उसमें. हाँ, दो साइड होते हैं. हाँ, और कितने खिलाड़ी इसमें खेल सकते हैं.
3: मैक्सिमम 4 खिलाड़ी. आप सिंगल्स खेल सकते हैं और डबल्स भी खेल सकते हैं.
2: और एक एक एक बस याद आ रहा है कि एक पैडल नाम का एक स्पोर्ट्स सुना है. कुछ लोग हमारे यहाँ खेलते भी है. क्या उसमें कोई है सिमिलैरिटी.
3: सिमिलैरिटी है. चार लोगों सिंगल्स और डबल्स खेल सकते हैं और जो डिफरेंस है वो स्क्वाश का एलिमेंट है. ओके जो एक विंडो है जो पेन ग्लास पेन है स्क्वाश में तो वो पैडल में है. मगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है. जस्ट ये स्क्वाश का एलिमेंट है पैडल में कंपेयर टू पिकल बॉल.
2: अच्छा सो इस पर भी फिर से बात करेंगे. अमरीश इंटरनेशनल लेवल पर आपकी टीम कौन सी टीम है आपकी. थोड़ा उस पर भी बात करें.
3: हाँ लिवरपूल तो मेरा आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ लिवरपूल. तो आप भी तो लिवरपूल फैन.
2: अरे मैंने कुछ नहीं कहा. कल लिवरपूल की जीत हुई 2-0 से. इट्स फर्स्ट विन 3 मैचों के बाद. हाँ, 2 draws और 1 हाँ, जीत. और कल जो है कमाल का जो खेल था फर्स्ट 9 मिनट में 2 goals और होना चाहिए था और वो भी अलेक्जेंडर इसाक की ओर से एंड 2 decisive passes फ्रॉम कोडी गाको जो जाने वाला था.
3: हाँ मैन सिटी
2: लेकिन रह गया. चलिए वो हम जो माहौल है एटमॉस्फेयर हम आप तक लाते हैं.
4: गाको गेट्स पोजेशन बैक फॉर द रेड्स. इट्स अ गुड बॉल एज़ वेल टू अलेक्जेंडर इसाक हु नीड्स नो सेकंड इनविटेशन.

on 5499-1294-5499-1294 पर विशाल फ्रॉम फोंजीसाक कह रहे हैं कि इट्स बीन नियरली 20 इयर्स 20 सालों से आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और थैंक यू सुनने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए यूनाइटेड वाज रॉकिंग ड्यूरिंग दैट ईरा अभी भी रॉक कर रहे हैं बट यू हैव दो यू आर स्काउजर अच्छा रिस्पेक्ट टू योर प्रोग्राम एंड टू योर टीम थैंक यू विशाल फ्रॉम फोंजीसाक हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना मैसेज भेजते रहिए दिस वन कमिंग फ्रॉम किसकी ओर से स्वीट लिटिल प्रिंसेस काइना के लिए हुई सेलिब्रेटिंग हर 14th बर्थडे टुमारो इन जस्ट फ्यू आवर्स अच्छा बेस्ट विशेस टू अवर परी बेटी फ्रॉम मामा वनीशा पापा राजीव एंड लिटिल भैया रिवान आप हैं मोताई ब्लांश से और आपने कौन सी फिल्म का गाना मांगा है ये है बेटी की ओर से थैंक यू 5499-1294-5499-1294 पर और फुल टाइम रिजल्ट अभी आने वाला है

0: Ladies and gentlemen,
1: listening to RM2 Radio Musty.
2: रात का 8:00 साथ में तो और 20 सेकंड यू आर ट्यून्ड टू आरएम ट्यू रेडियो मस्ती। यह है प्रोग्राम झंकार बीट्स हर शनिवार की रात 7 से 9 के बीच। आज हमारे स्टूडियो में एक स्पेशल गेस्ट है अमरीश बगू, जो पिकल बॉल पैराडाइज से यहां पर आए हुए हैं और इन सब पर जानकारी दे रहे हैं। साथ में इंग्लिश फुटबॉल को लेकर भी हम इन पर टिप्पणी करेंगे, कमेंट्स करेंगे। सो आज भी टोटनहम हॉटस्पर की जीत नहीं हो पाई, आज दो लॉसेस के बाद आज एक मैच ड्रॉ गया। सो नॉटिंघम फॉरेस्ट 0 टोटनहम हॉटस्पर 0। मैं आपको फुल टाइम रिजल्ट्स दे रहा हूं। आज का जो पहला मैच था उसमें न्यूकासल यूनाइटेड और बोर्नमुथ ने मैच ड्रॉ किया 2-2। ब्रेंटफोर्ड 1 एंड फाइनली संडरलैंड आल्सो 1 मैच ड्रॉ गया। ब्राइटन भी 1, लीड्स यूनाइटेड 1। फुलहम की हार हुई हो मैदान पे, फुलहम 2 क्रिस्टल पैलेस 3। मैनचेस्टर सिटी की जीत हुई, इट्स 1 फॉर मैन सिटी एंड 0 फॉर कोवेंट्री सिटी, गोल कर्टेसी ऑफ अर्लिंग हैलैंड। और नॉटिंघम फॉरेस्ट 0 टोटनहम हॉटस्पर 0। आज रात 8:30 बजे हल का मुकाबला एस्टन विला से, और कल संडे को दो महत्वपूर्ण मुकाबले, सबसे पहले शाम 5 बजे एवर्टन वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड, और चेल्सी का मुकाबला कल एवो मैदान पे आर्सेनल से होगा, द ग्रेट लंदन डर्बी। ये दो मैच कल के लिए निर्धारित है। अमरीश, पिकल बॉल को थोड़ी देर के लिए छोड़कर फुटबॉल की बात करें, टोटनहम हॉटस्पर ने आज फिर अपना मैच, मतलब कि आज अपना मैच ड्रॉ किया प्रथम दो मैच हारने के बाद। आपकी इसमें कोई ओपिनियन है, कोई क्या राय है आपकी?
3: धन्यवाद विकास। या टोटनहम तो हर किसी को बाय कर देता है, 100 मिलियन 120 मिलियन, उनको उन्हें
2: काफी पैसे उसने खर्च किए बार।
3: हाँ हाँ हाँ, टोनाली और मैथ्यूस फर्नांडिस और हुबर्टसन को भी लिया है लिवरपूल से। दिस इज व्हाई पीपल टेल यू मनी इज नॉट एवरीथिंग, तो पैसे सब कुछ नहीं है, तो टीम खेलना
2: टीम को बनाना है।
3: हाँ, टीम को बनाना है
2: और अच्छे खिलाड़ी होंगे, अपने अपने तरह से खेलते हैं, लेकिन एक टीम के रूप में खेलना, दैट्स अनदर स्टोरी।
3: एग्जैक्टली।
2: अमरीश, पिकल बॉल पैराडाइज पर वापस लौटते हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो पिकल बॉल है जो नया आया है मॉरिशस में, आप खुद इसको लाए हैं, क्यों ये पॉपुलर हो रहा है या हो सकता है? ये
3: विकास, ये एक बहुत खूबसूरत बात है ये कि पूरी फैमिली साथ में खेल सकती है। नॉर्मली स्पोर्ट्स में आज एज या फिटनेस लेवल का डिफरेंस बन सकता है, लेकिन पिकअबॉल में दादा दादी, पेरेंट्स और बच्चे एक ही कोर्ट में साथ खेल सकते हैं और सबको इक्वली मजा आता है। ऑल्सो एज यू नो, फैमिली बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग बना देती है।
2: हाँ, ये बड़ी बात है अमरीश, कि फैमिली के साथ खेलना, अक्सर हम देखते हैं कि कभी

0: केवल एक मेंबर ऑफ फैमिली जाता है फिर बाकी सब घर पर रहते हैं लेकिन साथ में बता रहे हैं आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग कि पूरी फैमिली के साथ आराम से आप खेल सकते हैं नो हार्ड वर्क इतना भी हार्ड वर्क तो नहीं है इसमें ना
1: नहीं नहीं काफी आसान है
0: सब बच्चे भी खेल सकते हैं
1: बच्चे
0: बूढ़े भी जवान भी एडल्ट सब लोग एक साथ मिलकर खेल सकते हैं अमरीश थोड़ा सा बता दीजिए कि कहां पर खेलना है कहां पर आना है क्या करना है यदि हम खेलना चाहते हैं तो

0: रेसिंग क्लब त्रियानो में है. ओके तो आप आइए, मजा लीजिए, और व्हाट्सएप नंबर है, और फिर पेमेंट का कोई ज़रूरत नहीं है. आप आइए, हम दो सेशन 1.5 hours फ्री में दे रहे हैं कोचिंग के साथ. तो आप आइए, मजा लीजिए दो सेशन, और फिर जो आप आएंगे तो फिर खेलते और देखिए कि ये एक गेम है, बहुत मजा आ रहा है.
1: अच्छा, फिर से बताइए तो इसका जो फेसबुक पेज है, पिकल बोल, PICKLE.
0: यस, मॉरिशस पिकल बोल, अचार पिकल बोल.
1: अच्छा,
0: PICKLE पिकल बोल पैराडाइज. आप फॉलो कीजिए, सब इंफॉर्मेशन वहां पर है, और आप चाहिए तो कॉल कर सकते हैं, फोन नंबर वहां पर है.
1: थैंक यू.

0: Ladies and gentlemen, you are listening to Chunga Beats.
1: RM2, Radio Musti.
2: बैक टू झंकार बीट्स और बीटिंग हो गई है अभी फुटबॉल जगत में इंग्लिश प्रीमियर लीग में सब मैच समाप्त हो गए हैं एक मैच बचा है भी रात 8:30 बजे के लिए और टेनिस में यूएस ओपन प्रतियोगिता जारी है आज अभी से कुछ ही मिनट पहले जो दो बहनें हैं सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स आई थिंक 43-41 ये ओल्ड के हो गए हैं और ये लोग आज ये जोड़ी खेल रही थी वुमेन्स डबल के राउंड ऑफ 64 में दे लॉस्ट अगेंस्ट हाउ चिंग चान एंड माया जॉइंट 6-3, 7-6 और 7-6 से यानी कि एक सेट दोनों जीत भी पाई 7-6 सेरेना विलियम्स एंड वीनस विलियम्स गुड गोइंग लेकिन वुमेन्स डबल से ये दोनों बाहर हो गई हैं बेन शेल्टन ने आज 7-6, 6-7, 6-3 और 6-4 से हरा दिया है डेनी शापोवालोव को एंड देन वी हैव सम अदर मैचेस टेलर फ्रिट्ज इस समय खेल रहा है फ्रांसिस्को सेरुंडोलो के विरुद्ध और रात को कोकोगाव का मुकाबला क्रिस्टिना ब्यूक्सा से है राउंड ऑफ 32 में आपको बता दें कि कल फ्राइडे को वर्ल्ड नंबर वन एंड डिफेंडिंग चैंपियन कार्लोस अल्काराज की जीत हुई चाइना के यिबिंग वू के विरुद्ध 6-3, 6-4 और 6-1 से और कार्लोस अल्काराज 139 दिन बाद 139 डेज की इंजुरी के बाद वापस लौटा है कोर्ट पर और उसकी जीत हुई एंड डे बाय डे उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता जा रहा है सो कार्लोस अल्काराज इज डूइंग ग्रेट जबकि वर्ल्ड नंबर 2 यानिक सिनर इस टूर्नामेंट से आउट है वो अभी तक इंजुरी से जूझ रहा है सो वी हैव अमरीश विद अस पिकल बोल पैराडाइज से और अमरीश लास्ट फ्यू वर्ड्स इस पिकल बोल को लेकर होपफुली हम भी खेलने आएंगे और ये नया गेम जो है कोशिश करनी चाहिए और इसको कम से कम ट्राई तो करना चाहिए एंड यू आर वेलकमिंग एवरीबॉडी ये सब के लिए है ये गेम अमरीश
3: थैंक यू विकास तो दोस्तों याद रखें हमारा वेन्यू है रेसिंग क्लब ट्रियानो एक फंटास्टिक लोकेशन जहां बिगिनर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर्स दोनों वेलकम हैं अगर आपने कभी भी पिकल बॉल ट्राई नहीं किया तो ये परफेक्ट टाइम है कोर्ट पर आइए पैदल उठाइए और खुद एक्सपीरियंस कीजिए कि दुनिया भर में लोगों पिकल बॉल के दीवाने क्यों हो रहे हैं
2: या थैंक यू आएंगे बुला रहे हैं तो इतने प्यार से हम आएंगे ज़रूर और दोस्तों से भी उम्मीद करेंगे कि वो जाएंगे और एक नया जो गेम है नया डिसिप्लिन है इनको करने की कोशिश करें क्या कि एक फैमिली गेम है और फैमिली इज़ एवरीथिंग आजकल सब साथ साथ जब होते हैं तो हम सब साथ साथ हैं और अमरीश बगू फ्रॉम पिकल पैराडाइज से होकर रेडियो मस्ती और RM2 के स्टूडियो में आप आए बाहर आए और थैंक यू जुड़ने और चुनने के लिए आप आते रहिए और आपका जो नया डिसिप्लिन है वो आसमान को छू जाए हमारी यही आशा है और जाने से पहले अमरीश कोई डेडिकेशन खास तौर पे कोई फ्रेंड कोई दोस्त कोई फैमिली मेंबर्स के लिए
3: हाँ विकास लंबी लिस्ट है तो फर्स्टली मेरी पत्नी है काजल
2: भाभी को प्रणाम
3: जुड़वा भाई वशीष बड़े भाई संदीप माँ और मवेन लो और फिर खास दोस्तों मेविन स्टीव गिरीश आगुलेन और अमित थैंक यू
2: अमरीश बागू पिकल पैराडाइज बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए रात्रि के समय 8:32 आप बढ़कर 23 मिनट हो चुके हैं और आप हमारे साथ अभी यहाँ पर हैं और सब जनता तक ये जानकारियाँ पहुँचाने के लिए साथ देते रहिए हम भी साथ साथ हैं और बोलेगा नहीं रेडियो मस्ती और RM2 24 घंटे आपकी सेवा में आप खेलते रहिए और सुनते रहिए थैंक यू अमरीश हमारे साथ देने के लिए
0: RM2
1: रेडियो मस्ती
4: Un September to remember chez Your Dream Motors nous réunit avec nos 4e édition Oui, vous êtes bien attendez. Nos plus grandes promotions pour l'année 2026 commencent jeudi 3 septembre jusqu'à dimanche 6 septembre. Pour un gros discount, le tout nous bat le tout. Que tu aies du motos, nous croyons que chaque dimanche mérite rouler sur le tout de rêve. Peu importe qui au budget et préférence. Ou péro d'un SUV, un petit loto, un 4x4, voiture de luxe, ban plug-in hybrid ou même 100% électrique, nous avons tout. Des 9h jusqu'à 5h tantôt, les 3 septembre au 6 septembre. Top 10 à ban prix. prix imbattable. Côté Your Dream Motors, nous fait ou rêve une réalité. Royal Road Mocha, 55 32 86 12, 55 05 86 12 et 433 80 26. Pas oublier, suivez-nous sur Facebook et TikTok.
0: RM2
1: Radio Musty.
0: Jungle Beats.
1: RM2 Radio Musty.
0: Jungle Beats.

0: और कितनी मोहब्बत करूं। बड़ा गहरा मैसेज है। ऑनली ऑन रेडियो मस्ती और एम ट्यू झंकार बीट्स।
1: Ladies and gentlemen, you are listening to Jhankar Beats.
2: RM2, Radio Musti.
0: इंग्लिश प्रीमियर लीग के लगभग सभी मैच आज समाप्त हो गए। इस समय खेल का ये पांचवा मिनट है। हल सिटी वर्सेस एस्टन विला, इट्स ऑफ कोर्स 0-0। इससे पहले आपको बता दें एक बार फिर फुल टाइम रिजल्ट। नॉटिंघम फॉरेस्ट 0, टोटनहम हॉटस्पर 0, मैनचेस्टर सिटी 1, कोवेंट्री सिटी 0, फुलहम 2, क्रिस्टल पैलेस 3, ब्राइटन और लीड्स ने मैच ड्रॉ किया 1-1, ब्रैंडफोर्ड भी 1, सन्डरलैंड 1 और न्यूकासल यूनाइटेड 2, बोर्नमुथ 2। ब्राइटन की बात हुई तो बता दें कि इस समय हमारे साथ ब्राइटन यूके से जुड़े हुए हैं एक हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स दोस्त हैं। सो ए वेरी स्पेशल हाई एंड ए वेरी स्पेशल सॉन्ग डेडिकेटेड ऑन बिहाफ ऑफ पापा दीपक। हाई दीपक, लिसनिंग राइट नाउ फ्रॉम ब्राइटन यूके। आपकी टीम ने आज मैच ड्रॉ किया, कोई नहीं, कम से कम ड्रॉ तो

0: किया और प्रथम मैचों में उसकी जीत भी हुई थी. सो दीपक ये गाना अपने लवली फैमिली के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए. आप हैं कियान, वी हैव विशिक, गिरिक एंड सिया, और विदाउट फॉरगेटिंग भाभी देविका के लिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स. थैंक यू दीपक यूके से जुड़ने के लिए, ब्राइटन से, राइट फ्रॉम देयर एंड आरएमटी रेडियो मस्ती पर. बता दें कि अनेश भी, हमारे कजिन अनेश भी आजकल मॉरिशस में है फ्रॉम कनाडा. सो हाय अनेश, पूरी फैमिली को भी हाय हेलो. आपके मोनीश और पल्लवी को भी एक बिग हाय फ्रॉम द होल टीम ऑफ रेडियो मस्ती और एमटू. एक मुलाकात जरूरी है ऑन 5499-1294-5499 1294 पे. आपके मैसेज आते रहें, लाते रहें और सुनते रहें.
1: झलकार बीट्स
2: RM2 रेडियो मस्ती.
1: झलकार बीट्स,
0: इट्स ए स्पेशल बीट From Deepak to his kids and unki wife ke liye. From Mauritius to UK. Across the world. 24 ghante aapki seva mein. RMTU Radio Masti.

0: झुमका
1: झुमका बीट्स RM2 रेडियो मस्ती
0: झुमका बीट्स

इस जिंदगी के सफर में थकान बहुत है, अपनों के अपनों पर यहां इल्जाम बहुत है, शिकायतों का दौर देखता हूं तो थम सा जाता हूं, लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत है।

0: Ladies and gentlemen, you are listening to
1: Chunga Beats.
2: RM2, Radio Musti.
3: टाइम कह रहा है कि भागना है, खबरें बहुत देने को हैं और समय समय रात के 8:48 और 34 सेकंड हुए हैं। यू आर चून चू रेडियो मस्ती और M2 विद मी विकास रामधनी। पिकल बॉल मॉरिशस जरूर खेलेगा, अमरीश ने साथ दिया, उसको हम कहेंगे थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ सक्सेस टू यू एंड योर फैमिली अमरीश। साथ में वशिष को भी, ब्रदर वशिष को भी हाई हेलो कहना। वी हैव नो न्यू रिजल्ट, हल सिटी 0 एस्टन विला 0। खेल का ये 17वां मिनट है। स्पेन के लालिगा में एथलेटिक ने फुल टाइम रिजल्ट के बाद एथलेटिको मैड्रिड को 3-0 से हराया। इटली के सीरिया में 1 फुल टाइम रिजल्ट, फ्योरेंटिना 1 टोरिनो 2। इस समय इंटर मिलान और नापोली बीच मैच ड्रॉ चल रहा है, 0-0 इट्स हाफ टाइम। जर्मनी के बुंडेसलीगा में 5 मैच समाप्त हो गए, फुल टाइम रिजल्ट, बायर लेवरकुसेन 4 यूनियन बर्लिन 0, बोरुशिया मोंचेनग्लादबाख 3 एल्वेसबर्ग 4, होफाइनहाइम की हार हुई, होफाइनहाइम 2 बोरुशिया डॉर्टमुंड 3, पादेबोन 0 फ्रीबर्ग 1 और वर्डर ब्रेमेन ने आज आरबी लाइपजिग को 3-0 से हराया। इस समय शाल्के 04 और बायर्न म्यूनिख के बीच मैच चल रहा है, 17 मिनट बाद इट्स स्टिल 0-4 शाल्के 04 एंड 0-4 बायर्न म्यूनिख। फ्रांस के लीग 1 में 76 मिनट के बाद रेसिंग क्लब दे लांस 0-0 और लोरियन 1, ले हाव वर्सेस ब्रेस्ट, निस का मुकाबला बाद में ले मंस से होगा। बता दें कि कल पार्क दे प्रिंस में डिफेंडिंग चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन की हार हुई, मोनाको ने उसे 2-1 से परास्त किया और शुरुआती तौर पर प्रथम 3 मैचों में पेरिस की जीत नहीं हुई है, 2 ड्रॉज के बाद कल उसकी हार हुई। ब्राडली बाकुला चला आया है लिवरपूल में, कल वो सेकंड हाफ में कम से कम 25 मिनटों के लिए वो खेल भी पाया। सो वी हैव सम न्यूज, लोकल न्यूज भी आपको देनी ही है ये न्यूज। कौन सी न्यूज है? सो लोकल स्तर पर कल रविवार शाम, संडे की शाम 3:25 पर द क्लासिक ऑफ ऑल क्लासिक रेसेस शॉनिवास में घुड़दौड़ सीजन की सबसे प्रतिष्ठित रेस द फिनिक्स मेडन कप 2400 मीटर पर ये रेस दौड़ी जाएगी और इसमें एक से बढ़कर एक घोड़े भाग लेंगे, सबके सब जो हैं इसी रेस को कप जीतना चाहते हैं। सो वी हैव द लाइक्स ऑफ फ्यूचर स्विंग, गुड काउंसिल,

रैपिडैश आदि घोड़े एकदम तैयार है ये मेडन कप लेने के लिए। सो कल लगभग 3:25 पर द फेनिक्स मेडन कप शॉन्डीमास में। और बता दें कि क्रिकेट में भी आइलैंड क्रिकेट एक्स्ट्रावेगेंजा का जो के जो दो सेमीफाइनल मैच हैं वो कल के लिए निर्धारित हैं। सबसे पहले मापू के एसएसआर ग्राउंड में कल सुबह 9 कंटिनेंटल चीताज का मुकाबला वन हेल्फ जागुआर से है, और कल ही 1 कैम्बर्स अब्रोड लायंस का मुकाबला थॉमस कुक टाइगर्स से। एंड देयरफॉर 5499-1294-549-9129-4 पे दिस वन फॉर दृष्टा ऑफ सुदना कतरबोन, जो एक संगीत प्रेमी है, अच्छे अच्छे गीतों की कदर करती है और ड्राइव करते समय रेडियो मस्ती के साथ जुड़ी रहती है, सुनती रहती है और सुन रही है। सो दिस वन फॉर यू दृष्टा ऑन बिहाफ ऑफ रेडियो मस्ती और M2।

Lost for the road. रात के 8:55, 56:06 हो चुके हैं. सो जुड़ने और चुनने के लिए थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी आपकी. अगले सप्ताह फिर मिलेंगे 7 to 9 रेडियो मस्ती विद मी विकास रामधनी झंकार बीट्स पर. कल सुबह 7:30 AM शार्प विद मोर न्यूज व्यूज एंड रिव्यूज आपके लेटेस्ट स्पोर्ट्स अपडेट में. एंड द लास्ट मैसेज ऑन 5499-1294 ये है शिमला की ओर से, आपकी बहन उर्वशी के लिए, मम्मी अनीता, आपके होल फैमिली एंड हमारी टीम के लिए थैंक यू. थैंक यू अमरीश एंड पिक अ बॉल, मॉरिशस हैज ऑलरेडी पिक्ड अप. शुभ रात्रि, सबाल खैर, फिर मिलेंगे, बाय बाय.

0: Welcome to RM2
1: Radio Musty.
2: North, South,
1: 103.5,
2: East, West,
1: 96.4,
2: Center,
1: 99.4.
0: RM2 Radio Musty.
1: Radio Musty.
0: The latest news and the greatest mix of music. Feel the musty.
3: रात के ठीक 9 बजे हैं.
1: Late Night Grooves.
0: RM2 Radio Musty.
1: Wishing all of you a very good evening. Namaskar, Jyar Ganesha ka pranam. Kaise ho mere pyare pyare listeners? I really hope ki aaj ka din aapke liye acha raha hoga. Lekin filhal ke liye hum aa gaye hain on RN2 Radio Musti in your late night grooves. Aapka saath dene ke liye. Bilkul ji, raat ka sukoon, halki si hawa aur ek beautiful Bollywood romantic gaane. Bilkul. क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ना. वेलकम टू योर लेट नाइट ग्रूव्स. वैसे ये वक्त है थोड़ा स्लो होने का, अपने थॉट्स को सुनने का और खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताने का. तो रिलैक्स कर लीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अपने रेडियो का और रात को म्यूजिक के साथ फील कीजिए.

वैसे दोस्तों कभी कभी हमें किसी स्पेशल रीजन की जरूरत नहीं होती है खुश होने के लिए. एक अच्छा गाना, एक कप चाय, थोड़ा सा शांति यानी कि मेंटल पीस, बस इतना ही काफी होता है. सो टुनाइट डोंट थिंक टू मच, जो हुआ उसे जाने दीजिए, जो आना है उसका इंतजार कीजिए और इस ब्यूटीफुल गाने के साथ एंजॉय कीजिए योर लेट नाइट ग्रूव्स. और ये हमारी तरफ से हम डेडिकेट करना चाहेंगे तमाम म्यूजिक वालों के नाम जो बड़े प्यार से, शिद्दत से हमारा साथ दे रहे हैं.

वैसे आप जो भी कर रहे हैं ना इस वक्त, ड्राइविंग, रिलैक्सिंग, स्क्रॉलिंग ऑन योर मोबाइल या बस आंखें बंद करके म्यूजिक सुन रहे हैं, थैंक यू फॉर स्पेंडिंग दिस ब्यूटीफुल लवली टाइम हमारे साथ, यानी कि गिनिशा के साथ ऑन आवर इनटू रेडियो मस्ती। वैसे गाइस, हमेशा याद रखिए कि लाइफ ना हमेशा परफेक्ट नहीं होती है, बट एवरी डे gives us another reason to smile. तो बस फिलहाल के लिए आप स्माइल कीजिए और म्यूजिक को दिल तक जरूर जाने दीजिए।

मैंने क्या खूब कहा है कि प्यार सिर्फ किसी और को पाने का नाम नहीं है, प्यार सिर्फ किसी और पाने का नाम नहीं है मेरे दोस्त, प्यार खुद को समझने का भी नाम है। खुद को टाइम देना, अपनी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना और अपने दिल को अननेसेसरी

हर्ट से प्रोटेक्ट करना भी प्यार है तो टुनाइट थोड़ा प्यार खुद से भी कीजिए यू डिजर्व इट दिस इज योर लेट नाइट ग्रूव्स हैपनिंग ऑन आर एन टू रेडियो मस्ती

गाने सिर्फ सुने नहीं जाते हैं मेरे दोस्त, फील किए जाते हैं। एक मेलोडी बजती है और सडनली कोई पुरानी याद, कोई चेहरा, कोई ब्यूटीफुल मोमेंट आंखों के सामने आ जाता है। शायद इसीलिए म्यूजिक इतना स्पेशल होता है सबके लिए। तो जरा याद कीजिए, तो जो याद आए उसे स्माइल के साथ याद कीजिए और इस रोमांटिक मेलोडीज के साथ खो जाइए।

0: लेट नाइट ग्रूव्स
1: RM2 रेडियो मस्ती।
2: आज का दिन चाहे कितना भी डिफिकल्ट रहा हो, रिमेम्बर वन थिंग ऑलवेज, इट्स ओवर। अब रात आपकी है, स्ट्रेस को साइड में रखिए, फोन जो है ना थोड़ा दूर रख लीजिए और अपने माइंड को रिलैक्स होने दीजिए। कल एक नया दिन है, एक फ्रेश बिगिनिंग जरूर होगा सबके लिए। बट टुनाइट जस्ट ब्रीथ, रिलैक्स एंड एंजॉय द नेक्स्ट ट्रैक ऑन RM2 रेडियो मस्ती इन योर लेट नाइट ग्रूव।

कभी-कभी हम लाइफ में इतना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि भूल जाते हैं कि हम ऑलरेडी कितना कुछ अचीव कर चुके हैं, है ना? So tonight, instead of thinking about what you don't have, think about everything जो आपके पास है. Be grateful, be proud of yourself. और इस beautiful song को dedicate हम करना चाहेंगे आपके नाम. Thank you so much for being a part of this beautiful सफर, यानी कि it's your late night grooves किनिशा के साथ on RM2 Radio Masti.

अगर आज किसी ने आपको हर्ट किया है ना, तो उसे प्लीज साइड में रख दीजिए। प्लीज उस हर्ट को अपने दिल में लेकर मत सोइए। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता है। कभी कभी पीस चूज करना सबसे स्ट्रॉन्ग आंसर होता है खुद के लिए। लेट इट गो, ब्रीथ एंड चूज योरसेल्फ। आप सुन रहे हैं लेट नाइट ग्रूव्स, जहां पे हम चुन चुन कर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे गिने चुने नगमे जो सीधे जाकर आपके दिल पर लग ही जाते हैं। तो बस आप एंजॉय कीजिए, गुनगुनाइए हमारे साथ इन योर लेट नाइट ग्रूव्स।

रात का एक अलग ही मैजिक होता है दिन की भीड़ खत्म होते ही आवाजें कम होती हैं और हम अपने ही ख्यालों के साथ रह जाते हैं तो अगर आज रात आप थोड़ा इमोशनल है ना दैट्स ओके Feel your feelings, but don't let them define you. Better days are coming, so stay hopeful. और यूं ही हमारा साथ देते रहना on our into Radio Masti. That's your number one radio station, जहाँ पे आपके मनपसंद गानों को लेकर आते हैं हम.

मेरे दोस्त एक बात याद रखिए, जो इंसान आपको genuinely चाहता है ना, वो आपको confuse नहीं करेगा. Love should bring peace, respect and happiness. So never, never ever settle for something that constantly makes you question your worth. आप precious हैं, आप important हैं, और आज रात का ये गाना उन सब के लिए जो deserve करते हैं real love and real happiness.

0: Late Night Grooves
1: RM2 Radio Musti.
2: आपकी लाइफ में चाहे कोई स्पेशल पर्सन हो या ना हो, प्लीज अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना मत भूलिए। खुद के लिए फ्लावर्स खरीद लीजिए, फेवरेट म्यूजिक सुनिए, अपनी फेवरेट कॉफी पी लीजिए, बिकॉज हैप्पीनेस डजंट ऑलवेज नीड कंपनी, समटाइम्स योर ओन कंपनी इज इनफ। वैसे क्या सोचते हो इस बारे में? वेल, मेरा मानना है कि यस, सेल्फ केयर, सेल्फ लव इज ऑल्सो अ गुड फॉर्म ऑफ लव। तो चलिए अभी के लिए आप अपने आप से प्यार करना सीख लीजिए, अगर अभी तक नहीं सीखा है तो।

वैसे देखा जाए कुछ लोग हमारी लाइफ में फॉरएवर रहने के लिए नहीं आते हैं, वो हमें कुछ सिखाने के लिए आ जाते हैं, और जब उनका चैप्टर खत्म हो जाता है ना, तो उसे फेलियर मत समझना. मे बी इट वॉज सिंपली अ लेसन टू लर्न. क्लोज दैट चैप्टर विद ग्रैटिट्यूड और ओपन द नेक्स्ट वन विद होप. जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे ही पॉजिटिव सोचेंगे ना, तो आपकी लाइफ में निगेटिविटी के लिए कोई जगह नहीं बचेगी. तो चलिए जी, टू ऑल दोस हु आर वर्किंग राइट नाउ, अगर अभी भी आप काम पे हो, सो कुराज टू यू. यस, बो कुराज हमारी तरफ से. तो चलिए जी, ये अगला नगमा खासकर आपके लिए.

आज रात ना रुसों एक प्रॉमिस खुद से कीजिए, अपने आप से इतना हार्ड मत होना। आप भी इंसान हैं, आपसे मिस्टेक्स होंगे, आप कभी टायर्ड नहीं होंगे, कभी इमोशनल नहीं होंगे, एंड दैट्स कम्प्लीटली ओके। रेस्ट इज नॉट वीकनेस, स्टार्टिंग अगेन इज नॉट अ फेलियर, टेक योर टाइम। और लाइफ में बस ऐसे ही अपने बारे में सोचना है, पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो आपके साथ पॉजिटिव जरूर होंगे। तो चलिए जी, फिलहाल के लिए इन योर लेट नाइट ग्रूव्स, ही अगला गाना हम उन तमाम लवर्स के लिए डेडिकेट करना चाहेंगे जो इन खूबसूरत रोमांटिक गानों को दिल से एंजॉय कर रहे हैं।

वैसे अगर आप किसी को दिल से मिस कर रहे हैं तो इस गाने को उनके नाम कर दीजिए। कभी कभी वर्ड्स नहीं मिलते हैं ना, बट म्यूजिक का वो सब कुछ कह देते हैं जो हम कह नहीं पाते। मे बी दे आर लिसनिंग टू यू, नेवर नो, मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ यू टू, हु नोज, आपको वो भी मिस कर रहे हैं। दैट्स द मैजिक ऑफ लव एंड दैट्स द मैजिक ऑफ म्यूजिक। सो लेट्स क्रिएट इट टुगेदर ऑन आवर एंटी रेडियो मस्ती।

तो चले जी, फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर गिनीशा टू से गुडबाय टू यू। हाँ जी, 3 घंटे का ये सफर कैसे गुजरा हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि इतने खूबसूरत रोमांटिक गानों का सिलसिला जो चल रहा था आपके और हमारे बीच में, और उम्मीद करते हैं कि आपने इन खूबसूरत गानों को दिल से एंजॉय किया है। द एंटायर सिलेक्शन विच वॉज डेडिकेटेड फॉर ऑल आवर आवर एंड टू लिसनर्स के नाम। फिलहाल के लिए चलिए जी, अपना ख्याल रखना, फिर मिलेंगे फिर से एक और खूबसूरत से शो में जिसका नाम है लेट नाइट ग्रूव्स, जो रोज रात को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक हम आ जाते हैं आपका साथ देने के लिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, और अपना ख्याल जरूर

0: Radio Musti
1: in the mix.
0: Radio Musti feels a musti
1: in the mix.

0: Radio Musti.
1: Hit music only.
0: Feels a Musti. Radio Musti.

RM2. Radio Musty. In the mix.